मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन।

0: आवाज नहीं आई।
1: जय माता दी।
0: मिलके बोलो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: धन। टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी

0: वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा।

इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को

0: अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

स्वागत अभिनंदन, वेलकम बैक है एक बार फिर से एक और नई सुबह ताजगी से भरी बहुत ही खूबसूरत सी सुबह आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने के लिए तैयार है। आप जरा मुस्कुराते हुए अपने घर का दरवाजा तो खोलिए दोस्त। जब मुस्कुराकर आप अपने गेट का जो है शुभारंभ करेंगे, दरवाजा खोलेंगे, तो यकीन मानिए पॉजिटिविटी भी रिटर्न होकर आपके पास आएगी। तो बस अगर आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो इस चीज को करके देखिए कितनी आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, पूरा दिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं, 17 जुलाई की सुबह हो गई है और आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:21 और मैं हर बार की तरह एक बार फिर से आपकी मॉर्निंग को सुपर डुपर लाउड बनाने आपके रेडियो पर आ गया हूं। मेरी तो भाई साहब एंट्री हो गई है, हमारा तो जो है यहाँ पर आवागमन हो गया है। अब आपकी बारी है, आप भी अपने संदेश के जरिए हम तक जुड़ सकते हैं। श्रोताओं, अपने प्यारे प्यारे मैसेज मुझ तक पहुंचाइएगा, जरूर हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। नंबर बड़ा आसान है 9837896896। इस नंबर पे आप मुझे अपने हालचाल लिखकर पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं आज की सुबह की शुरुआत कैसे कर रहे हैं आप। दोस्तों कहते हैं अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपके सपनों की चाबी सिर्फ एक ही चीज है, वो है मेहनत। यस, मेहनत आपके सपनों की वो गोल्डन चाबी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आपके संदेश और आपकी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुंचती हैं, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। चलिए बात करें दिन की, तो आज शुक्रवार का दिन है। शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना करना चाहिए उन सभी लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, जो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके बिना बोले आपकी बातों को समझते हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को दिल से थैंक यू बोलना तो बनता है आज की सुबह। क्यों मेरे दोस्त, फिलहाल आप किचन में चाय बना रहे हैं या फिर आप बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं या आप टिफिन बना रही हैं, जो भी आप कर रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, करते रहिए। और अभी थोड़ी देर करेंगे तो आपसे और बहुत सारी बातचीत करेंगे इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, लेकिन फिलहाल करते हैं अब अपने सफर की शुरुआत एक बेहतरीन से गीत के साथ। इस गाने के बाद लौट कर आएंगे तो ढेर सारी बातचीत करेंगे ना आपसे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक शानुदा अलका याग्निक जी की आवाजों में निकल गया है, एक बेहतरीन गाना। आ गए आपके रेडियो सेट पे इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
3: आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ ढेर सारी गाने और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं ना आपके लिए से स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
5: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
6: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, बहुत ही प्यारा गाना भूमिका चावला। हाय हाय हाय, बहुत ही अच्छा गाना, मुझे तो तुरंत याद आ जाती है उदित अलका जी की आवाज। बहुत ही प्यारा गाना भी आपने एंजॉय किया और सच में बहुत ही खूबसूरत गाते हैं उदित साहब। वेलकम बैक हियर लिसनर्स, आप आनंद के साथ हैं। 8:40 हो गए स्टेशन की घड़ी में और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं आप आनंद के साथ हैं और यहां पर ढेर सारे आपके मैसेज पहुंच रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। आज फ्राइडे मॉर्निंग है, ढेर सारे संदेश ऑफकोर्स आप पहुँचा ही रहे हैं। श्रोताओं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा था आप मुझे संदेश पहुंचा सकते हैं एंड इतने सारे मैसेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है शुभम जी का, ये मुझे मैसेज करते हैं लाइन पार से। इन्होंने लिखा है, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं आज की सुबह इतना ही कहना चाहता हूं कि इंसान चाहे कितना भी खुश होकर दिखा दे लेकिन जब तक वो अंदर से खुश नहीं है तब तक एक्चुअली में उसके चेहरे पर वो खुशी का एहसास नहीं होगा। कहना तो आपका सही है शुभम जी, मैं भी अग्री करता हूं। जुल्फी भाई मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं, हेलो आनंद भाई जान, क्या हालचाल, वेरी गुड मॉर्निंग जी, आपको प्यारा सा सलाम जी, आपको भी मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और एक ताजा ताजा फ्रेश वाला सलाम जनाब। जुल्फी भाई ने लिखा है कि आनंद जी कल करे सो आज करे सो अब, हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, हमें हर दिन की शुरुआत आज और अभी ही करनी चाहिए। क्या बात है यार, वेरी नाइस 100% आई एग्री विद यू, मुझे भी ऐसा लगता है। ये आपने जो लिखा है बहुत ही प्यारा आपने लिखा है और इसमें तो कोई अतिशोक्ति ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने कर दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैसेजेस गाइस आप भी डेफिनेटली मुझ तक पहुँचा सकते हैं, आप भी मुझे अपने संदेश पहुँचा सकते हैं मैसेज करके। अगला मैसेज मेरे पास पहुंचा है तारिक भाई का, तारिक जी लिखते हैं, हेलो आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। तारिक भाई मैं बहुत ही बढ़िया हूं। तारिक जी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक मूल मंत्र को अपनाना पड़ेगा, वो है मेहनत का मूल मंत्र, यानी कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगातार सही दिशा में सही प्रयास करने होंगे। क्या बात है, वेरी नाइस, सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप करते हैं, मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है मेरा तो। सीरियसली गाइस आपसे बातचीत करके जो आनंद आता है ना, मैं वो शब्दों में नहीं बता सकता, I'm telling you, इतना बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया यार। आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश पहुंचा है मेरे पास शिवानी का, लिखती है, हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूं और आपको सुन रही हूं, बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है पागवाड़ा से, ये मैसेज आया है, हेलो जी नमस्कार राधे राधे, भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। वाह क्या लिखते हैं ये, कि भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। हाँ जी, ये भी कह सकते हो गुनाह हुआ है तभी सजा मिल रही है, ये तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सपना भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़ी हमारे साथ। कार्टशूट लादावली से मैसेज आया है, हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे हाल चाल हैं आपके, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी। एंड इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा बट इन्होंने लिखा है कि सुबह सुबह आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए गाइस थैंक यू सो वेरी मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। अभी एक और खूबसूरत ट्रैक आपके लिए निकाल रहा हूँ आपके रेडियो सेट पर, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। और इस गाने के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे आज के दिन के बारे में, आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज की तारीख में, डेफिनेटली इस पर चर्चा करेंगे हम इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ हमें एक छोटा सा संदेश पहुंचाना है 9837896896 पर। एक खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, आप इसको सुनिए और एंजॉय कीजिए आनंद के साथ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
4: मम्मा का नालायक बेटा।
5: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और बिल्कुल श्रोताओं, अपने तो अपने होते हैं। कुछ भी परेशानी हो जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए, सबसे पहले अपने लोग अपने साथ होते हैं। तो इसीलिए अगर अपना कोई नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश तो हमें करनी चाहिए, है ना। बहुत टाइम हो गया किसी अपने की याद आ रही है, आपने फोन नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा है उधर से कॉल नहीं आया। शायद एक कॉल आप भी कर सकते हैं। अगर हम अपने ईगो को साइड में रख के किसी को बात करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, किसी को अपनापन फील कराते हैं, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो ही नहीं सकती। शुक्रवार की सुबह शुक्राना करना तो बहुत जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आप सुन रहे हैं हरजी आनंद के साथ। श्रोताओं, 8:54 का समय हो गया है और आज 17 जुलाई की मॉर्निंग है। क्या बात है।

अपनों के संग जो लाड लड़ाने का मजा है, अपनों के साथ में बैठ के जो सुबह ब्रेकफास्ट करने का मजा है, जो शाम को डिनर करने का मजा है, जो अपनी अपनों अपनी फैमिली के साथ अपनों के साथ गप्पे लड़ाने का मजा है, उसकी बात ही कुछ और है। शुरू आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक फ्रेश मॉर्निंग है, फ्रेश गाने हैं और फ्रेश वाली वाइब आपको मिल रही है इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: क्या खूबसूरत गाना है।
1: अपने तो अपने
0: ओए होए सोनू निगम साहब की आवाज
1: तो अपने होते हैं।
0: चलिए श्रोताओं बात करते हैं आज के दिन के बारे में। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, थोड़ा इमोशनल कर देने वाला गाना, लेकिन थोड़ा अपनों के करीब ले आने वाला गाना। क्या कहती है 17 जुलाई की तारीख, क्यों खास है आज का इतिहास का पन्ना। चलिए श्रोताओं एक नज़र डालेंगे और आपके संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। श्रोताओं आपको बता दें आज ही का वो दिन था 17 जुलाई सन 1996 में, जब तमिलनाडु की राजधानी मद्रास की आधारिकता पर उसका जो है मतलब नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। यानी कि आज ही के दिन मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रख दिया गया था। श्रोताओं 1996 में आज ही के दिन। आपको बताते चले 17 जुलाई के जो ये तारीख है, जो आज का इतिहास है, इसमें तमाम सारी चीज़ें आज के दिन सेलिब्रेट की जाती हैं। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया जाता है श्रोताओं।

बिल्कुल दोस्तों, अपने तो अपने होते हैं और जो अपने होते हैं वो कहीं पर भी हो, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहन में हमेशा रहती हैं ना, क्योंकि अपने लोग तो अपने होते हैं। और आप भी तो हमारे अपने हैं, आप भी तो हमारी अपनी फैमिली है। आपके रेडियो सेट पे डेली आपके घरों में दस्तक देता हूँ। इस रेडियो के माध्यम से ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे बिंदास मॉर्निंग। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आपको बताते चलें, आज के दिन जन्मे कुछ महान लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे रहा हमारे देश के नाम, जिनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सबसे पहला नाम आता है पूजा जी का। जी हाँ, पूजा सिहाग जी का जन्म आज के दिन हुआ था 1987 में। आपको बताते चलें, ये काफ़ी पॉपुलर नाम है और इनके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है।

आज ही दिन इनका जन्म हुआ था श्रोताओं। और आपको बता दें रवि किशन हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के सक्रिय अभिनेता हैं। 1971 में इनका भी जन्म हुआ आज ही के दिन। और आपको बताते चलें बेगम अबीदा जो है इनका भी जन्म हुआ आज ही के दिन। भारत की पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी की जो है बेगम साहिबा ही इनका जन्म हुआ था 1923 में आज ही के दिन। श्रोताओं तमाम सारे संदेश लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं। ये आज के दिन से जुड़ी कुछ जानकारियां जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मैंने आप तक पहुंचा दी हैं आज की सुबह। अगर आप भी हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आपके आसपास क्या कुछ स्पेशल चल रहा है, तो आप ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। साथियों आगे बढ़ेंगे, स्टेशन की घड़ी में 9 बजने को है सुबह के।

0: सन 1850 में आज ही के दिन जो है तारा का पहला फोटो लिया गया था श्रोताओं, आज ही के दिन। एंड आपको बता दें, इंग्लैंड और ये जो आज का एक बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर जो मैं क्रिकेट के बारे में देख पा रहा हूँ, जो पढ़ पा रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है एंड क्रिकेट से जुड़ी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए जुड़ी है। 1893 की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही खूबसूरत। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा पिटारे में सेव करके रखूँ, थोड़ी देर के बाद ही बताऊँगा, बिकॉज क्रिकेट प्रेमी थोड़ी देर में और कनेक्ट होंगे तो और मज़ा आएगा इसको। तब तक जो है आपके साथ किसी और टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली थोड़ी देर में मैं आप तक पहुँचाऊँगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। कुछ चीज़ों को ना बचा कर भी रखना चाहिए, है ना। अच्छा, अक्सर आपने कहते सुना होगा दाल में कुछ काला है, तमाम हमारे पहले के लोग भी कहते आए हैं, अक्सर हम भी सुनते हैं दाल में तो कुछ काला है। आज मुझे आपसे यही जानना है कि दाल में कुछ काला आखिर है क्या, आपको क्या लगता है ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का मतलब क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है दाल में कुछ काला है, आपको क्या लगता है ये, मतलब जिस आई एग्री विद यू, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल कहावत है कि दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आई नो दैट, बट ये जो बनाया गया है ये आखिर क्यों बनाया गया है, क्या लगता है दाल में कुछ काला है, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब गरीब है, लेकिन हम बड़ा सुनते हुए इसको आ रहे हैं। आप में से कई लोग इस बात को फॉलो भी करते होंगे, आई एम श्योर, दाल में कुछ काला है गुरु, तो आप डेफिनेटली मुझे बताना है दाल में काला आखिर है तो है क्या, इसके पीछे का रीजन क्या लगता है। आप मैसेज करिएगा। फिलहाल मैं बता दूं आपको, स्टेशन की घड़ी में जो वक्त हुआ है वो 9:01 हो गया है सुबह सुबह। तो भैया देखिए, सुबह के 9 बज चुके हैं, ये फ्राइडे की सुबह है, आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। ढेर सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं श्रोताओं, बिल्कुल हम आपका जो यहाँ पर ये संदेशों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, आपके मैसेज हम जरूर शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में जब लौट कर आएंगे। तो
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
2: अरे तो भाई, गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: फ्राइडे मॉर्निंग है, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है। मैंने कहा जी गुड वाली मॉर्निंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सब बढ़िया होंगे। 9:04 हो गए हैं, आज 17 जुलाई हो गया है। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल मॉर्निंग और स्पेशल तारीख हो गई, तो ये समय बहुत तेजी से भाग रहा है। बाबा इस समय को कोई पकड़ के रुका लो, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इतनी तेजी से समय निकलता जा रहा है कि पूछो ही मत यार। बिल्कुल कोई बात नहीं यार, जो समय के साथ चलते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा जीत होती है। तो बिल्कुल समय के साथ चलते रहिए, कंधा से कंधा मिला के, बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ चलेंगे तो समय आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं ना। तो इसीलिए समय के साथ जो है हमेशा चलिए मेरे दोस्त। फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पे अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस। आपकी फेवरेट इमोजी कौन सी है? आजकल ये बड़ा इमोजी वाला ना ट्रेंड हो गया है। कोई भी सिचुएशन है, हम तुरंत इमोजी भेज देते हैं। भैया हम खुश हैं तो हमने स्माइल वाली इमोजी भेज दिया, हम गुस्सा है तो हमने गुस्से वाली इमोजी शेयर कर दिया, हम किसी से सैड है तो हमने वो इमोजी भेज दिया, सर में दर्द हो रहा है तो वो इमोजी, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी हर एक सिचुएशन पे हर एक इमोजी है। आपकी फेवरेट इमोजी कौन सी है जरा मुझे भेज के बताओ, बिकॉज आज वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यस ऑफ कोर्स, बहुत ही स्पेशल डे है इमोजी डे। सो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा एंड बताइएगा मुझे आपका फेवरेट इमोजी कौन सा। आप मुझे वो सेंड ही कर देना यार, आनंद मुझे ये इमोजी पसंद है, या मैं ये वाली इमोजी को ज्यादा भेजता हूं जब मैं खुश होता हूं तो, या जब मैं गुस्सा होता हूं तो। जो भी आपकी सिचुएशन है आप मुझे डेफिनेटली बताना। आज वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 17 जुलाई को। इसके अलावा आज नेशनल लॉटरी डे मनाया जाता है। आपकी जिंदगी में वो कहते हैं ना, लॉटरी लग गई भाई तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। इसके अलावा आज नेशनल टैटू डे मनाया जाता है। टैटू वन ऑफ माय फेवरेट है, मैंने कभी बनवाया नहीं है बट मुझे बहुत मन है कि मैं भी टैटू शैटू कराऊं, बट मैं जब भी टैटू कराऊंगा तो जरूर आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई है नहीं सिनारियो। इसके अलावा आज नेशनल येलो पिगी डे मनाया जाता है। वो पिगी बैग्स होते थे हमारे पैसे रखने वाले, अक्सर मेरी सिस्टर उसमें बहुत सारे पैसे जमा करती थी और मैं तो चुपके से निकाल लिया करता था, आज वो वाला डे। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, डेफिनेटली आगे आगे बताएंगे यार, अभी तो शुरुआत है। एंड बल दिस इज माय लास्ट आर यार, आज वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपकी फेवरेट इमोजी कौन सी है डेफिनेटली आप बताना। एक रिसर्च की गई है बड़ी धाकड़ सी, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। जब लौट कर आएंगे तब हम आपको बताएंगे, ये जो रिसर्च है ना बड़ी अजीबो गरीब हुई है एंड मैं हर दिन कोई ना कोई रिसर्च आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आने वाला गाना फरहान अख्तर, राइट हियर इन द हाउस। ये पिक्चर मैंने जब देखी मेरी आंखें खुल गई भाई, बड़ी कमाल की फिल्म है। जिंदगी ना मेरी की दोबारा, ये अलग ही लैंग्वेज है।
1: नमस्ते जो भी तुमने मुझसे कहा है।

0: चेन्नई एक्सप्रेस से ये ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुन लिया दीपिका पादुकोण एंड साथ में एस आर खान और वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट यार। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के होंगे। आगे बढ़ते हुए आप सभी को बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ आज की मॉर्निंग। ये है फ्राइडे की सुबह, गुड मॉर्निंग। अभी 9:16 हो गए स्टेशन की घड़ी में। वीकेंड फीलिंग आपको आनी चाहिए, मतलब वीकेंड वाली वाइब मेरे को आने लगी, बिकॉज छुट्टी वाली जो धीरे धीरे फील है मेरे को आने लगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार। So do let me know, ladies and gentlemen, आप मुझे WhatsApp करके बताइए आज वर्ल्ड इमोजी डे पे आप कौन से इमोजी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। भाई मेरे को इतने सारे इमोजीज भेज दिए, कौन है ये जनाब, मतलब आई कांट बिलीव दिस, इतने सारे इमोजी भेज डाले आपने, भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है ये। ये लिखा है, ये मेरी फेवरेट वाली इमोजी है, ये आई थिंक मोहसिन अंसारी फ्रॉम बनारस, इसने मेरे को बहुत सारी इमोजी शेयर की है यार, थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे भाई। ये क्या बोल क्या रहे हैं, जरा सुनते हैं ना।
1: आनंद भाई गुड मॉर्निंग, जब आप आते हैं सुबह गुड मॉर्निंग बिंदास लेकर तो मजा आ जाता है, इतने अच्छे अच्छे गाने सुनवाते हैं कि सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है हमारे बिंदास मॉर्निंग सुन के आनंद भाई के साथ।
0: अरे वाह,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई।
0: मैं
1: मौसिम अंसारी बनारस से।
0: थैंक यू मौसिम जी। ये दूसरा वाला सुनते हैं।
1: मैं भी सुबह उठता हूँ तो आपके प्रोग्राम में जुड़ जाता हूँ,
0: हाँ
1: तो मजा आ जाता है, सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है आपके प्रोग्राम के साथ।
0: क्या बात है जी, इसीलिए आपने इतनी मोजी भेजी। हाँ वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, जोरदार ताली आप सभी के लिए। आज वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम आपसे कह रहे हैं कि भैया आप भी बताओ जरा आपकी फेवरेट इमोजी कौन सी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद के साथ हैं आप। ये है आपकी शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बंदे का नाम आनंद है, बंदा हाजिर हो गया है। लेकिन कुछ और कड़क अपडेट दोस्तों, आज 17 जुलाई है और आज मनाया जाता है वर्ल्ड इमोजी डे। कभी सोचा है कि बिना कुछ बोले हम अपनी खुशी, गुस्सा, प्यार, मजाक कैसे जता देते हैं, बस एक छोटी सी इमोजी सब कुछ कह देती है। आज के दौर में इमोजी सिर्फ मोबाइल का हिस्सा ही नहीं है बल्कि हमारी रोजमर्रा की भाषा बन चुका है। हाँ जी, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर दिन अरबों इमोजी भेजे जाते हैं। हाँ जी, यानी कि कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन एक इमोजी दिल की बात पूरी कह जाती है। तो आप बताइए आपकी जिंदगी में वो कौन सी आपकी फेवरेट वाली इमोजी है, आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी को सिर्फ एक इमोजी में बताना हो तो वो कौन सा वाला इमोजी होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा इमोजी के पीछे की कहानी भी डेफिनेटली बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं 17 जुलाई की तारीख इसलिए भी चुनी गई है क्योंकि कैलेंडर इमोजी 17 जुलाई में लंबे समय तक ये तारीख दिखाई जाती है। एंड आई डोंट नो भाई कि अब आप कौन कौन सी इमोजीज मुझे शेयर करने वाले हैं, सीरियसली आई हैव नो आइडिया। वेल आप लोग बहुत अच्छे अच्छे फैंटास्टिक मैसेजेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे प्यारे प्यारे संदेश करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। रिसेंटली एक रिसर्च आई है जिसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके मैसेज ढेर सारे मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक मैसेज मेरे पास आया, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रतीक्षा। गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा, ये लिखती है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक मूवी थी इमरान हाशमी की जिसका नाम था आवारापन, एंड आवारापन 2 से पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगा इसका पहला पार्ट एक बार फिर से। हाँ जी, एक बार बता दें फिर से, सिनेमाघरों में आवारापन का दर्द, यानी कि आवारापन 2 से पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगा पार्ट पहला वाला इसका। इमरान हाशमी के फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं एंड उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म आवारापन एक बार फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यस, साल 2007 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड ये फिल्म उस समय की बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, बट लेडीज एंड जेंटलमैन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी के गाने बहुत ही अच्छे थे लेकिन समय के साथ इसने अपनी जगह कल्ट क्लासिक लिस्ट में बना ही ली थी। आज आवारापन को जो है बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा एंड फेवरेट वाली कल्ट क्लासिक मूवी में जो है इसको गिना जाता है, इसको काउंट किया जाता है। एंड अब मेकर्स ने फैसला किया है कि वो आवारापन 2 की रिलीज से पहले इसका पहला वाला पार्ट थिएटर में एक बार फिर से रिलीज करेंगे ताकि पुराने फैंस एक बार फिर से इसका बड़ा मजा ले सकें एंड बड़े वाले पर्दे पर। यस, तो भाई साहब एक बार फिर से आवारापन डेफिनेटली रिलीज होगी एंड ऑफकोर्स इसके गाने माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, काफी ज्यादा इसका म्यूजिक फैबुलस था, बहुत ही शानदार म्यूजिक था, लोगों की जो इसमें एक टच था वो लोगों को बहुत पसंद आया। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, इमोशनल टच काफी बढ़िया था, शानदार म्यूजिक खूब पसंद किया गया निर्देशक मोहित सूरी के निर्देशन में एंड साथ में प्रीतम के म्यूजिक ने इस फिल्म को बहुत ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। तो आवारापन 2 से पहले रिलीज होगा आवारा का पहला पार्ट, ये आवारापन का पहला पार्ट जो 2007 में रिलीज हुई थी एंड इमरान खान के जो ये इमरान हाशमी के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ये इमरान खान और इमरान हाशमी दोनों सेम लगते हैं यार। सो गाइज, आप ऐसे ही कड़क अपडेट के लिए प्लीज ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ। आपको पता है कावड़ मेला शुरू होने वाला है वेरी वेरी सून, एंड इसको लेकर अपने मुरादाबाद में भी ट्रैफिक के रूल्स डेफिनेटली चेंज होंगे, बहुत सारे रूट डाइवर्ट होंगे। डेफिनेटली सारी कड़क अपडेट आपको मिलेंगी, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो या फिर रूट डाइवर्ट की इन्फॉर्मेशन हो या मुरादाबाद में क्या चल रहा है। लोकल फॉर वोकल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आगे बढ़ते हैं, एक रिसर्च अभी रिसेंटली की गई, उस रिसर्च के बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा, एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेशल रिसर्च। आपको क्या लगता है इस रिसर्च के बारे में डेफिनेटली आप बताइएगा जरूर मुझे, पर थोड़ी देर के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल 9:21 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ हैं आप। मेरा आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप कौन सी वाली इमोजी को ज्यादा शेयर करते हैं एंड आपकी फेवरेट इमोजी कौन सी? आज वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आप भी हमें डेफिनेटली अपने संदेश के माध्यम से बता सकते हैं, अपने हालचाल पहुंचा सकते हैं, और साथ में ये भी बताइएगा जरूर आपकी फेवरेट इमोजी कौन सी है, आप कौन सी इमोजी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या सबसे ज्यादा आप इमोजी को शेयर करते हैं कि यार आनंद मैं जब भी कोई सिचुएशन में होता हूं तो मैं ये वाली इमोजी ज्यादा भेजता हूं एंड ये इमोजी मेरी फेवरेट है, आप डेफिनेटली बताइएगा। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं भी डेफिनेटली आपको बताऊंगा। फिलहाल आने वाला गाना जग्गा जासूस से है, गलती से मिस्टेक। कभी कभी हो जाती है ना, भेजना कुछ और चाहते हैं बट भेज कुछ और देते हैं, ऐसा अक्सर हो जाता है यार, मेरे साथ तो बड़ा होता है ऐसा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जब तक डिलीट, एक तो ये व्हाट्सएप ने ना बड़ी हालत खराब कर दी है, मतलब डिलीट करेंगे अगर हम तो उसको भी पता लग जाता है कि इसने कुछ डिलीट किया, फिर वो हमसे 100 क्वेश्चन पूछता क्या डिलीट किया, क्या भेजा था, क्यों भेजा था। एनीवेज, अभी आने वाला गाना एंजॉय करते हैं, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, पहुंचिए अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे।
2: मशवरा मेरा आजमा के देख, यही
0: एवरीबॉडी
2: गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले।
0: बिल्कुल यार, यही तो उम्र है,
2: यही उम्र है कर ले।
0: गलती से मिस्टेक,
2: गलती से मिस्टेक,
0: यही
2: उम्र है कर ले।
0: गलती से मिस्टेक बेटा, एंजॉय करो ये गाना।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
8: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
9: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: Listen, I'm telling you.
1: I think she's strong.
2: Naina Girvi. ब्यूटीफुल ट्रैक पर सुन रहा एंड साथ में के शांत की आवाज एंजॉय कर रहे थे अभी आप. बहुत ही प्यारा जाना इस टाइम टू रिस्को. इस गाने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा थोड़ा किसको, नहीं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग यार. 9:32 हो गए स्टेशन क्लॉक में. 9:32 का समय हो रहा है जी. आप सुन रहे हैं आनंद खूब. ओ मेरी भाई, इतने प्यारे मैसेज कर दिए आपने, सबने बता दिया आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है, आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है. मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा सांभा. अब बेसिकली ना अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो एक रिसर्च में पता लगा है कि जो लड़कियां हैं ना, वो जिनकी शादी नहीं है और जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए एक डेटा निकल के आया है कि 65% लड़कियां उन लड़कियों से ज्यादा खुश हैं जिनकी शादी नहीं हुई है. अपने हस्बैंड के साथ वो बहुत कंफर्टेबल एंड हैप्पी फील करती हैं. 65% गर्ल्स जिनकी मैरिड हो गई है. वहीं मेंस का डेटा आया है कि भैया 50% बॉयज बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं उन

0: लड़कों से ज्यादा जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है. एग्जैक्टली जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है उनसे ज्यादा हैप्पी फील करते हैं जिनकी शादी हो गई है वो लड़के. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे वाहियात रिसर्च होती कौन है, ये करते कौन है, आई डोंट नो इनको मिलता क्या है. ऐसे ऐसे रिसर्च आ जाती है भाई जिनके बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ. हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है. चलिए बैक टू पॉइंट, मैसेज पढ़ते हैं आपके. चमनलाल साहब जुड़े हैं मेरे साथ एंड इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है ये दुर्गेश जी का, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है. हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज मी निधि. हाय निधि गुड मॉर्निंग. एक मैसेज और पहुंचा है हमारे पास शिखा जी का, ये कह रही है हेलो जी कैसे हाल चाल है आनंद जी, मैं बढ़िया हूँ शिखा जी. हाय गुड मॉर्निंग जी, ये वाली इमोजी अच्छी लगती है. अरे वाह क्या बात है. चंदन कुमार जी मैसेज कर रहे हैं हमारे पास. डी के अरोड़ा जी का मैसेज आ गया है मेरे पास, इन्होंने तो एक बड़ी प्यारी इमोजी शेयर कर दी. ओए होए, एक मैसेज आया है आरजी आनंद जी की आवाज तो बहुत ही प्यारी लगती है, क्या बात है यार, थैंक यू वेरी मच. कश्मीर से मैसेज पहुंचा है. और ये मैसेज मेरे पास आया है, हाय गुड वाली मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, नमस्ते जी. गुड वाली मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ये हमारे पास रहमत नगर से मैसेज आ रहा है शबीना जी का, गुड मॉर्निंग पहुंचा रही है. एक मैसेज हमारे पास आया है, सर कहते हैं दाल में कुछ काला है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है. दाल में कुछ काला यानी कि कुछ तो कहीं पर गड़बड़ है और ये बहुत पुरानी कहावत है, इसी को सब फॉलो करते आ रहे हैं और बाकी तो हमें पता नहीं है. वाह वाह ये बढ़िया था यार कि बाकी तो हमें पता नहीं है. जरा इनका वॉइस नोट सुनते हैं.
1: राधे राधे राधे. लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते. बेदर्द बन गए हैं दर्द सहते सहते, बहुत कुछ दिल में ही दफन कर लिया, सब ठीक है कहते कहते. नमस्कार राधे राधे. बिंदास मॉर्निंग, आप सुनने बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत बागपड़ा से बोल रहा हूँ. लेकर आता हूँ आपके लिए प्रतिदिन एक सुविचार जो शायद आपको बहुत ही पसंद आता होगा और आप सुनते हैं इसको एफएम मुरादाबाद रेडियो के माध्यम से. यह है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है और फिर बाद में मुस्कुराना पड़ता है. तो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इसी तरह आनंद का साथ निभाते रहिए. नमस्कार राधे राधे और भेजते रहिए अच्छे अच्छे सुंदर से मैसेज. नंबर 98-378-96-896. नमस्कार
0: राधे राधे राधे जी. थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन आप भी ऑफकोर्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9837-896-896 पर.
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम
2: मिस कर दिया तो रीलोड.
4: चाय चाय चाय
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा. चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई. जिग करो, स्वच्छता की जिद करो.
7: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद.
8: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक.
7: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में.
8: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई.
7: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी.
8: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट.
7: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077.
0: लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक. एक छोटा सा ब्रेक था उसके बाद मेरी इंटरव्यू हुई यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स अभी हम आए हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आए हैं. डेफिनेटली बताता हूँ.
9: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं. नामुमकिन.
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है. सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने. ट्यूनिंग कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
0: अ अमेजिंग ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, बहुत ही प्यारा गाना है। सैटरडे की सुबह आप आनंद के साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेदर अपडेट आपको देने वाला हूं। एंड मौसम विभाग की तरफ से आज 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच मॉनसून सक्रिय रहने वाला है। एक अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से, यानी ये IMD ने एक नई रिपोर्ट शेयर की है आज की सुबह। डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले विशाल ददलानी इन द हाउस, इसके सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना, जब मिला तू, आई लव दिस सॉन्ग।

भैया मैं बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ, मैं नींद बाहर निकल गया हूँ, मैं नींद से बाहर निकल गया हूँ। ये फ्राइडे मॉर्निंग है, आज शुक्रवार है, शुक्र है तो शुक्रवार है। हाँ जी, आज बहुत ही प्यारा दिन है और इसी बात पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गाने के बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं जल्दी से आपको याद दिलाने आया हूँ। फ्राइडे मॉर्निंग है और एक बहुत ही अच्छा कड़क सवाल है जिसका जवाब ऑफकोर्स आप मुझे देंगे थोड़ी सी देर में।

क्या बात है, जब मिला तू बहुत ही प्यारा गाना था, ये सुन के मजा आ गया। फ्राइडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कनिका जी का मुझे कॉल आया, लिखती है उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक तो यार मैसेज पढ़ पढ़ के ना मैं कॉल को भी मैसेज में तब्दील कर देता हूँ, उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वैसे करना नहीं चाहिए। सो उन्होंने मेरे को मैसेज नहीं कॉल किया था, आनंद कॉल करके मेरे को बोला हाय आनंद गुड मॉर्निंग, और इस वक्त मैं यहाँ पे जा रही हूँ, वो मतलब अभी ऑन द वे है और उनको अच्छा लग रहा है। और उन्होंने जो अभी मेरे को बोला कि आनंद जी सुबह सुबह आपने जो रिसर्च वाला बताया ना, इस पे उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। उन्होंने कहा है कि देखो यार डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा, अगर आपकी शादी हो गई और आपका पार्टनर अच्छा है और आप जो चाहती हैं वैसा आपको मिला है तो फिर तो आप खुशी खुश हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भैया आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं रिसर्च से थोड़ा सा अलग कहना चाहती हूं कि लाइफ में ना हमेशा आप वो सोचो जो आप करना चाहते हो। बिल्कुल जी। और इन्होंने लिखा है कि शादी के बाद बहुत सारी चीजें ना हमें दोनों को मैनेज करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी है मुझे कि यार रिसर्च वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन आप कितने जेन्युइन हो अपने बंदे के साथ, ये बहुत मैटर करता है ना जी। बहुत ही बढ़िया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज सुनकर, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले सवाल सुना या पहले बात बताएं? नहीं, पहले सवाल सुनो, ठीक है? तो आप एक काम करो, मैं अभी एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, आपको मुझे बताना है ये जो गाना मैं चला रहा हूँ ये कौन सा गाना है। ये गाना आपको आइडेंटिफाई करना है यार, बड़ा सिंपल सवाल है। एक गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, आपको बस इस गाने को मुझे बताना है ये कौन सा वाला गाना है। 3, 2, 1, go, start, ठीक है? तो जरा ध्यान से सुनो, अभी जो यहाँ पर सॉन्ग चल रहा है कौन सा गाना है।

मैसेज करके आपने मेरे को बताना है कि अभी जो गाना चल रहा है वो कौन सा गाना है। बहुत प्यारा ट्रैक है। व्हाट्सएप करना है आपने मेरे को 9837896896 में। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। एक क्लू आपको दे देता हूँ, आमिर खान साथ में माधवन और भी बहुत सारे लोग इसमें नजर आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। व्हाट्सएप आपको करना है 9837896896 पे। आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कि अभी जो आपने गाना सुना है ये

0: चलो जी, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करो 9837896896 पे, ठीक है जी। इंतजार कर रहे हैं हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। एक वेदर से जुड़ी अपडेट है जो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है,
1: अक्सर लोगों को डरा।
0: मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ, नहीं बॉस, डराने का नहीं, सिर्फ यहाँ पर सही जानकारी देने का, ठीक है। गलत जानकारी दोगे तो रेडियो से बाहर हो जाओगे। मैं अपने आप को नहीं, इनको भाई साहब को कह रहा था। आने वाला ब्यूटीफुल ट्रैक, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग।
2: तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिलके लगा है।
0: स्कूल टाइम में मैंने बड़ा सुना है, अपने कॉलेज टाइम में बहुत सुना है।

0: Last Morning. Last Morning.
1: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
2: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद कॉल 7055011681
5: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या
6: कहा मेरी कसम
5: मिस कर दिया तो रीलोड
7: चाहे चाहे चाहे
8: बिंदास मॉर्निंग
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10

क्या बात है यार, दीप्ती बॉयज का ही गाना जिसको सुन के मजा आ गया फ्लैशबैक में लेके नया गाना। 956 हो गए भाई, आनंद को सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक हियर वंस अगेन। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 शो का नाम। यस, फ्राइडे मॉर्निंग में आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया अभी जो मैं गाना प्ले कर रहा हूँ ये कौन सा गाना है। बड़ा प्यारा गाना है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। यार दिमाग लगाओ, शान की आवाज है। चलो यार अभी मैसेज करने का मेरे को 9837896896। आई कांट बिलीव दिस कि यार लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब मैंने सोचा था इतना इजी गाना है यार, आप लोग पकड़ ही लोगे। चलो एक क्लू देता हूँ, इस गाने में तीन हीरो हैं, इस मूवी के अंदर तीन हीरो हैं। बहुत ही बढ़िया मूवी है ये, एंड काफी आइडियाज इसमें आते हैं, एंड बहुत ही बढ़िया फिल्म है। इसके गाने और भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। इस गाने में एक जो हीरोइन है उनका नाम बता दूं आपको, चलो थोड़ा सा इजी कर देते हैं। उसमें बेबो है, बेबो ओरिजिनल फिल्म बताऊंगा, उनका निकनेम बता रहा हूँ, बेबो इसमें है। साथ में बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट है, तीन हीरो हैं इसमें। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेक्स है, मूवी बहुत ही बढ़िया है, स्टोरी बहुत ही अल्टीमेट है, हम सभी की ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। स्कूल टाइम कॉलेज वाली सारी इसमें मेमोरी है। अब बताओ कौन सा गाना है। अब देखो मैंने सारे क्लूज आपको दे दिए हैं, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी कर दिया है, दिस इज वेरी वेरी इजी। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम एंड अपना सही वाला जवाब। आपने बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है। बड़ा दिमाग लगा के ढूंढ के लाए हो यार, कि आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाने पड़ते हैं। चलो अभी मैसेज करने का मेरे को, ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल अभी कड़क अपडेट बता रहा हूँ वेदर से जुड़ी, क्या है मौसम विभाग की अपडेट। सो भैया आपको बता दें, यूपी में एक बार फिर एक्टिव होगा मॉनसून 17 जुलाई यानी टुडे। 17 जुलाई से 19 जुलाई तक बारिश के पूरे पूरे आसार हैं। भारत मौसम विभाग विज्ञान ने जो एक रिपोर्ट शेयर की है, यानी कि आईएमडी के अनुसार 17 से 19 जुलाई के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनसून फिर से एक्टिव होगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद समेत कई जिलों में जो है मध्यम से भारी बारिश होने की जो है संभावना है, और हवाएं भी काफी तेज रफ्तार से चलने वाली है। तो ऐसे में आपने सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बट ये बारिश आए तो सही, मुरादाबादी तो दिल खोल के इंतजार कर रहे हैं कि भैया आए बारिश, आजा बारिश, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका है। देखिए भैया, गर्मी में अगर आपका फैन भी जो है तेज हवा से हल्की हवा देने लगा है तो आपको नया पंखा खरीदने की जरूरत नहीं है। बस एक बार जरा उसको चेक कर लो, कभी भैया उसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्टिंग तो नहीं हो गई है। कभी कभी धूल धाल बहुत ज्यादा जम जाती है जिसकी वजह से चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, एंड हम नियमित साफ सफाई नहीं करते हैं इन चीजों की, इसीलिए हमारी चीजें जल्दी खराब भी हो जाती हैं और फिर इनको दोबारा से रिपेयर कराना पड़ता है ना। तो अगर आपकी पंखे की स्पीड या फिर आपके पंखे का जो भैया फ्लो है थोड़ा कम हो गया है तो चेक कीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर पंखों की हवा कम हो गई ना बॉस, तो ये गर्मी का असर जो है ना डबल हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आजकल पीसी बड़ी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे। ये टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा। पीसी ने अभी रिसेंटली अपने हस्बैंड को लेकर एक नया खुलासा किया कि भैया शादी को 8 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कपल के बीच में जो प्यार है वो आज भी मेंटेन है, इसमें कोई कमी नहीं आई है, आनी भी नहीं चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम। सो ऑल द वे बेस्ट। 8 साल हो गए, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस। पीसी की इस लव लाइफ को 8 साल हो गए, आई कांट बिलीव दिस। हॉलीवुड सिंगर निक जोनस ने जो है भाई साहब

0: तो देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर जो है आजकल बहुत ज्यादा छाई हुई है, बिकॉज 8 साल पूरे हो चुके हैं उनके प्यार को और इसी का इंप्रेशन जो है सोशल मीडिया पर बना हुआ है। लगातार जो है फैंस उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जब प्रियंका चोपड़ा जो है वाराणसी आई थी तो उन्होंने काफी सारा जो है जिक्र किया था अपने हस्बैंड के बारे में, एंड सोशल मीडिया पे भी लगातार एक्टिव रहती हैं। ढेर सारी जो है इन्होंने अपने किस्से साझा किए हैं सोशल मीडिया पे, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं उनकी लव स्टोरी जानने के लिए। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं अपने, एंड जिसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है सोशल मीडिया पर। बाकी यार पीसी बहुत कमाल की फैबुलस एक्टर है, उनको बहुत सारी जो है उनकी फिल्में हैं, बहुत सारी उनकी ऐसी मूवी की स्टोरीज हैं जो हम आज भी याद करते हैं तो बड़ा मजा आता है, फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं प्रियंका चोपड़ा की, इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। वैसे ऑल द वे बेस्ट पीसी को, एंड अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है भैया अपना बर्थडे मनाते रहिए। अच्छा अभी बताता हूं आज की तारीख में आप अपना बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट करते हो, जानना चाहते हो आप तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे अभी जो आपको बताना है वो ये है कि भैया स्टेशन की घड़ी में घड़ी घड़ी वक्त बता रही है कि आनंद जी सुबह के 10:01 हो गए यार। एक तो देखो टाइम का सच्ची बता रहा हूं यार, पता ही नहीं चलता, बहुत तेजी से समय निकलता है। फिलहाल भाई साहब सुबह के 10:02 हो गए। हाँ जी बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप। और बाकी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है तो फोन के अपने जरा करीब आ जाओ, बिकॉज कोई एक लकी वन को अभी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात है यार, ये बहुत ही प्यारा गाना अभी आपने एंजॉय कर लिया। कैरेक्टर ढीला है फिलहाल, यहाँ पर मौसम थोड़ा ढीला ढाला है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी का, आप सुन रहे हैं आज ही आनंद को। लेडी एंड जेंटलमैन, प्यारे प्यारे संदेश आपके पहुंच रहे हैं हमारे पास। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। सहारनपुर से जून रोजी पल विलीज बहुत प्यारी इमोजी शेयर करते हैं। मंजिलों

लोग अब AI से करते हैं ऑनलाइन रिसर्च की शुरुआत. एग्जैक्टली. हाँ जी भैया, क्या अब इंटरनेट पर जानकारी खोजने का तरीका बदल गया है? हाँ जी, नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा के सवालों के जवाब अब AI चैट बॉट और चैट GPT जैसे इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इसकी संख्या बढ़ती जा रही है. करीब 60% भारतीय दिन की शुरुआत AI से सवाल पूछकर करते हैं, जबकि जो मिलेनियल्स है उनको बताया जा रहा है कि वो इस बदलाव को तेजी से अपना रहे हैं. हालांकि AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पारंपरिक रिसर्च इंजन अब जो है पूरी तरीके से जो है पीछे नहीं छूट रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI और रिसर्च इंजन जो है दोनों साथ मिलकर लोगों की ऑनलाइन रिसर्च की आदतों में थोड़ा सा जो है बदलाव लेकर आ सकते हैं. तो भैया देखिए, आजकल हर इंसान की जिंदगी में चैट GPT AI जब से आया ना भैया, सब कुछ तो इन्होंने जो है ताबड़तोड़ तरीके से बदल के रख दिया. लेकिन आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताइएगा. रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मिलता हूँ. रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ऑफिशियल आईडी FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलती है, वहां भी फॉलो कीजिए प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड थैंक यू वेरी वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए. आज की सुबह बहुत मजा आया. 10:10 हो गए. फिर डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी टुमारो सैटरडे मॉर्निंग में. तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए. लेकिन जाने से पहले आपको बताकर जाऊंगा आज के कड़क सवाल का राइट आंसर किसने दिया है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैंने आज आपसे. मैंने कहा था आइडेंटिफाई करके बताओ ये गाना कौन सा है. ढेर सारे लोगों ने मैसेज किए हैं बट रॉन्ग आंसर ज्यादा आए हैं.

0: यही मैंने आपसे पूछा था कौन सा गाना है, थ्री इडियट का एक गाना था लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दे दिया है, जुबी डुबी बम्बारा इट्स नॉट ये सॉन्ग, एंड द राइट आंसर इज ऑल इज वेल। सबसे पहले इसका जवाब मुझे यहाँ पर पहुंचाया था शिखा जी ने, कंग्रेचुलेशन शिखा जी, मानसरोवर से आपने मैसेज किया, आज की मॉर्निंग आप बनती है सुपरस्टार। जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की मॉर्निंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी। कुछ लोगों ने गलत जवाब दे दिए, बल कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के सुना करो यार। मोहसिन जी ने एकदम सही जवाब दिया था बनारस से, एंड डी के अरोड़ा जी ने सही जवाब दिया था चंदन नगर से, इसके अलावा प्रियंका ने सही जवाब दिया था, पीसी एकदम सही जवाब दे रही थी, हेलो हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है, ऑल इज वेल दिस इज राइट आंसर, आनंद जी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी जी सूर्य नगर से सही जवाब दे रही थी, सपना जी गलत जवाब हो गया आपका, एंड जुबी डुबी बारा गलत जवाब, सोनू मोनू रुचिका वंशिका जी आपने मैसेज तो अच्छा किया लेकिन जवाब गलत हो गया। मंजोला से मैसेज आई मेरे पास, गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हालचाल है, ऑल इज वेल दिस इज राइट आंसर डॉक्टर सुरेश। हमारे पास मैसेज आ रहा है ये यहाँ पर प्रीतम का, इन्होंने सही जवाब दिया है, हनुमान मूर्ति से जुड़े थे हमारे साथ रिंकू जी, एंड साथ में डेली रोड से मैसेज पहुंचा है मेरे पास वर्षा का, सही जवाब के साथ मेरे साथ जुड़े थे बबली अंजान, गीता जी साथ में ललिता जी लक्ष्मी जी, इन्होंने लिखा है हाय गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, गुड मॉर्निंग बीबी राधिका जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग अलीशा हाय कैसे हैं आप, इन्होंने भी गलत जवाब दे दिया यार, हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है, दौलत बाग से अंसार हुसैन साहब जुड़ गए हैं आज की मॉर्निंग, राजा कश्यप जी मेरे साथ जुड़े हैं गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, एंड ये रणवीर सिंह जेठालाल मेरे साथ जुड़े हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हालचाल है, सुप्रभात गुड मॉर्निंग सर,
1: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो मिला था सारा क्वेश्चन क्या था।
0: गुड मॉर्निंग ललिता कश्यप जी जुड़ गई मेरे साथ आज की सुबह, ये भी मुझे मैसेज कर रही हैं, एंड हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा है राहुल जी का, इनका भी संदेश पहुंच गया है, एंड हमारे पास वर्मा जी का मैसेज पहुंच रहा है, अतुल वर्मा ये भी सही जवाब दे रहे हैं, हाय सर गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं, मुस्कान जुड़ गई मेरे साथ आज की मॉर्निंग, हेलो मुस्कान गुड मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन सब कुछ ऑल इज वेल रहना चाहिए, फिलहाल इसी गाने के साथ मैं जा रहा हूँ, छोड़ के बहुत ही प्यारा ट्रैक, आप मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए, जुमा मुबारक हो, फैबुलस फ्राइडे मॉर्निंग, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और देखिए लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो जिंदगी में ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ एक्शन और रिजल्ट पे फोकस करना है, और लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपको पॉजिटिव सोचना है, जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपकी लाइफ में अच्छा होगा, कहते हैं ना जो जैसा सोचता है वो वैसे ही बन जाता है, तो जब सोचना ही है तो अच्छा सोचिए यार, है ना, जब कुछ देना ही है तो अच्छा दीजिए अपनी तरफ से, और जब आप अच्छा देंगे अच्छा सोचेंगे तो यकीन मानिए वो ऊपर वाला अल्लाह वाहेगुरु खुदा भगवान ईश्वर सदैव आपके साथ अच्छा करेगा। चलिए इसी प्यारी बात के साथ ले रहा हूँ आपसे जाने की इजाजत, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।

10:13 हो गए हैं, 17 जुलाई की सुबह आनंद को सुन रहे थे आप। अगली जो कड़ी है वो एंजॉय करेंगे आप खुशी के साथ, यानी कि नेक्स्ट प्रोग्राम आरजे खुशी के साथ एंजॉय करिएगा। फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय।

0: बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: ऑल राइट इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्किया
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, कैसे हाल चाल है आपके दोस्तों? आई होप सब अच्छे ही होंगे, उम्मीद तो यही है हमें, और हमेशा अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर अच्छे ना भी हो ना तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं ना, इनमें बहुत ही पावर होती है, एंड पावरफुल शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं हमारे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं ना वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। तो हमेशा हैप्पी रहिए, अच्छा बोलिए। फ्राइडे मॉर्निंग है, अमेजिंग डे है आज यार, और वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 10:26 हो चुके हैं। ये है आपकी अपने सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, आपकी मॉर्निंग को बनाने आई हूँ खुशनुमा। और दोस्तों, आज का पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों, आज का खूबसूरत विचार श्री कृष्ण जी की सीख से जुड़ा हुआ है, और कहते हैं ना, कहा भी जाते हैं दोस्तों, कि भगवान को रहने के लिए मंदिर से भी ज्यादा इंसान का पवित्र हृदय पसंद होता है, क्योंकि मंदिर में तो इंसान जाता है, लेकिन अगर दिल में प्रेम, दया, सच्चाई और करुणा हो तो वहीं भगवान अपना स्थानीय निवास बना लेते हैं। इसीलिए केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी सुंदर बनाइए। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना और दिल में किसी के लिए बैर ना रखना, यही सच्ची भक्ति होती है। और दोस्तों, याद रखिए, मंदिर तक जाने वाले कदम अच्छे होते हैं, लेकिन किसी के दुख तक पहुंचने वाले कदम सबसे पवित्र होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इतना प्यारा जीवन मिला है, और हमें अगर किसी की मदद करने का मौका मिले, ईश्वर हम अगर हमें भगवान ने हमें इस इसलिए बनाया है, तो हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, हमारे पास और हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। इसी मॉर्निंग थॉट के साथ, ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। शो का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं है, मॉर्निंग मसाला। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मैं इतना बोलती हूँ ना कि भूल जाती हूँ, हाँ, लेकिन अब नहीं भूलने वाली हूँ और ना ही आपको भूलने देने वाली हूँ। चलो, एक अमेजिंग ट्रैक करण औजला की आवाज में आज की सुबह आप सभी के लिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई

गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी। मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, दिल की गला तो हम दसने के लिए आपसे आए हैं, लेकिन आप भी अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हो. उसके लिए आपको सिंपल से काम करना है, अपना फोन उठाना है और हमारा नंबर डायल करना है. व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल तो नहीं, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आप मुझे कर सकते हैं. आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं. उसके लिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896. और वक्त हुआ है 10:34. और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना आशीष कौर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में. और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी. दोस्तों, आज 17 जुलाई है और आज का दिन पूरी दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. जी हाँ, आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. और इस दिन का उद्देश्य है लोगों को ये याद दिलाना कि हर व्यक्ति को न्याय, समानता और सम्मान पाने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या देश से हो. ये दिवस 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया था और रोमो संविधि की याद में मनाया जाता है. इसे समझौते के आधार पर ICC की स्थापना हुई थी, जो युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जैसे गंभीर मामलों को न्याय दिलाने का काम करता है. लेकिन दोस्तों, न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है. न्याय दिवस तब होता है जब हम अपने घर, समाज और कार्यस्थल पर हर इंसान के साथ रिस्पेक्ट और कैजुअली से पेश आते हैं. जी हाँ दोस्तों, किसी के साथ कभी गलत भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो ऊंचा है, वो नीचा है. वो लाइक होता है ना कि कुछ लोग सबको नहीं बोल सकते हैं, बट हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है, हर किसी के नजरिया अलग होता है. लेकिन मुझे सबसे पहले यही लगता है कि देखिए, जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. सबसे पहले एक इंसान का इंसानियत होना, इंसान के अंदर इंसानियत होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है और हर इंसान तो एक जैसा ही है ना. बस सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबका थॉट, सबके सोचने का नजरिया अलग है, मतलब देखने का, सोचने का. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. और दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और मेरे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूँगी. एंड उससे पहले कुछ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, तो सबसे पहले हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना सीखना होगा. एंड न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे संस्कारों में भी दिखाई देनी चाहिए. और दोस्तों, एक छोटी सी लाइन आप मतलब मैं आप सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ. जहाँ सच का उजाला हो, वहीं विश्वास का संसार हो, हर दिल को मिले सम्मान, यही न्याय का असली आधार हो. ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको मिले बराबर अधिकार. इसी सोच के साथ बने रहिए. एक बेहतरीन खूबसूरत गीत के साथ मैं आपको यहाँ पर एक ट्रैक सुनवाती हूँ. बहुत ही खूबसूरत गाना है और मौसम भी बड़ा सुहाना है आज मुरादाबाद का. ठंडी हवाएं चल रही हैं
और जब इतना सुहाना मौसम है तो एक सुहाना सा गाना तो बनता है ना दोस्तों। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी लौट कर आएंगे और भी आपसे बातें करेंगे, बस आप यूं ही मुस्कुराइएगा और अपने संदेश पहुंचाने में ना कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है? वरना हम क्या करेंगे, आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि खुशी नहीं चाहेगी, ना नाराज होगी ना नाराज होने देगी, ठीक है? तो चलो ये गाना सुनो।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और अभी आपने बी पराग जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना। कुछ गाने बड़े प्यारे होते हैं, पंजाबी ट्रैक भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो मैंने कहा चलिए अपने श्रोताओं को कुछ पंजाबी गाने सुनवा देते हैं। और आज 17 जुलाई है दोस्तों, अपने आप में बहुत स्पेशल दिन है। फ्राइडे भी है, गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज 17 जुलाई का दिन बेहद स्पेशल है, क्योंकि आज जन्मदिन है एक ऐसी कलाकार का जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और टैलेंट से करोड़ों दिलों में अपनी पहचान बनाई। मैं बात कर रही हूँ रवि किशन जी की। जी हाँ दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है। और हमारी पूरी एफएम फैमिली की ओर से रवि किशन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों रवि किशन जी का जन्म 17 जुलाई 1969 में हुआ था मुंबई में। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन परिवार इस फैसले के पक्ष में नहीं था। कहते हैं कि सिर्फ 500 रुपए लेकर वे अपने सपनों को पूरा करने मुंबई निकल पड़े। यही हिम्मत और जुनून आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। शुरुआत क्या होता है, स्टार्टिंग में तो कोई भी चीज जब हम करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। छोटे छोटे रोल और कई संघर्षों के बाद उन्हें असली पहचान मिली फिल्म तेरे नाम से। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में ऐसा मुकाम बनाया कि वो इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय सितारों में गिने जाने लगे। हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सहित कई भाषाओं की सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी का जादू बिखेरा। टीवी पर बिग बॉस में उनकी सादगी और दिलचस्प अंदाज ने भी दर्शकों का खूब दिल जीता। हाल ही के वर्षों में खाकी दा बिहारी चैप्टर मामला गिल है और फिल्म लापता लेडीज में उनकी शानदार अभिनय की खूब सराहना हुई। आज वे सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लोकसभा सांसद के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों रवि किशन जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर सपनों पर विश्वास हो तो मेहनत सच्ची हो और हौसला मजबूत हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। एक बार फिर से अभिनेता और सांसद रवि किशन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन का, बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा उनके ऊपर ब्लेसिंग्स प्रभु की बनी रहे। और बाकी तो वो सभी के दिलों पर राज करते ही हैं। तो चलिए अपने श्रोताओं के यहाँ पर जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का। और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। इन्होंने पहले से गाने की रिक्वेस्ट में भेजी है। सर पूरा प्रयास करेंगे हम इस ट्रैक को प्ले करने की। इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अलीशा का मुरादाबाद से मैसेज हमारे पास आया है। और उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिले हैं यहाँ पर राइट नाउ। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये मैसेज हमारे पास पूजा जी का आया है न्यू मुरादाबाद से। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर

आया है रामपुर से शबनम जी का, साथ में राहत अली जी हैं, नेहा हैं और लाइबा काजमी हैं। कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने एवरी मॉर्निंग की तरह आज भी बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखकर हमें भेजी हैं और साथ में दो दिल भी हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं। कहते हैं इन्होंने लिखा है कि तेरा जिक्र होते ही दिल मुस्कुरा जाता है, तेरा जिक्र होते ही दिल मुस्कुरा जाता है, हर अधूरा ख्वाब जैसे पूरा नजर आता है, मोहब्बत का मतलब अब समझ आया मुझे, मोहब्बत का मतलब अब समझ आया मुझे, जब हर दुआ में बस तेरा ही नाम आता है, जब हर दुआ में बस तेरा ही नाम आता है। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू। और सच में सच्चा प्यार तो वही होता है ना दोस्तों, जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं आरजे जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, अच्छा लगता है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज रवि किशन जी का बर्थडे है, आज जन्मदिन है उनका, 57 इयर्स की हो गए हैं सर, तो उन्हीं का एक प्यारा सा गाना हम सुनते हैं दोस्तों और आपको भी सुनवाते हैं। एंड उसके बाद आपसे भी बातचीत करेंगे, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं ना तो बिल्कुल कह सकते हैं, दिल खोल कर अपनी बातें हमसे कर सकते हैं। बाकी ये प्यारा से गाना अभी जिसी गिल की आवाज में एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद हम सुनेंगे रवि किशन जी के ऊपर फिल्माया गया एक बेहतरीन ट्रैक।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना उदित नारायण साथ में श्रेय घोषाल जी की खूबसूरत आवाज, कितना प्यारा गाना था ना दोस्तों। भोजपुरी ट्रैक भी बहुत ही प्यारे होते हैं और लिरिक्स भी बहुत ही खूबसूरत थे एंड नो डाउट आवाज में तो जादू होता ही है उदित जी की और साथ में श्रेय घोषाल जी। दोस्तों वक्त हुआ है 11:05 और आपकी यहाँ पर खूबसूरत जो मैसेज आ रहे हैं ना उनको देखकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा यू नो खुश हो गया है, हैप्पी फील कर रहा है। तो इतनी आपने खुशी दी है उसके लिए दिल से थैंक यू। अब हम भी आपको खुशी दे देते हैं। अब कैसे खुशी दें आपको हम बताते हैं दोस्तों। आपने जो यहाँ पर मैसेज किया है ना मैं उनको शामिल करूंगी तो आपका चेहरा खिलखिला उठेगा ना। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग ललिता जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। एंड इन्होंने कहा है कि मैम हम आपका शो रेगुलर सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और ये कहती हैं कि मैम आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल रही है, बस हम तो चाहते हैं कि जल्दी से बारिश भी हो जाए। और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, सेम टाइम सेम जगह, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, पंजाबी गाना सुनवाएंगे, थोड़ा इंतजार करो। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें मिला है भूपेश शर्मा जी का नगर पंचायत बागवाड़ा से, कहते हैं राधे राधे खुशी जी, आपको भी राधे राधे। सो इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, ये गाना है ना। चलिए सुनवाएंगे। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें मिला है कल्याणपुर मुरादाबाद से दुर्गी सैनी जी का, कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है हमें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत दिल से कि आपको हमारा शो पसंद आता है। तो दोस्तों आप भी बिना किसी देरी के फटाफट से मुझे मैसेज करो, क्यों इतना आलस कर रहे हो। हाँ उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी लदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। सो तो चलिए दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद मैं लौट कर जब आने वाली हूँ ना तो एक क्वेश्चन भी लेकर आने वाली हूँ, आकर मतलब जो क्वेश्चन मेरा है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करो और बाकी गाना सुनो।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी भूपी शर्मा जी ने नगर पंचायत पागवाड़ा से। कुछ गाने बड़े ही प्यारे होते हैं और मैंने भी आपको ये मौका दिया है कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा अपने थॉट, अपने कोई बात जो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो फटाफट से पहुंचाइए अपना व्हाट्सएप मैसेज। मोबाइल नंबर है 9837896896। 11:19 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और हमारे पास लगातार बैक टू बैक आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, तो उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं ना आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बहुत सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है आज की मॉर्निंग, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है एंड इसका हमारे घर में डेली हम ना यूज भी करते हैं वो चीजों को, तो मालूम कर लिया जाए। चलो मालूम कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके आप मुझे बताइए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा है? जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? आपको सही जवाब हमें पहुंचाना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाया जाता है? आप मुझे फटाफट से राइट आंसर पहुंचाइए अपने नाम के साथ। नंबर है 9837896896। जल्दी से बताइए, इतना टाइम मत लगाइए एवरीवन। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं मुरादाबाद से, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आए, हाय दी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? दरक्षा फातिमा जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, और साथ में रुकैया फातिमा है, फ्रूज फातिमा है, लाइबा भी है और खुशी भी है, और ये ट्रैक सुनना चाहती है तुझसे मैंने तुझसे प्यार किया। देखिए प्यार तो एक दूसरे से करना चाहिए, अच्छी बात है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है राधिका का, और ये कहती है खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अंसार हुसैन जी का, दौलत बाग मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए दोस्तों आप सही जवाब हमें पहुंचाइएगा, हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत एंड और देखते हैं कि आज हमारे श्रोता बता पाएंगे इस सवाल का जवाब, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाया जाता है? आपको ये सही जवाब हमें पहुंचाना है। जी हाँ, कौन सी वो जगह है बताइए बताइए, उसका नाम खूबसूरत है वहाँ का, नो वहाँ पर मैं चलो एक हिंट दे देती हूँ, वहाँ पर ना नारियल की खेती भी होती है बहुत ज्यादा, आप तो बता देंगे ना। चलिए जल्दी से अपने राइट आंसर अपने नाम के साथ पहुँचाएगा, नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लौट कर आती हूँ अभी।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिमिक्स अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। रिमिक में ट्रैक अभी आपने सुना। और दोस्तों, आज मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के एकदम राइट आंसर आए हैं और कुछ श्रोताओं ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बट कोई बात नहीं है, जिनको नहीं मालूम है उनको पता चल जाएगा। दोस्तों, मैंने पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाया जाता है, और उसी का राइट आंसर हमारे श्रोताओं ने पहुंचाया है। लेकिन सबसे पहले कौन है वो लकी लिसनर हमारे जिन्होंने राइट आंसर दिया है, उनका नाम हम रिवील करने वाले हैं अभी। लेकिन दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी, आप से मैं कोई भी सवाल पूछती हूँ, आप हर सवाल का जवाब मुझे दे देते हो। हाँ, आप जादू करो। वैसे मालूम होना भी चाहिए दोस्तों, आपने कमाल कर दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। राइट आंसर है केरल। जिन्हें नहीं पता था उनके लिए भी आज एक नई जानकारी मिल गई है, और अब जरा जान लेते हैं केरल की कुछ खास बातें। जी हाँ, कुछ खास जगहों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने सही जिन्होंने जवाब दिया है हमारे श्रोताओं ने, उनका नाम भी तो रिवील कर देते हैं। और हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर हमें पहुंचाया है नीरज जी ने। ये कहते हैं कि मैम राइट आंसर है केरल। एग्जैक्टली राइट सर, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन, आप हमारे आज के लकी हीरो बन चुके हैं। शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, और उसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ पर बहुत से जवाब आए हैं। ललिता कश्यप जी ने भी राइट आंसर दिया है केरल। ललिता जी, थैंक यू। माना कि आप मसाले सब्जियों में प्रयोग करती हैं, लेकिन आपने जगह का नाम भी बता दिया, क्या बात है, मानना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर विजय कुमार जी ने भी न्यू मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाया है, और राइट आंसर सर ने दिया है केरल। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सपना शर्मा जी का भी राइट आंसर आया है, थैंक यू सपना मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हरिओम महेश्वरी जी ने भी राइट आंसर पहुंचाया है, केरल मसालों का बगीचा कहलाया जाता है। खुशी जी, थैंक यू सर। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये कहते हैं दीदी सही जवाब है केरल। ओके, थैंक यू। और गलत आंसर हमारे पास डॉक्टर अरोड़ा जी, आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आपने गोवा बताया है, लेकिन राइट आंसर है केरल। और अभी केरल की कुछ खास जगहों के बारे में हम आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने जैसे आपको हिंट भी दिया था कि नारियल की वहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है, नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा केरल में हर जगह नारियल के पेड़ आपको दिखाई देंगे। अगर आप कभी केरल गए हैं या फिर जाना चाहते हैं, तो वहां पर नारियल के पेड़ हर जगह होते हैं, और उसको नारियल की धरती भी कहा जाता है। वहाँ पर कोकोनट काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लाइक चटनी भी वो बनाते हैं और सब्जी में भी वो उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड उसके अलावा मसाले काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। एंड हाउस बोट केरल की झील और शांत पानी में चलने वाली हाउस बोट की सैर दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों, कथकली नृत्य, रंग बिरंगे मेकअप और शानदार वेशभूषा वाला ये पारंपरिक नृत्य केरल की पहचान है। और साथ में खूबसूरत समुद्र तट, बीच, कोबल और कोबलम और मतलब बहुत सारे वहां पर घूमने के प्लेसेस हैं, बीच है जहां पर आप जा सकते हैं। और साउथ इंडिया का आपको पता ही है कि डोसा इडली बहुत ज़्यादा यू नो फेमस है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा है बस अपना राइट आंसर दिया है, थैंक यू। बट मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना नाम भी लिखा कीजिए, लेकिन पता नहीं कैसे आप भूल जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बट कोई बात नहीं दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने सही जवाब हमें पहुँचाए हैं। तो इसी खुशी में एक प्यारा सा गाना खुशी आपको सुनवाती है, उसके बाद लौटकर मैं अभी आती हूँ वापस, तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। एंड समय में फिर से आपको बता देती हूँ, वक्त हुआ है 11:40, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे मन लगा कर कीजिएगा, और हाँ मैम किचन में भी ध्यान दे लीजिएगा, पता चला कि क्या बोलते हैं रोटियां जल गई हैं। हमारा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ध्यान जब कहीं और होता है तो हम गैस पर कुछ भी बनाने के लिए रख देते हैं और बाद में हमें ध्यान आता है ओहो हमने तो गैस पर ये बनाने रखा था, और जब जाकर देखते हैं तो वो पूरा जल चुका होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि किचन में भी ध्यान रख लीजिएगा। और एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, उसके बाद करेंगे और भी आपसे बातें, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर खुशी के साथ।
1: यार सुख भाई ये करी की जंदे दा तो रोज दा ही काम
2: ओ भरावा ए मेरे वीर।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

दोस्तों अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम से। और सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारे आसपास इतने प्यारे प्यारे पक्षी चहचहाते हैं, बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। सुबह का वातावरण बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं उठ पाते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप भी मॉर्निंग में जल्दी उठा कीजिए। सुबह का गोल्डन सवेरा आपको देखना चाहिए, बहुत ही प्यारा होता है। और मतलब अगर आप सुबह सुबह 5 बजे जब उठकर वॉक करने जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन एकदम खुशी खुशी बीतेगा। आपको भी पता नहीं चलेगा कि सुबह से शाम कब हो गई है और एकदम सुपर फ्रेश आप फील करेंगी। तो मॉर्निंग में उठने के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी टाइम पर हो जाती हैं, इजीली हमारे सारे काम हो जाते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। अगर देर से उठते हैं वहीं तो हमारे सारे कामों में हमें हमें जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि टाइम पर हमें कहीं भी पहुंचना होता है, चाहे ऑफिस हो, शॉप हो, कोई भी काम हो, तो हमें समय पर ही जाना होता है। और जब आप लेट उठेंगे तो सारे काम फिर आप भागते दौड़ते करेंगे, तो उससे अच्छा है कि सुबह सवेरा उठो और मॉर्निंग वॉक करने जाओ। बाकी जो भी आपके कार्य हैं उनको आराम से आप करें। और दोस्तों आज का दिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज वर्ल्ड इमोजी डे भी है। सोचिए अगर इमोजी ना होती तो हमारी चैट कितनी फीकी लगती ना। एक छोटी सी मुस्कान, प्यार, मजेदार हंसी, खुशी या फिर उदासी, कई बार ये छोटी छोटी इमोजी वो बात कह देती हैं जो लंबे लंबे शब्द भी नहीं कह पाते। और आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जो बिना इमोजी के चैट करता हो, कभी भेजकर

0: हम भर देते हैं, कभी धन्यवाद कह देते हैं हाथ जोड़कर। हाँ दोस्तों, वैसे हमारे पास ना कुछ वॉइस नोट भी आए हैं। आज वर्ल्ड इमोजी डे पर देखते हैं मैम ने क्या भेजा है, सुनते हैं उनकी आवाज। तो हमारे पास आया है बड़ा प्यारा सा वॉइस नोट, मैं क्विकली उसको प्ले करती हूँ और आपको भी सुनवाती हूँ कि मैम ने क्या भेजा है आज की सुबह।
1: मुझे मेरा फेवरेट है क्योंकि ये सारे, और ये रोने वाला है, मुझे मेरा फेवरेट है क्योंकि ये सारे सारे कंडीशंस पे अप्लाई हो जाता है एंड इट्स अमेजिंग। ये थोड़ी जेंजी वाइब भी रहता है रोने वाला इमोजी।
0: ओए होए, मैम को रोने वाले इमोजी ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि बहुत सारे बातों में ये हेल्प कर देता है, बहुत सारी चीजों में काम भी आ जाता है। दोस्तों, इमोजी का एक अपना ही स्वैग है, क्यों? और हमारे पास कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। अच्छा दोस्तों, जब आप भी किसी से बातचीत करते हो व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं भी आप बात करते होंगे, तो इमोजी तो आप भी भेजते होंगे ना, पक्का भेजते होंगे। हाँ मुझे पता है। वैसे मैं जब बातचीत करती हूँ, वैसे तो बहुत ही कम कर पाते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी को मैसेज करना होता है, कोई रिप्लाई देना होता है, तो अगर कोई मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहा है तो मैं प्यारी सी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग भेजती हूँ। स्माइल वाली इमोजी मैं साथ में लगाकर भेजती हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि मैं, जब कोई इतने प्यार से हमें गुड मॉर्निंग विश करता है, राधे राधे विश करता है, बोलता है, तो रिटर्न में तो होना चाहिए ना एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से। ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं एवरी मॉर्निंग की तरह। साथ में शहीद अशारिक अली जी, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आज का शो आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में रईस दूल्हा अंसारी जी हैं, और कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, हाउ आर यू, आई एम फाइन सर। कहते हैं इन्होंने भी कुछ लाइनें लिखी हैं कि कोई वादा नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, कोई वादा नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, रुदाई के बाद भी मुझे तुमसे प्यार है। और कहते हैं कि तेरे चेहरे की उदासी कह रही है, कि तेरे चेहरे की उदासी कह रही है, मुझसे बिछड़कर तू भी बेकरार है। और सर ने सही जवाब भी हमें पहुंचाया है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर, थैंक यू सो मच। आप सब ने पार्टिसिपेट किया आज की मॉर्निंग, अपने खूबसूरत प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाए, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना कीमती वक्त देते हैं, इतने ध्यान से, इतने प्यार से रेडियो को आप सुनते हैं, प्यार देते हैं। आपके लिए दिल से आरजे खुशी एंड बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती है और क्लैपिंग भी करना चाहती है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा लगता है जब एवरी मॉर्निंग आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, कसम से मेरा तो दिन बन जाता है। और मैं ना, मतलब सच बता रही हूँ आपसे, मैं जब बात करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं यहाँ से स्किप करूँ, मैं आपको छोड़ कर जाऊँ, बिल्कुल नहीं मन करता है, लेकिन क्या करें, वक्त के अनुसार चलना भी पड़ता है ना। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति एंड मैं मिलूंगी आपको 3 से 5 हेलो फरमाइश शो में। तो जिनका भी कॉल नहीं लगा है मंडे टू थर्सडे, तो आज फ्राइडे है, आप लगा सकते हैं कॉल और उसमें अपनी पसंद का गाना आप सुन सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, 3 से 5 मैं आने वाली हूँ आपके लिए प्यारे प्यारे गाने, आप ही के फेवरेट चलाएंगे। और अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ख्याल रखिए।

0: ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है, जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एक क्लब स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुरमुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: स्वागत है साथियों आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त RJ खुशी। स्मार्ट के सौजन्य से चलाई जा रही श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के आज इस प्रोग्राम में हम कुछ बहुत ही ज्यादा खास लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार, हर बच्चे और हर आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है। जी हाँ, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। लेकिन आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, एक सच्ची कहानी।
1: नमस्कार RJ खुशी, ये कहानी मैं बहुत करीब से जानता हूँ, हमारे ही गांव की है। एक समय था जब यूपी के एक गांव में एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था कमला। बहुत हस्ती खेलती चंचल बच्ची, लेकिन उस समय गांव में टीकाकरण को लेकर इतनी जानकारी नहीं थी। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को सुई क्यों लगवाएं, बुखार आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। कमला के माता पिता भी यही सोचते रहे और धीरे धीरे समय निकल गया। एक दिन गांव में खसरे मेलेसिस का प्रकोप फैल गया और वही बीमारी कमला को भी लग गई। पहले बुखार, फिर दाने और फिर हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमला बच तो गई, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसे हमेशा सांस की दिक्कत रहती थी, पढ़ाई भी छूट गई, और आज भी जब वो बड़ी हो चुकी है तो कहती है, काश मेरे माँ बाप ने मुझे समय पर टीका लगवा दिया होता।
0: कमला जी को अपनी जिंदगी मुश्किलों से काटते हुए देखकर दिल भारी हो जाता है। सिहतिया जी, क्या सच में सिर्फ एक टीका ना लगवाने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है, और यही वजह है कि हर साल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ता होता है, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इस दौरान पूरी दुनिया एक साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार किसी भी बीमारी से सिर्फ इसलिए ना पीड़ित हो क्योंकि उसे समय पर टीका नहीं मिला।
0: तो ये एक वैश्विक अभियान है?
1: हाँ बिल्कुल, इसे विश्व संस्था संगठन WHO चलाता है, और इसका मकसद है लोगों को समझाना कि टीके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए इस साल का थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क, यानी हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं और सुरक्षा देते हैं।
0: बहुत ही सुंदर संदेश है, लेकिन सिहतिया जी, हमारे भारत में इसका क्या महत्व है, खासकर गांव में?
1: भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। इसके तहत हर साल लगभग 2.7 करोड़ नवजात बच्चों को मुफ्त में टीके दिए जाते हैं। आज की तारीख में भारत में 93.5% तक बच्चों को पूरा टीकाकरण मिल रहा है, जो पहले 76% के आसपास था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: ये तो सच में बहुत बड़ी प्रगति की बात है। सिहतिया जी, आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण से छूट जाते हैं?
1: देखिए RJ खुशी, सच्चाई यह है कि हाँ, आज भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं, और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे बच्चों को हम जीरो डोज बच्चे कहते हैं, यानी वे बच्चे जिन्हें अभी तक एक भी टीका नहीं लगा है। ये स्थिति ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिलती है जहाँ जागरूकता कम है या पहुँच में दिक्कत है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से।
0: मतलब अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है।
1: बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इस चुनौती को समझते हुए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है, मिशन इंद्रधनुष।
0: अरे हाँ, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन ये करता क्या है?
1: देखिए, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा अभियान है जिसका मकसद साफ है, जो बच्चे अब तक टीकाकरण से छूट गए हैं पूरा टीकाकरण देना। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक अभियान है जो गांव-गांव जाकर काम करता है। इसने हजारों गांव तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 16,000 से ज्यादा गांव में और 48,000 से ज्यादा आकांक्षी जिलों में इसका काम किया है।
0: वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, इतने बड़े देश में इतने सारे गाँव और लोग, ये सब कैसे संभाले जाते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल आज के समय में तकनीक ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। जैसे हमारे पास ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि टीके सही तापमान पर सुरक्षित रहें और जहां जरूरत हो वहां समय तक पहुंच जाए।
0: मतलब टीके खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, UWIN। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो हर बच्चे और हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड रखता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा या महिला टीकाकरण से छूट ना जाए।
0: यानी अब पूरा सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना आसान हो रहा है।
1: जी हाँ बिल्कुल, अब हम डेटा के आधार पे काम करते हैं, जिससे निगरानी भी आसान हो जाती है और छूटे हुए लोगों को पहचानना भी।
0: बहुत बढ़िया, लेकिन सेहतिया जी एक बात अभी भी समझ नहीं आई आती, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग टीके से डरते क्यों हैं?
1: देखिए आरजे खुशी जी, की ही सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी और अफवाहें। कई बार लोग बिना सही जानकारी के ही बातें फैलाने लगते हैं और कह देते हैं कि टीका लगवाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो कोई कहता है इससे बुखार आता है।
0: हाँ, ये बातें तो मैंने भी कई बार सुनी है,
1: लेकिन सच्चाई कुछ और है। हल्का बुखार या सूजन आना बिल्कुल सामान्य बात है, इसका मतलब है कि शरीर उस बीमारी के खिलाफ लड़ना सीख रहा है और यह एक अच्छी प्रक्रिया है, ना कि डरने वाली बात।
0: तो असली खतरा क्या है?
1: असली खतरा है टीका ना लगवाना, क्योंकि अगर बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया तो वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे खसरा, पोलियो, टिटनेस या निमोनिया। ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो सेहतिया जी, क्या आप हमें पूरा टीकाकरण थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं?
1: जरूर, यह जानना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसे 3 महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं, BCG जो टीबी से बचाव करता है, OPV जो पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस बी का टीका।
0: ठीक है, यानी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है?
1: बिल्कुल, इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चों को कई टीके दिए जाते हैं। इनमें ओपीवी की खुराक, पेंटावेलेट वैक्सीन जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और HIV से बचाव करता है, साथ ही रोटावायरस और कुछ जगहों पर PCV भी शामिल होते हैं।
0: ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है।
1: जी हाँ, और यह यहीं खत्म नहीं होती। 9 महीने की उम्र में बच्चे को खसरा, रूबेला का टीका दिया जाता है। इसके बाद 16 से 24 महीने के बीच बूस्टर डोज दी जाती है, ताकि पहले लगे टीकों का असर और मजबूत हो सके।
0: और बड़े होने पर?
1: जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तब TPT का बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 10 साल और 16 साल की उम्र में TD यानी टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं।
0: और गर्भवती महिलाओं के लिए?
1: गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्हें TD का टीका दिया जाता है, जिससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा मिलती है। यह समय पर लेना बहुत जरूरी होता है।
0: सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सच में अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए, कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, और यही हमारा लक्ष्य भी है, हर बच्चे तक, हर परिवार तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि कोई भी जीव सिर्फ जानकारी की कमी के कारण खतरे में ना पड़े।
0: सेहतिया जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है टीकाकरण सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या हम इसे एक तरह का पूरा जीवन चक्र मान सकते हैं?
1: बिल्कुल आरजे खुशी, आपने बिल्कुल सही समझा। टीकाकरण को हम लाइफ साइकिल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान के जन्म से लेकर किशोर अवस्था और आगे तक अलग अलग उम्र में शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं। यानी यह कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि समय समय पर जरूरी सुरक्षा देने की पूरी प्रक्रिया है।
0: सेहतिया जी, अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, ये टीके आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? लोग क्यों कहते हैं टीकाकरण जिंदगी बचाता है?
1: देखिए आरजे खुशी, अगर हम पिछले 50 सालों का इतिहास देखें, तो टीकों ने दुनिया भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। जरा सोचिए, हर मिनट में लगभग 6 लोगों की जान सिर्फ टीकों की वजह से बच रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है।
0: मतलब हर मिनट 6 जिंदगी बच रही है, ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: और सिर्फ इतना ही नहीं, टीकाकरण ने बच्चों की मृत्यु दर को लगभग 40% तक कम कर दिया है। पहले जहां छोटी छोटी बीमारियों से बच्चों की जान चली जाती थी, आज वही बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। यही वजह है कि टीकाकरण को दुनिया का सबसे सफल और किफायती स्वास्थ्य उपायों में से गिना जाता है।
0: सच में ये सुनकर एहसास होता है कि टीकाकरण सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि जीवन बचाने का सबसे बड़ा साधन है।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, और यही कारण है कि यह सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, तो हम सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित बना रहे होते हैं।
0: तो सेहतिया जी, जरा ये भी बताइए कि गांव में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कैसे मनाया जाता है, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं?
1: देखिए, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान गांव में काफी सक्रियता देखने को मिलती है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं, उन्हें टीकाकरण के बारे में समझाती हैं, बच्चों के टीकाकरण कार्ड चेक करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए।
0: मतलब ये पूरी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित तरीके से चलती है।
1: जी बिल्कुल। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, PHC और आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाते हैं, जहां बच्चे और गर्भवती महिलाएं आकर अपने टीके लगवाती हैं। गांव में माइक से घोषणाएं की जाती हैं, लोगों को तारीख और स्थान की जानकारी दी जाती है, पूरे समुदाय को इसमें शामिल किया जाता है ताकि कोई भी परिवार पीछे ना रह जाए।
0: सिहतिया जी, आपने शुरुआत में कमला की कहानी सुनाई थी जिसने टीका ना मिलने की वजह से बहुत दर्द झेले, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां टीकाकरण ने किसी का जीवन पूरी तरह बदल दिया है?
1: हाँ अर्जे खुशी, और ये कहानी भी हमारे ही गाँव की है। कमला वही लड़की जिसने बचपन में टीका ना मिलने के कारण इतनी मुश्किलें झेली थी, जब बड़ी हुई तो उसने एक ठान ली। उसने निश्चय किया कि उसकी बेटी के साथ कभी भी ऐसा नहीं हो।
0: फिर क्या हुआ सिहतिया जी?
1: उसकी बेटी का नाम है सुजाता कुमारी। कमला ने उसके जन्म के दिन से ही हर टीके का पूरा ध्यान रखा। आशा दीदी के साथ खुद जाती थी, हर एक डोज समय पर लगवाती थी, एक भी टीका छूटने नहीं दिया।
0: और आज सुजाता कैसी है?
1: आज सुजाता एकदम स्वस्थ है। वह स्कूल जाती है, खेलती है, दौड़ती है और एक खुशहाल बचपन जी रही है। कमला अक्सर कहती है कि मेरी बेटी को वह दर्द कभी नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला था।
0: वाह, यही तो है असली बदलाव, यही तो है जीत।
1: और यही इस साल का संदेश भी है, हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं। टीकाकरण सिर्फ आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा है।
0: तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा और महसूस भी किया है कि टीकाकरण कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक सुई नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो आपके बच्चों को बीमारियों से बचाता है और उसका भविष्य सुरक्षित बनाता है।
1: और याद रखिए, टीका लगवाना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। जब आप अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं तो पूरे समाज को सुरक्षित बनाने में योगदान देते हैं।
0: तो दोस्तों, इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत टीकाकरण से ही संभव है।
0: तो इसी के साथ आज हम शो को समाप्त करते हैं और जाने से पहले लेते हैं सब मिलकर अपनी सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही
0: तो लाभ गई। नमस्कार श्रोताओं, अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: आज हम बात कर रहे हैं अपने एफएम रेडियो पर, एफएम रेडियो के माध्यम से वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है ये वीक और क्यों मनाया जाता है। 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हम इसको मनाते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर से हम CMO ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ बेलवाल सर हैं इस श्रृंखला में। आइए सर से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो वीक हम सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, क्यों हम इसको मनाते हैं?
3: मैं डॉक्टर संजीव बेलवाल, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीक हमारा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस को एक कवर करती है वैक्सीन्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो बच्चे छूट गए किसी कारणवश,
2: ओके,
3: ठीक है, या स्किप हो गया उनका किसी वजह से उसका वैक्सीनेशन। तो हमने 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का एक हमें पूरे UP में ये इसको चलाया जा रहा है, मुरादाबाद जनपद भी उसमें सम्मिलित है। तो इसमें जो एज ग्रुप आएंगे बेसिकली 5 से 6 साल के बच्चे होंगे जो कक्षा 1 में हो सकते हैं, उसको हम DPT बूस्टर लगा कर आपने वाले हैं, जिसमें सेकंड डोज उसको लगेगी बच्चे को बूस्टर के रूप में। तो इसमें 3 बीमारियों से उसको प्रिवेंट किया जाएगा, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तीसरा एज ग्रुप हमने इसमें लिया है TD10। TD10 मीन्स जो बच्चा 10वीं ईयर्स की हो गई है और उनकी जो कक्षा लगभग 4 से 5वीं कक्षा में वो पढ़ रहे होंगे।
2: जी जी।
3: तीसरा एज ग्रुप है हमारा TD16 के नाम से इसको बोलते हैं, तो यानी कि एज ग्रुप 16 हो गया और उसमें TD का मतलब क्या हो गया, टिटनेस एंड डिप्थीरिया से उसका बचाव होगा उन बच्चों का। तो जो बच्चे छूट गए हैं और जो बच्चों को अभी लगना भी है, यानी कि जो ड्यूज बेनिफिशरीज हैं उनको भी कवर किया जाएगा और जो बच्चे किसी वजह से स्किप हो गए उनको भी कवर अप किया जाएगा। तो ये इसका मेन मकसद ये है कि जो डिप्थीरिया पर्ट्यूसर टिटनेस तीनों ही बीमारियां काफी खतरनाक होती हैं, डिप्थीरिया भी पर्ट्यूसर टिटनेस। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की डेट में टिटनेस के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि इसका इम्यूनाइजेशन टिटनेस को कि फीमेल में पहले से इसको लगाया जाता है, तो पहले बहुत केसेस मिला करते थे, डिप्थीरिया के बहुत मिलते थे पर्ट्यूसर के। लेकिन डिप्थीरिया अब जो हम किसी भी बच्चे को डिप्थीरिया पर्ट्यूसर टिटनेस ना हो इस वीक में हम सभी बच्चों को कवर अप करेंगे। लगभग मुरादाबाद में हमारा टारगेट 65 से 70 हज़ार बच्चों को लगाने का है।
2: ओके सर, मतलब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं क्या?
3: हमारे 252 उपकेंद्र मुरादाबाद में, उनमें सभी में ही हमारी ANM पोस्टेड है और वहाँ पर हमारा टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 26 अर्बन PHCs मुरादाबाद में है, उन पर प्रतिदिन टीकाकरण होता है और डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल में प्रतिदिन टीकाकरण हमारा यहाँ होता है। सब सेंटर के अलावा जो स्पेस बच जाते हैं उसमें हम एक प्लान बनाते हैं, एक माइक्रो प्लान के तहत करते हैं, तो फिर हम उनको वेडनेसडे सैटरडे हमारे जो फिक्स डे होते हैं, अगर कोई एरिया छूट जाता है तो हम दूसरे डेज में भी उसको कवर अप करते हैं। तो हम बहुत सारी, अगर आप लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बहुत ही कॉस्टली वैक्सीन्स होती हैं, OPB, हेपेटाइटिस बी है ना, दूसरा हमारा BCG हो गया, जो मेनिंजाइटिस कॉज करती थी, निमोनिया कॉज करती थी, तो उसके लिए भी हमारे पास आज की डेट में वैक्सीन्स अवेलेबल है, हिप हमारे पास आती है। दूसरा, पहले बच्चों को बहुत डायरिया हुआ करता था, अब डायरिया के केसेस कम आने लगे हैं। अगर आप पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे, IMA के डॉक्टर से बात करेंगे, तो केसेस कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारे उसको प्रिवेंट करने

0: रोटा वायरस की वैक्सीन उपलब्ध है और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो अब केसेस हमारे पास बहुत कम आते हैं डायरिया के देखने के भी। तो सभी लोगों को अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, कई लोगों में इस चीज को लेकर, टीकाकरण को लेकर स्पेशली डर होता है, कई लोगों को बड़ा भ्रम होता है, कुछ लोग टीकाकरण अवॉइड करते हैं, बच्चों को भी नहीं लगवाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज कन्वे करोगे? आई डोंट नो कि लोगों में एक डर और भ्रांति फैली हुई है, पता नहीं क्यों।
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है,
1: हाँ जी,
0: आपने पहले पोलियो,
1: बिल्कुल,
0: एक बीमारी का नाम सुना होगा, अक्सर आप लोगों के देखने को मिल जाते होंगे रोड पे, सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, लेकिन क्या अब आपको मिलता है?
1: नहीं सर,
0: नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको पोलियो का वैक्सीन दिया गया
1: है ना,
0: और आज भी हम इंजेक्टेबल वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन के रूप में देते हैं। तो हमारे यहाँ से, देश से ये पोलियो खत्म हो चुका। जो बच्चे खेल नहीं सकते थे, कूद नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे और उनको डिफॉर्मिटी हो जाती थी, अपने आप को एसएस महसूस करते थे, तो वैक्सीन का जब सभी लोगों ने अडॉप्ट किया तो बीमारी यहाँ से चली गई। दूसरा, स्मॉल पॉक्स, आपने आप इस समय नहीं देखा होगा, लेकिन आपने कभी पुराने लोगों को देखा जरूर होगा, चेहरे पे दान चकत्ते से पड़े हुए होंगे,
1: बिल्कुल,
0: तो वो फेस से लगता है कि वो पुराने लोग हैं कि जिनको ये स्मॉल पॉक्स हुआ
1: जी।
0: लेकिन जब वैक्सीन का कवरेज हुआ, सबने वैक्सीन अडॉप्ट की, बीमारी चली गई। तो ऐसे ही हमारे देश में हमें मीजल्स एंड रूबेला का टारगेट है 2030 तक हमें इसे खत्म करना है। मीजल्स जिन्होंने अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे, तो मीजल्स के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, रूबेला के केसेस देखने को कम मिलते हैं। इसी प्रकार से जो वैक्सीन VCG होती है वो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करती है। तो ये चीजें जो हैं, अगर हम सारी 12-13 वैक्सीन जो गवर्नमेंट इसमें उपलब्ध करा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप इनकी सारी कॉस्ट अगर लगाएंगे तो लगभग 40,000 से 45,000 रुपए की टोटल वैक्सीन का शेड्यूल बनता है बच्चे का, और सरकार इसको बिल्कुल फ्री में दे रही है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना हो सकता है, अगर बच्चे को लगा तो हल्का फुल्का बुखार आएगा, तो उसके लिए पैरासीटामोल की टैबलेट हमारी ANM जो होती है, स्वास्थ्य कर्मी, वो उनको बताती है और उनकी काउंसलिंग प्रॉपर करती है। तो एक पूरा टीकाकरण कार्ड होता है, उसको बताया जाता है कि कब आपको लगना टीका है, किस समय आपको आना है, इसके मेरिट्स क्या है, इस वैक्सीन के डीमेरिट्स, किन बच्चों में नहीं लगनी चाहिए, है ना। अगर कोई बहुत लंबे समय से लॉन्ग स्ट्रॉयड ट्रीटमेंट पर चल रहा हो
1: जी,
0: उसमें कुछ वैक्सीन अवॉइडेबल है, या फिर कोई एलर्जिक हो उस चीज से, या फिर उसको कभी पहले किसी वैक्सीन से रिएक्शन हुई हो, तो ये चीज़, अदरवाइज इसका कोई भी एडवर्स रिएक्शंस है नहीं और बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बहुत इजी वैक्सीन होती हैं, एक्सेप्टेबल हैं, और सभी जगह हमारी पूरे जनपद मुरादाबाद के पूरे देश में सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये, और इम्यूनाइजेशन सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और इम्यूनाइजेशन से ही ये जो बीमारियां प्रिवेंटेबल डिजीज है इसको खत्म कर सकते हैं।
1: आई होप श्रोताओं आपको भी ये मैसेज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हमारा भी आपसे यही संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं, घबराएं नहीं, जैसे कि सर ने बताया, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाएगा, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जरूर टीकाकरण करवाएंगे। सर, जाते जाते तमाम सुनने वालों को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे?
0: बस मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों के, पड़ोसियों के बच्चों के, रिश्तेदारों के बच्चों को, सब में ही आप लोग अपना अवेयर करें, उन्हें बताएं, समझाएं टीकाकरण की महत्ता क्या है। अगर हम नहीं लगवाते हैं तो हमारे बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं, उनसे बीमारियां ना हो। अगर किसी को भी बीमारी होती है तो उसको इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली हर प्रकार से हर्ट्स होता है, उससे बचने के लिए वैक्सीन को अडॉप्ट करें और उन बीमारियों से बचें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ आने के लिए, नमस्कार।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद। बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
3: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
2: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
3: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है, अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करे कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
2: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
3: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम, ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसलकर बच्चे को दिया जा सकता है।
2: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
3: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
2: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
2: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
3: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
2: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
3: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
2: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
3: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
2: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
3: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
2: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
3: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
2: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
2: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
3: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
2: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
3: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
2: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
3: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
2: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
3: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
2: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
3: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी, सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
2: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत से लाभ कई,
2: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind the special place in India's history.
1: Aaj Bharatiya Rail ne bhi 21vi sadi ki is technology mein ek bada step liya hai. आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है. अब ये सफर 90 किलोमीटर का है. हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे.
2: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो. सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबॉडी.
2: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners, ship managers and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties.
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा.
5: उठो बढ़ो आओ हाथ मिलाओ.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
1: मैं हूं भावना। और आज चर्चा होगी हमारे बीच में आभा घाट को लेकर। आज आपको बताएंगे आशीष आभा के बारे में। आशीष बताइए।
0: बिल्कुल भावना, अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज मैं और मेरी सहयोगी भावना, हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आभा की। आखिर ये आभा है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे और कौन कर सकता है? भावना, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
0: अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास अपने बीमार होने के बाद में जाती हैं, तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है?
1: पहला सवाल आशीष तो यही होता है कि ये बीमारी आपको कब से है और क्या इसके पहले कहीं ये बीमारी का इलाज कहीं करवाया है कि नहीं करवाया है। तो हमारे अगर हमने इलाज करवाया होता है तो हम पर्चा दिखा देते हैं उनको, प्रिस्क्रिप्शन, और अगर नहीं कराया होता है तो बता देते हैं कि नहीं कराया है।
0: कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास शायद पर्चा खो गया हो, फट गया हो या नहीं मिल रहा हो, और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पुरानी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
1: हमारे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार कि मान लीजिए कभी हम इलाज कराने गए और 2-3 साल पुराना पर्चा, कहाँ कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता है, तो डॉक्टर से बस ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कभी करवाया था, लेकिन हमारे पास उसका कोई
0: प्रमाण नहीं हो पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता या ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते कि हाँ हमारा इलाज चला तो ऐसे ही चला था। दरअसल मैं ये बातें इसलिए भी पूछ रहा हूँ भावना, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय ही इस बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई जो हमारे या बहने हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों को फेस किया होगा जब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे पूछते हैं लेकिन वो समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसी के निराकरण के लिए हमारे पास है आभा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आभा क्या है।
1: बिल्कुल आशीष,
0: तो आभा मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताऊं कि दरअसल ये 2021 में सरकार की तरफ से लागू किया गया एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं या अगर आप उसमें शामिल हैं या अपना इलाज करा रहे हैं तो सबको आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम किसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा हमारी जरूरत पर हमको काम आ सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़े, ठीक ऐसे ही आभा है। जानती हैं कैसे?
1: कैसे?
0: दरअसल आभा का मतलब होता है ABHA, आभा। ये एक तरीके की हेल्थ आईडी है। आभा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है
1: जी।
0: तो ये हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी और ये एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है।
1: तो अकाउंट क्या आशीष, ये कोई खाता है?
0: हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे ये एक यूनिक आईडी है, जैसे हमें आधार कार्ड हमारा होता है तो आधार हमारी एक यूनिक आईडी है।
1: अच्छा।
0: जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ठीक ऐसे ही आपकी एक हेल्थ आईडी बना दी जाती है, एक हेल्थ खाता बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी आपकी जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं वो उस खाते में आप दर्ज कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं उनके लिए बहुत काम की जानकारी होगी?
1: आशीष, ये बहुत काम की चीज है, लेकिन आप इसके विषय में और भी बताएं जिससे हमारे श्रोता इसको सुने और समझें।
0: बिल्कुल, हम इस पर जरूर बताएंगे कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक आम जानकारी जो आभा से जुड़ी है वो मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक यूनिक हेल्थ आईडी है जिसमें आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके इसे जनरेट किया जाता है। 14 अंकों का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आभा का
1: जी।
0: और आभा कार्ड की, जैसा आपने कहा और पूछा भी है, तो कई सारी विशेषताएं हैं और इसके कई सारे लाभ भी हैं जो लोगों को बिना किसी परेशानी के भावना हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने में मदद करता है।
1: मतलब
0: ये कि जैसे आपको कोई भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए या आप किसी भी स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल कर रही हैं, तो सारी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं आभा आईडी में दर्ज हो सकती है। अब मैं थोड़ा आपको खुलकर बताता हूँ, खुलकर यानी विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आभा कार्ड, जिसे मैंने पहले बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है लोगों की, जो एक यूनिक 14 अंकों का नंबर है, जिसे भारत में हेल्थ केयर एक्सेस को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के हिस्से के रूप में ही आभा हेल्थ कार्ड आपको देश भर के हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और उसको शेयर करने की अनुमति देता है।
1: मतलब अब आप समझ पाएं? हमारे पास पर्चा नहीं भी है तो भी अगर कहीं गुम हो गया हमारा पर्चा, तो ये जो आभा कार्ड है उसका प्रयोग करके हम इसको अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: जानकारी हासिल कर सकते हैं।
0: तो आभा कार्ड के मोटे तौर पर जो लाभ है, पहले मैं वो बता देता हूँ।
1: हाँ बताइए।
0: पहला, आसान हेल्थ केयर एक्सेस है आपको। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके में उन कार्यक्रमों में भी कहीं नामांकन करना है तो वहां भी आपको ये हेल्प करता है। स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कहीं से कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से कराया है, तो आप अपने आभा कार्ड में अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपकी एक ये भी जानकारी आपके पास रहेगी कंबाइंड तौर पर। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका लगातार बन रहा है, जिसको आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो उससे शेयर कर सकती है।
1: तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है आशीष, कि जैसे कि आपने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने कहीं कराई है, स्वास्थ्य बीमा कराई है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो इसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा?
0: पैसे से मतलब अभी नहीं है। देखिए, वो तो जाहिर है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आप अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स देते ही हैं पॉलिसी लेते समय, ठीक है। और पॉलिसी की जब मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी हैं हेल्थ सेक्टर की जिसमें मैच्योरिटी के बाद तो कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी लगती है तो उस समय आपका इलाज उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाता है, यानी कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, जो पैसा खर्चा आता है वो सारा बेयर होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं अलग अलग जो पॉलिसी सेक्टर में हैं कंपनियां, जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी आपको अमाउंट मिल जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी हेल्थ पॉलिसी जो है, स्वास्थ्य बीमा जो है, उसके विवरण को आभा आईडी से अगर लिंक करते हैं तो अपने मेडिकल कवरेज को आप एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं।
1: एक ही जगह पर?
0: हाँ, एक ही जगह पर अपने मेडिकल कवरेज को आप ट्रैक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि भावना, आप मुझसे पूछ तो रही हैं लेकिन आपको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को कुछ आप भी जानकारी
1: मेरे मन में मेरे प्रश्न का एक जवाब दे दीजिए आशीष आप पहले
0: जी।
1: कि अकाउंट आपने जिसे आभा आईडी के बारे में बताया, आभा कार्ड के बारे में बताया, आभा एक अकाउंट है, और ये अकाउंट में क्या कुछ हमें पैसे जमा करने हैं या सरकार देगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी?
0: नहीं, इसमें कोई ऐसा पैसा वाला हिसाब किताब नहीं है भावना। दरअसल ये एक तरीके का मेडिकल या हेल्थ अकाउंट है, स्वास्थ्य खाता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपको समझाता हूँ कि आभा का अर्थ क्या है, पहले इसको समझ लें। दरअसल आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जैसा मैंने अभी बताया, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत बनाई गई एक यूनिक हेल्थ आईडी है। आभा कार्ड एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है, जो किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को समेकित करता है।
1: अच्छा।
0: जिससे हेल्थ केयर सेवाओं का आसानी से एक्सेस मिलता है, यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर की सेवाएं हैं उसमें आपको एक सही एक्सेस मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है। और ये आभा हेल्थ कार्ड यूजर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ साथ अपने हेल्थ डेटा को भी आसानी से शेयर करने की अनुमति देता है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, और इससे कहीं ना कहीं एक बेहतर समन्वय और पर्सनलाइज्ड केयर सुनिश्चित होती है भावना। और हेल्थ केयर की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आभा का उद्देश्य भारत में समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और कुशल बन जाती है। अब एक सवाल और भी आता है, ये तो हो गया कि आभा क्या है, लेकिन सवाल ये है कि आभा क्यों बनवाएं, यानी कि सवाल ये है कि
1: आप कैसे बनवाएं?
0: हाँ, सवाल ये है कि आभा आईडी क्यों बनाएं? ठीक है,
1: कि हमारे जो श्रोता हैं अगर इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी कर पाएं हाँ। कि क्यों बनवाएं और कैसे बनवाएं, कहां अप्लाई करें।
0: बिल्कुल, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में दरअसल हमने देखा है कि हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म लगभग लगभग आज की डेट में डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटल हम अगर स्तर पर देखें या ई गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं डिजिटली बदलाव कर रहे हैं। तो भारत के तेजी से बढ़ते हुए जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसका हिस्सा बनने के लिए अपनी आभा हेल्थ आईडी बनाना बहुत जरूरी है। समझ रही हैं आप?
1: हाँ,
0: जैसे जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है देश की सरकार का या विभागों का या अलग अलग महकमों का जहां पे लोगों को फायदा होता है योजनाओं से, उससे जुड़ने या उसका हिस्सा बनने के लिए आपकी आभा हेल्थ आईडी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टरों के साथ साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने और शेयर करने का सबसे आसान तरीका देता है, जिससे एक तो तेज डायग्नोसिस हो सकेगा और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो भावना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपके पास आभा आईडी होना जरूरी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़े और कारण बताएं कि डिजिटल हेल्थ केयर के लिए आभा कार्ड लोग क्यों चुने।
1: अच्छा ठीक है, आपने पूछा कि आभा कार्ड क्यों चुने, तो आशीष हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो आभा आईडी है एक ही जगह पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे और जो टेस्ट रिपोर्ट है वो एक ही जगह पर स्टोर करती है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: यानी कि ये जो तीनों चीजों की जानकारी है वो हमारी आभा आईडी में एक ही जगह पर आ जाएगी,
1: जहाँ पे स्टोर कर लेती है।
0: ठीक है,
1: इस वजह से ही भी आभा आईडी चुने। और दूसरा कारण ये है, और दूसरा ये कि डॉक्टर तुरंत आपकी मेडिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आशीष, और पेपर वर्क और प्रतीक्षा समय को कम कर सकते हैं।
0: मतलब ये हुआ कि कहाँ, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे पेपर होंगे तो हमको अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें हमारा समय ज्यादा जाएगा, तो कम से कम वो समय बचेगा
1: वो
0: और डॉक्टर एक ही जगह पर जल्दी से वो सारी हिस्ट्री समझ जाएंगे। ठीक है,
1: और दूसरा ये कि पॉलिसी के जितने भी लाभ हैं वो और कैशलेस ट्रीटमेंट तक आसान एक्सेस के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा विवरण को लिंक करें।
0: अच्छा, मतलब जो कैशलेस इलाज मिलता है अगर वो आप पाना चाह रहे हैं और आपने अगर इसको लिंक कर लिया है अपनी आभा आईडी से तो यानी कि आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
1: बिल्कुल मिलेगा।
0: ओके,
1: और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने और सरकारी हेल्थ केयर की स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का उपयोग करें।
0: तो श्रोताओं देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी भावना जी ने बताई कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं अगर वहां पर इसका विकल्प रखा गया है तो, और सरकारी हेल्थ केयर स्कीम जितनी भी चल रही हैं उसका लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको आभा हेल्थ कार्ड बना लेना चाहिए। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं भावना?
1: लाभ तो अभी आपने बताया आशीष, कुछ लाभ तो आपने बताया कि आभा सुविधाजनक एक्सेस हो सकता है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी आसान पहुंच हो सकती है।

0: आयुष हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा हो सकती है और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का आसानी से रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। आशीष,
1: सही कहा भावना आपने। तो कुल मिलाकर आभा कार्ड चुनकर आप कुशल, पेपरलेस और कनेक्टेड हेल्थ केयर सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे मेडिकल विजिट अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाती है। और जैसा कि लाभ के बारे में चर्चा चल रही है, तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी करने का सुविधाजनक एक्सेस है आभा, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान एक्सेस है आभा। यहाँ तक कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, जिसको HPR बोलते हैं, उस तक भी आसान एक्सेस है आभा, और आयुष हेल्थ केयर सेवाएं सुलभ हो जाती हैं आभा हेल्थ ID से। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा मिलती है आपको, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं आप लोग। एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है आभा, 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम के भीतर एक ही पहचान आपकी स्थापित करता है।
0: आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपके मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की सुविधा प्रदान करता है।
1: इसके अलावा एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की भी सुविधा है, यानी कि आभा हेल्थ आईडी सिस्टम आपके अकाउंट को आवश्यकता के अनुसार एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की सुविधा देता है, और ये नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि आप अपनी पसंद और अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी को मैनेज कर सकते हैं।
0: और इसके साथ ही आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको लाभार्थियों को जोड़ने, आश्रितों या परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। यह सुविधा आपके प्रियजनों की स्वास्थ्य जानकारी की एकीकृत देखभाल को सपोर्ट करती है और उनकी निगरानी को आसान बनाती है।
1: अरे वाह, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री का एक्सेस भी है आभा। दरअसल कार्ड के साथ आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस हेल्थ सुविधा रजिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल जाता है। देखिए, बहुत सारे लाभ हैं। वैकल्पिक दवा का एक्सेस मिल जाता है, जैसे आयुष सेवाओं के साथ में आभा हेल्थ आईडी कार्ड का इंटीग्रेशन अगर हो तो वैकल्पिक दवाओं के विकल्पों तक भी आपकी पहुंच हो जाती है। इतना ही नहीं, सहमति आधारित डेटा शेयर कर, यानी कि अगर आप चाहें तो उस आईडी के जरिए आप अपना डेटा जिसको चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति देता है आभा। भावना, क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगी?
0: हाँ आशीष, हम बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जा सके, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रावधान देखभाल की निरंतरता को सपोर्ट करता है और आपके स्वास्थ्य हितों की भी सुरक्षा करता है।
1: क्या बात है, यानी कि आभा सभी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें जो बीमा क्लेम वाली दिक्कत आती है लोगों के सामने, अगर आप आभा के साथ जुड़े हैं तो बीमा क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो तेज हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तक कि एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि आभा कार्ड क्या बच्चों के भी बनाए जा सकते हैं?
0: हाँ आशीष, चाइल्ड आभा कार्ड के नाम से बच्चों के भी आभा हेल्थ आईडी सिस्टम बच्चों तक पहुंचता है, जिससे चाइल्ड आभा कार्ड बन सकते हैं। यह शुरुआती एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड को कम उम्र से व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट किया जा सके, जिससे लगातार और सूचित बाल रोग देखभाल में मदद मिलती है। आशीष, अब आशीष एक प्रश्न आ जाता है मेरे मन में, यही से।
1: क्या पूछिए?
0: वो ये कि आभा हेल्थ कार्ड अकाउंट किसे बनाना चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत अहम प्रश्न है भावना, आपने जो पूछा है। दरअसल एक्सेसिबल हेल्थ केयर जितने भी लोग चाहते हैं, सभी लोगों के लिए आभा कार्ड बनाना बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। जैसे क्रॉनिकल जो डिजीज हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोग, या जिन्हें बार बार मेडिकल आवश्यकताएं पड़ती हैं, ऐसे लोग, या फिर वो लोग जो अपने हेल्थ केयर अनुभव को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वो आज इलाज करा रहे हैं, फिर वो सही हैं, कई महीनों कई सालों तक वो सही हैं, फिर कुछ बीमारी आई, फिर उन्होंने उस चीज में सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए, फिर वो सही हो गए कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में, फिर कोई बीमारी आई, फिर उन्होंने अपना इलाज कराया और रिकॉर्ड दर्ज हो गया, तो यानी कि उनके पास कई साल का डेटा भी होगा। तो ऐसे लोग भी अपना आभा कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इसके विस्तार रूप से समझने की है, तो देखिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक नामांकन लाभ को आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आभा कार्ड बनाकर आप हेल्थ केयर सेवाओं का सही समय पर एक्सेस पा सकते हैं, ताकि समस्याओं को आगे बढ़ाने से पहले ही उनकी आवश्यक देखभाल आपको मिल जाए। और ये सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य प्रबंधन को भी बढ़ाता है और दीर्घकालिक परिणामों में सुधार भी करता है। और भावना, इसके अलावा आभा कार्ड जो है ना, वो हेल्थ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर, जैसे यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श कर सकता है या ले सकता है, और अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है, और ये बड़ा आसान हो जाता है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना, और जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना या फिर अपॉइंटमेंट मैनेज करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ तक कि भविष्य के हेल्थ केयर लाभों के लिए भी आप तैयार हो जाएं अगर आपके पास आभा कार्ड है, क्योंकि कार्ड होने से व्यक्ति भविष्य में हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये एक उभरता हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं आपको। आभा कार्ड बहुत सारे हेल्थ केयर सुविधाओं में मरीज के डेटा को लिंक करके एक तरीके से बड़े ही आकर्षक हॉस्पिटल अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि एकीकरण हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर जानकारी प्राप्त करने वाले निर्णय और बेहतर रोगी देखभाल की सुविधा मिलती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। अब लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे और आ जाता है।
1: जी पूछे
0: पूछे कि ये आभा कार्ड का उपयोग कैसे करें?
1: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है भावना। दरअसल आभा हेल्थ कार्ड, जैसा मैंने पहले बताया कि कई तरीके के लाभ देता है, जो मेडिकल सेवाओं को चुनने से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हिस्ट्री जो मैंने बताया, HPR, इसका एक्सेस करें। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर HFR का उपयोग करें। वैकल्पिक दवा विकल्प आप देख सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब आपने जो एक सवाल पूछा कि इसका उपयोग कैसे करें, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आभा कार्ड पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR को आप ऑनलाइन मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी आईडी बनती कैसे है,
0: और ये भी आप चरणबद्ध तरीके से
1: बताइएगा। बिल्कुल, तो आप पहले तो ये समझ लें कि आभा आईडी पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस बनाने के लिए कुछ चरण हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप आभा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS पे हमको आभा ऐप जो है वो प्रोवाइडेड है। सरकारी आईडी का प्रयोग करके रजिस्टर करें और पोर्टल की तरफ से पूछे गए जितने भी विवरण हैं वो उसमें सब भर दें आप, ठीक है। अपने आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक। अपने मोबाइल नंबर पर शेयर किए गए OTP के साथ नंबर को सत्यापित कर दें, ठीक है। OTP सत्यापित जैसे ही होगा, ये प्लेटफॉर्म आपका PHR एड्रेस जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका PHR एड्रेस जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल एक ये आ जाता है कि आभा कार्ड के लिए आखिर अप्लाई कैसे करें, है ना। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक पोर्टल पर आए हैं,
0: अभी उसका ऐप डाउनलोड करके चीजें हमने
1: जी
0: उसको अपने मोबाइल पे ले लिया है, लेकिन अब उसको क्या करें कि ऑनलाइन आभा कार्ड अप्लाई कैसे करें।
1: बिल्कुल, तो ये भी समझने वाली जरूरत, ये भी समझने वाली बात है। तो आभा एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे कैसे करें, या इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है भावना?
0: आशीष, एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा।
1: पूछिए।
0: कि आभा जो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपना पर्सनल हेल्थ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा।
1: हाँ, जो मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका, वो आपको जैसा मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे,
0: PHR एक एड्रेस है पहले, वो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम आभा आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तभी तो उसमें आपसे ओटीपी मांगी जा रही है। जब आप ओटीपी डालकर अपना फोन नंबर सत्यापित करते हैं तो आपका पीएचआर जो है, पीएचआर एड्रेस, वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब जो आपने पूछा है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें इस कार्ड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड रेडी रखें या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखें। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आप आभा हेल्थ कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला ये कि आधार कार्ड का उपयोग करके, है ना, और दूसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके। तो अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं आभा नंबर पाने के लिए, ठीक है, तो एक लिंक है आभा ऐप का, जो मैं पढ़ भी देता हूं। और अगर हमारे श्रोता भाई बहन जो हैं, अगर वो जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति मौजूद होते हैं वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। यदि आप खुद इंटरनेट के जानकार हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप पर या अपने फोन पर ब्राउजर में जाके अगर वो लिंक डालेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लिंक मैं जबानी तौर पे भी बता देता हूँ।
0: जबानी तौर पे आशीष बहुत ही आराम से पढ़ेगा।
1: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा
0: करके आप
1: जी, ताकि लोग उसको सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। लिंक कुछ ऐसा है। तो भावना, मैं जबानी तौर पर भी एक बार अपने श्रोताओं को ये बता देता हूँ कि वो लिंक क्या है, ताकि अगर वो लोग कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है।
0: बहुत आराम से आशीष बताइएगा।
1: तो लिंक, अगर आप आधार कार्ड के जरिए अपना आभा नंबर पाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो है http:// दो बार लगाना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करना है ABHA आभा, डॉट लगाना है abdm.gov.in, ये हमारी आईडी है। फिर स्लैश लगाइए, ABHA लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए, V3 लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए और रजिस्टर लिखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दूसरा चरण जो आएगा वो ये कि आप आधार का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, ये ऑप्शन जहां पे है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना है। उसमें घोषणा बॉक्स होगा जिसको आप चुने, और अगला उसमें लिखा होगा, अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट या अगला लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ओटीपी वहीं पर डालना है जहां पर उसको लिखना है, सामने आपके स्क्रीन पर वो ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए, कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें। ऐसा करने के बाद आपका संचार का जो विवरण है वो दर्ज करें, और जब ये सारी चीजें आप दर्ज कर देंगे तो आपका आभा पता बनाया जाएगा।
0: ये तो बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है आशीष।
1: हाँ, सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार वो करेगा उसके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलीकरण।
0: जो लोग इंटरनेट आजकल तो सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और रजिस्टर खुद ही मोबाइल पे करते हैं बहुत सारी चीजें, तो हमें उम्मीद है कि श्रोता ये लोग खुद ही कर लेंगे।
1: हाँ, या जनसेवा केंद्र है,
0: जनसेवा केंद्र पे कर सकते हैं,
1: ठीक है। और ये दूसरा जो विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो भी मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए आपका जो लिंक है वो है http://लगाइए abha.abdm.gov.in, जो हमारी आईडी है सरकार की, फिर /abha/v3/register, ये लिखने के बाद क्लिक करें तो आपके सामने एक पन्ना खुलेगा जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए पर क्लिक करें। वहां पे एक ऑप्शन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, इस पर क्लिक करिए। वहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और घोषणा चुने, आगे बढ़े, यानी कि आगे बढ़े वाली जो घोषणा है उसको क्लिक कर दें और आगे बढ़े। जैसे ही आप ये करेंगे अपने रजिस्टर मोबाइल पर आप देखेंगे कि एक ओटीपी आया होगा जिसको दर्ज करें सामने, और फिर वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला और राज्य जैसे विवरण आएंगे जिसको आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है उसकी फोटो उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे आपका आभा नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लें। आपका आभा नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आभा कार्ड के साथ हेल्थ केयर का जो भविष्य है वो वाकई में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो सुव्यवस्थित हो जाती है और टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन भी होता है। जैसे आभा कार्ड वर्चुअल कंसल्टेशन को भी सपोर्ट करता है जिससे रोगियों को दूर से हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलती है भावना, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्र के लोग जो हैं उन्हें लाभ हो सकता है।
0: यानी कि फोन से भी आप अपने दवाओं की जानकारी पा सकते हैं।
1: हाँ, मतलब उसमें अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप ये भी जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अनिवार्य सूचना क्या है, आभा के साथ CGHS लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। CGHS जानती है क्या होता है? केंद्र सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इसको लिंक करना जरूरी है और इसके भी कई सारे फायदे हैं।
0: वो क्या है आशीष?
1: वो ये है कि सुव्यवस्थित सेवाएं हो जाती हैं आपकी, जो केंद्र की सेवाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है, बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये अनिवार्य लिंक जो है वो सरकारी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है, जिससे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
0: आशीष, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है मन में और वो ये है कि ये आभा एड्रेस क्या है?
1: हाँ बिल्कुल, सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर ना मिले तब तक चर्चा का भी क्या फायदा भावना। तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा, आभा जैसा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आभा एड्रेस जो है एक विशेष पहचानकर्ता के रूप में काम करता है।
0: अच्छा।
1: यानी कि आपका जो आभा नंबर है वो एक विशेष पहचान है,
0: आधार कार्ड नंबर की तरह।
1: बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर की तरह, ठीक है। तो आभा एड्रेस एक विशेष पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है जो अनिवार्य रूप से स्वघोषित यूजर नेम है आपका, ठीक है, जो आप अपना बनाते हैं, और ये आपको अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में शेयर करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है।
0: आशीष, आपने सारी बातें तो बताई, लेकिन हमने बहुत पहले ही प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, बार बार ये आभा अकाउंट ये आ रहा है, ये अकाउंट, ये खाते का क्या मतलब है? क्या इसमें पैसे भी जमा करने पड़ेंगे या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे लिंक करने का ये क्या अर्थ है, जरा समझाइए थोड़ा।
1: नहीं बिल्कुल भावना, ये आपके दिमाग में आई हुई एक बात है और कहीं ना कहीं हो सकता है कई श्रोताओं के मन में भी ये बात आए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आभा कार्ड प्राप्त करने की जो लागत आपको लग रहा है ना कुछ होगी, ये बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आभा कार्ड मुफ्त है। आपको अगर अपनी आभा आईडी बनानी है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने आईडी बनाई है तो। लेकिन अगर आपको आभा के तहत कवर ना की गई किसी भी अतिरिक्त हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो आपको उनके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।
0: अच्छा आशीष, अब ये बताइए कि कार्ड रजिस्टर करने में कितना लागत लगता है?
1: देखिए, मैंने बताया पहले भावना कि ये सब कुछ मुफ्त है, आप मुफ्त में आभा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी आभा आईडी बना सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
0: मतलब अगर हम इंटरनेट यूज करते हो तो खुद ही जाकर, या हमारे घर में अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो खुद भी डाउनलोड, ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ चूंकि बात आभा की हो रही है तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आयुष्मान कार्ड के तौर पर हमारे देश में चलाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं एक लाइन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो देश भर में पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उस पर हर वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस हेल्थ केयर का लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: आशीष, ये आयुष्मान कार्ड और ये आभा कार्ड, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या दोनों बनवाने हैं कि एक ही से हमको सुविधा मिल जाएगी? ये जरा हमको थोड़ा सा समझाइए।
1: ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ।

0: दरअसल आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बीच अंतर जो है वो ये है कि आभा कार्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जबकि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हेल्थ केयर लाभ प्रदान करता है। अब एक बात और जो मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि आभा कार्ड के उपयोग में मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने, हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाने और सुव्यवस्थित उपचारों के लिए बीमा विवरण लिंक करने के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी शामिल की गई हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करता है या नहीं।
1: जी बिल्कुल,
0: ये भी आपके मन में आ रहा होगा।
1: बिल्कुल मन में आ रहा था, हम अगला प्रश्न ही आपसे करने वाले थे, पूछने वाले थे।
0: हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नहीं, इसका जवाब है नहीं। फ्री में कोई ट्रीटमेंट आभा कार्ड ऑफर नहीं करता, क्योंकि आभा आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने की एक व्यवस्था है।
1: तो ये जो अकाउंट शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो अकाउंट सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए है स्टोर
0: ये करने अकाउंट
1: के
0: वैसा
1: लिए?
0: ही है जैसे आप अपने इंटरनेट पर कहते हैं ना कि हमारा जीमेल अकाउंट है, हमारा याहू अकाउंट है ना, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, या हमारा ट्विटर या एक्स का अकाउंट है। तो जैसे वो खाता है, वैसे ही एक एप्लीकेशन जिसमें बना हुआ एक ऐसा खाता जो आपकी जानकारियां स्टोर करता है,
1: जो हमारे पर्चे, जो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी सारी विवरण इसमें स्टोर करके रख देगा।
0: तो इसीलिए कहते हैं कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, बल्कि ये हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जैसे मेडिकल खर्चों को कवर नहीं करती है, ठीक है
1: जी आशीष।
0: दो तीन सवाल और जो अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उसका भी एक बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर भी है नहीं। दरअसल आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करता, इसे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने, जैसे मैंने पहले बताया, और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बेहतर एक्सेस के लिए आप इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के साथ लिंक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और एक सवाल आता है भावना, पता है आपको
1: आशीष,
0: अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आभा कार्ड कैशलेस है। तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है कि आभा कार्ड खुद में तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बीमा विवरण स्टोर करने में मदद जरूर करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्लान से लिंक होने पर कैशलेस क्लेम के लिए जरूर किया जा सकता है, ठीक है।
1: कैशलेस क्लेम,
0: जी कैशलेस क्लेम के लिए आप
1: लिंक
0: उसका
1: करेंगे अपना बीमा को, तब वो
0: तो जैसे आपने मान लीजिए कैशलेस इलाज कराया, तो उसका क्लेम करने के लिए जरूर ये आपके काम आएगा, ठीक है। एक सवाल और भी आता है, आभा कार्ड के लाभों की लिमिट क्या है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आभा कार्ड के लाभों की फाइनेंशियल लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के रूप में चूंकि ये कार्य करता है, इसलिए जो मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित एक्सेस आपको देता है, लेकिन इलाज की लागत को कहीं से कवर नहीं करता। तो ये हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम आभा आईडी बना लेंगे तो हमारा सब कुछ मुफ्त में हो गया।
1: बिल्कुल,
0: या
1: बिल्कुल, आमतौर पे ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है, आभा कार्ड हो सकता है कुछ लाभ मिले। तो श्रोताओं से कहना चाहिए,
0: लाभ तो बहुत बड़ा है इसका,
1: लाभ सिर्फ रिकॉर्ड को रखने तक ही, ये बहुत जरूरी है। ये
0: तो ये लाभ
1: पुराने से पुरानी बीमारी जितनी भी होगी वो सारे रिकॉर्ड
0: से मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो गया
1: जी,
0: ठीक है, आपने उसका आभा कार्ड बनाया है, आपने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी हुई है, अब वो ठीक हो गया। मान लीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बाद में अचानक से उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसके 20 साल पहले वाली बीमारी से जुड़ती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ये कितना बड़ा टूल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसी जानकारी आप कहीं और इकट्ठा करके रख नहीं सकते। तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सरकार की तरफ से सर्वर दे दिया गया है, जहां आप अपना खाता खोलें, अपनी जानकारी सारी उसमें रख दें। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आभा क्या एक निजी है या सरकारी पहल है। तो ये पूरी तरीके से सरकारी पहल है, ये हम सभी जानते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि ABDM है, इसके तहत 2021 में इसको शुरू किया गया था।
1: 2021 तक ये सुविधाएं सभी को मिल दी जा रही हैं
0: और काफी उपयोगी है, ये तो हम देख ही रहे हैं इसके जो फीचर्स हैं।
1: जैसे कि अभी चर्चा के दौरान बात निकल के सामने आई, ये बहुत ही इजी और बहुत ही लाभप्रद है आशीष।
0: बिल्कुल। अच्छा ये भी बात है कि आभा कार्ड बनाने के बाद क्या करें, तो आभा कार्ड बनाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना चाहिए, ठीक है। बीमा विवरण अगर आपके पास कोई है तो उसको अपडेट कर लीजिए। बेहतर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को अगर समन्वित करना है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ में अपनी आईडी भी आप शेयर कर दें, ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भावना, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो हमने आभा को लेकर विस्तार से आपस में चर्चा की है या जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई है, वो उनके बहुत काम आने वाली, क्या कहती हैं आप?
1: आशीष, बहुत काम आने वाली है, और हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने।
0: बिल्कुल, और देखिए रेडियो चैनल पर भी बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वहां के महिला, वहां के पुरुष, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे विजिट करने भी आए थे। जब हमने उनसे सवाल किया तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड क्या होता है या आभा आईडी क्या होती है या इसके क्या काम है, इसका कैसे हमें प्रयोग करें, कैसे पाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी श्रोताओं की एक श्रृंखला है, अब उन सबको ये बात पता चल जाएगी कि आभा है क्या, और ये कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आने वाली है।
1: बहुत काम आने वाली है आशीष, क्योंकि जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु ही रहा है आभा, और इसके बारे में जो भी आपने बातें बताई है, जो जानकारी बातें बताई है
0: जी,
1: वो बहुत ही लाभ होने वाली है हमारे श्रोताओं के लिए।
0: बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपको आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान कार्ड या फिर जितनी भी और हेल्थ की योजनाएं चल रही हैं या बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से अपने विशेषज्ञों के जरिए या अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहेंगे।
1: तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz,
0: और मुझे यानी अपने साथी आशीष और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ, किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं, एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: जी जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है, और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे एडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ
1: क्योंकि एकदम हाँ से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे वो फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
0: हाँ,
1: कोई भी फसल हो।
0: हाँ जी, हाँ
1: गन्ने
0: जी
1: की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडीसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
0: जी जी,
1: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सकें, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
0: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, हैं, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इत्यादि का संतुलित उपयोग करें। मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए गर्मी चल रही है इसमें टॉप बोरर पायरिल्ला दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें। रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनको अमूनता लोग क्या करते हैं जला देते हैं, जलाने को उसको आसान समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फसल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है अगर संभवतः जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में उसको करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यही अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
1: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है सत्र प्रारंभ होता है तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
1: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें, जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारे जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें और व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें। संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का

0: अगर आपको नहीं रखना है तो आप तो कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें, जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं, मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ मेरे पास सवाल भी है हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है, किसान भाई ने, कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए?
0: जी जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अमुनता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण जल मांग बढ़ती है, जैसे ही हम जल मांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूनता इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए?
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसका जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके जी, इनको जी। हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें?
0: देखिए अगर सर्वेक्षण जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने की सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें, स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी, तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई ये क्या था सर, उर्वरक ओके, हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी, और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
0: देखिए ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है, इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: Correct.
0: तो दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा, तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का, अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए, कोई कीट, कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, और श्रोताओं हमें आशा है कि आपको ये जानकारियां बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी, तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, और मैं हूं आपका साथी आनंद, और अब आपसे लेता हूं अलविदा, अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय, अगले कार्यक्रम में फिर

0: से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
2: बहुत बढ़िया।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं आरजी आनंद।
1: हेलो प्राची, हाउ आर यू?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप बताइए, आप?
1: मैं अच्छा हूँ। आज तुम मुझे कौन से प्रोग्राम में लेकर आ गई हो? ये
0: आज मैं आपको लेकर आई हूँ महिला मंच, हमारा जो प्रोग्राम है और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें।
1: अरे वाह, महिला मंच में पुरुष मंच भी खोल दिया आज आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगा कि मेल फीमेल सब बराबर है और सबको सबके प्लेटफॉर्म पे जाने का राइट है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन, और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर और दफ्तरों की दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।
0: आज की महिला डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और अधिकारी भी है। और हमारी बहुत सारी वुमेन ऐसी है जो बिजनेस वुमेन बन के उभर रही है, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे उनकी संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी है।
1: बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को और उनके हौसले को सलाम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्यों प्राची?
0: हाँ बिल्कुल।

0: जी मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी कैसी हैं आप? और प्राची जी आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर, और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हों, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती हैं।
0: बिल्कुल
1: है
0: मुझे भी नहीं लगता है ये तो बिल्कुल आसान है, स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि आजकल तो मम्मियां भी वर्किंग हो गई है ना, बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट इजी प्राची। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार ये हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है, हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आरजी आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए एक तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: आई एग्री।
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही है।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची, और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर काम काज करने के लिए नहीं जाती हैं या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिए हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ काम काज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं नया कॉन्ट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची आज हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज उस पर बात करेंगे, और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हूँ, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही है कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी मुझे याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रखती हूँ, मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रखती हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और ये है आपकी शर्का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहो। चलो जी अभी मिलते हैं एक छोटी सी गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच। यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: देखिए कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना? अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं, तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं। बट वही है सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हाँ सपोर्ट बहुत जरूरी है, अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगी।
0: करेक्ट। कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का संतुलन। वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंज है।
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती है, यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है।
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपनी बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस की भी अपना बेस्ट देना चाहती हैं और घर की परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं। तो ये जो बात है इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसी वुमेन, जो भी हमारी ऐसी वुमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को।
0: करेक्ट, राइट राइट राइट। कहते हैं दोस्तों थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है मेरे भाई। और बिल्कुल हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही। हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है, ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका और आप सुन रहे हैं महको बंच। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को सेल्स कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं। घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही हैं, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है तब से वो अपने काम को, जो भी उनके तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती हैं, कोई अच्छी सिलाई करती हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत हाँ, बढ़िया है ना। और कुछ वीमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो रेसिपी बनाना सिखा रही है। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती है, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती है। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब, बहुत ईजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: Important. मुझे भी लगता है दोस्तों, और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन कामकाजी विमेंस की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी विमेंस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। वो बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था आज उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं और बड़ी क्या बोलते हैं एक तरह से बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर रही हैं वुमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन में घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। वेल, आजकल की मम्मियां वेल बहुत एक्टिव हो, इतनी अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती है, और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती है तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल, जो उनका जो फील था हम बस घर तक समझते थे, मतलब ऐसा एक हमारा लोगों का कहीं ना कहीं परसेप्शन था कि उनका जो फील्ड है वो बस घर की चार दीवारी तक है। पर आज इस जो मोबाइल ने हमारी मम्मी, जो हमें हमारी आसपास आंटीज हैं, उनको एक तरह से पूरी तरह से वो एम्पावर्ड कर दिया है। जो भी उनके अंदर स्किल है, भले ही वो बहुत छोटा स्किल हो कि कोई बड़ा स्किल हो, फिलहाल स्किल तो स्किल होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है।
0: मुझे लगता है प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्राची।
1: और अपने उस स्किल के दम पर भले उनको मेहंदी आती हो, अपना बिजनेस उन्होंने इस तरह से एस्टेब्लिश किया है, जो नेटवर्क अपने लिए
0: क्रिएट किया है
1: और इससे जो वो अर्न कर रहे हैं, एक तरह से एम्पावर्ड बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छे दौर में हम आ गए।
0: करेक्ट। तो दोस्तों, बस आज का यही संदेश है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चुनौतियां आना कंपलसरी है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां तो आती ही हैं। जिस लाइफ में चैलेंज रहा वो लाइफ ही किस काम की, क्यों प्राची? तो बस आपको चैलेंजेस का सामना करना है, और कोई लीडी अगर चुनौतियों का सामना कर रही है तो हमें उनका सामना करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनके साथ उनके काम को सराहना है और उनके आत्मविश्वास के साथ उन्हें और ज्यादा पुश करना है कि वो और मोटिवेट हों।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा FM मुरादाबाद 89.6 ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है और सब उन्हें और इन्हें प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके अपनी बात कहें, अपने स्किल, अपने टैलेंट से पूरे शहर को, पूरी दुनिया को रूबरू कराएं।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ फिलहाल तो मैं लूंगा आपसे इजाजत। बस यही कहना मैं चाहता हूँ जाते जाते, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती है, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आगे बढ़ाती है। राइट प्राची?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम करते हैं सलाम ऐसी महिलाओं को।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और बस मैं तो जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना आंटी, अगर आपके अंदर कोई बढ़िया टैलेंट है दीदी, तो उसको बाहर निकालो भाभी जी, सिर्फ किचन तक मत रखो। अगर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो। हो सकता है वो छोले भटूरे का रेसिपी किसी और के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
0: आज कल लड़कियां ना ऐसा हो गया है कि मतलब यू नो खाने बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि स्टडी करना है, उनको फ्यूचर ड्रीम पूरे करने, तो यूट्यूब भी उनके लिए हेल्पफुल होता है।
1: हाँ,
0: है ना। तो ऐसे में जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी हैं, जो बहुत
1: एब्सोल्युटली,
0: तो उनकी रेसिपी देख के आज की जेंजी को, आज की लड़कियों को एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगा यार। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, प्लीज आइए एंड लाइफ में ऐसे ही रॉक मचाती रहिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। चलिए हम लेते हैं आपसे इस प्रोग्राम से इजाजत और फिर मिलेंगे जल्दी इस नए कार्यक्रम में और कुछ नई बातों के साथ। और ये तो महिला छह महिलाओं का कार्यक्रम, अगर आप आना चाहती हैं, आप कोई अपनी प्यारी बात करना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये मंच खुला है, क्यों प्राची?
1: आप हमसे जुड़ सकती हैं, हमारे फरमाइशी नंबर 9837 8968 96। एक बार और बता देती हूँ, 9837 8968 96।
0: बिल्कुल, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टैलेंट और अपना नाम, हो सकता है अगली मॉर्निंग आप हमारे साथ स्टेशन पे हो। फिलहाल हम दोनों जाते हैं छोड़ के कुछ खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनते रहिए महिला मंच, जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू
1: FM मुरादाबाद 89.6।
0: बाय
1: बाय बाय।

0: सज रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा।

0: हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून आदाब सर, ठीक हाल? और देखिए मेरा दिल भी मेरी नहीं सुनता है, लाइक ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। और दोस्तों आज का मौसम बाहर का कैसा है बताइएगा मुझे। मैं जब बाहर गई थी तो उस टाइम पे बादल थे लेकिन उमस भी है। और ये है आपके अपने शहर कैफे मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप सुनते हैं अपनी पसंद की गाने। और दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आप भी मुझे कॉल लगाइए बिना किसी देरी के। नंबर है 9837896896। आपका दिल भी थोड़ा सा जिद्दी है ना, सुनता नहीं है। मतलब आपने मंडे कॉल किए फिर भी आज कॉल करने का दिल कर रहा है, तो अपने दिल को थोड़ा सा मनाइए, उसको थोड़ा सा समझाइए कि नहीं नेक्स्ट वीक कॉल करना। क्योंकि दोस्तों ये रूल्स हमने इसलिए रखा है ताकि नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए और वो भी इजिली कॉल लगा पाए। क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं की ना शिकायतें होती हैं कि मैम आपका कॉल हम लगाते हैं लेकिन लग ही नहीं पाता, बहुत बिजी आता है। तो इसीलिए हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमें कॉल लगाते हैं उनका कॉल इजीली लग जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा गैप ले लीजिए एंड न्यू लिसनर्स को भी मौका दीजिए। और अभी हम बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद हनीफ, पांची कला, जिला अमरोहा से।
0: अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे हैं आप?
1: मैम हम तो बहुत ठीक हैं, आप बताइए कैसे?
0: जी हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा सर आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैम गर्मी है मगर बादल तो हो रहे हैं, मगर उमस आ रही है।
0: हाँ जी उमस है, एग्जैक्टली राइट। बताइएगा आप क्या सुनेंगे सर?
1: दिल वाले का गाना सुनना था मैम
0: जी,
1: सातों जन्म में।
0: अच्छा सातों जन्म में, ये गाना किनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
1: मैम अपनी वाइफ के लिए।
0: अच्छा क्या नाम है मैम का?
1: नूर जहां।
0: अरे वाह, नाम तो बड़ा ही खूबसूरत है। ओके तो मैम भी सुन रही है इस वक्त?
1: जी मैम वो मोबाइल पर सुनती है, मैं रेडियो पर सुनता हूँ।
0: अच्छा आप रेडियो पर सुनती हैं, वो मोबाइल पर सुनती हैं। चलिए सुनवा,
1: मुरादाबाद FM ऐप डाउनलोड किया, उससे सुनते हैं मैम, बहुत अच्छा लगता है मोबाइल पर भी सुनता हुए।
0: जी शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत दिल से थैंक यू
1: मैम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मैम, FM मुरादाबाद का जो ऐप है मैम उसमें अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता।
0: हाँ जी,
1: तो आपका प्रोग्राम बार बार सुनते।
0: अच्छा अरे सर आप तो रेगुलर सुन सकते हो हमें।
1: मैम अपनी दुकान पर तो रेगुलर ही सुनते हैं।
0: जी जी अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आप अपनी शॉप पर रेगुलर सुनते हैं। अच्छा जो आपके शॉप पर कस्टमर आते हैं या आपके दोस्त आते हैं उनको भी आप सुनवाते हैं रेडियो?
1: मैम वो भी सुनते हैं और हम FM मुरादाबाद का जो ऐप है ना मैम उसके बारे में भी जानकारी देते हैं।
0: अरे वाह,
1: रेडियो नहीं है, अगर रेडियो नहीं है आपके पास तो मोबाइल से ऐप डाउनलोड करो और FM सुनो।
0: अरे थैंक यू, इतना प्यार करते हैं आप रेडियो से और सबको भी सुनवाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर।
1: जी मैम बहुत पुराना नाता है हमारे रेडियो पर।
0: हाँ और ये नाता हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग करके रखिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: मैम काफी प्रयासों के बाद तो नंबर लगता है आपका।
0: हाँ और आज नंबर लगाए कैसा लग रहा है आपको बताइए?
1: मैम बहुत खुशी हो रही है।
0: खुशी हो रही है ना, खुशी से बात करके खुशी हो रही है या नहीं ये बताइए।
1: जी मैम दुगनी खुशी मिल जाती है।
0: चलिए ऐसे ही हमेशा खुश रहिए सर, सुनवाती हूँ मेरे प्यारा सा गाना आपकी मिसेज के लिए, आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और आप भी मुझे फटाफट से कॉल करो कोई

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। यहां पर वक्त हुए हैं अभी 3:24 राइट नाउ। और दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत सारे श्रोता ऑन द वे कार में हैं इस समय जो हमें सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी जो ऑन द वे अभी कार में ड्राइविंग करें, केयरफुली ड्राइव कीजिए एंड चेहरे पर ना मुस्कुराहट जरूर रखिए, क्योंकि इतना प्यारा सा खिलखिलाता हुआ आपका चेहरा है, इस पर उदासी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, तो मुस्कुराइए आप। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, जय श्री कृष्णा, तुम्हें केम छो?
1: मजा माओ दीदी
0: जी, बताइएगा अपना नाम।
1: मैं गांव जाली अस्तगिरी तालुको पालिताना जिलो भावनगर गुजरात से माधुभाई चौहान बात कर रहा हूँ दीदी
0: जी। बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है गुजरात का?
1: गुजरात का मौसम तो अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं है दीदी।
0: अच्छा, बारिश नहीं, बादल है?
1: बादल है, बारिश नहीं है।
0: ओके, कोई बात नहीं, अगर बादल आए हैं तो बारिश भी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: जी
0: हाँ, तो बारिश भी आ जाएगी। और बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: आज मुझे गाना सुनना है लोफर फिल्म का। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है
0: आज मौसम। बहुत ही प्यारा गाना है, सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया सर, धन्यवाद आपका।
1: दीदी
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये सर की पसंद का प्यारा सा गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। वैसे सच में मौसम बेईमान है क्या? बताइए मुझे एवरीवन कॉल करके कि मुरादाबाद का अभी राइट नाउ वेदर कैसा है बाहर का, क्योंकि स्टूडियो में तो मालूम नहीं होता है। अगर बाहर का वेदर चेक करना होगा तो जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती आपको छोड़कर जाऊं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना फ्रॉम द मूवी सावरिया से, शान की बड़ी खूबसूरत सी आवाज और मोंटी शर्मा के म्यूजिक कंपोजर थे एंड लिरिक्स थे समीर अंजान जी के और अमेजिंग गाना। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम मैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान से।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: रेडी मुरादाबाद का नियमित श्रोता भाई रफा साबित कर रहा हूँ मैम।
0: जी सर बताइएगा, आप

0: कैसे हैं? और आपकी फैमिली में सब खैरियत से है ना?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है मैम,
0: और
1: भी सब अच्छे हैं। हमारी वाइफ जो है नगमा नाज मंसूरी जी, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही हैं इस वक्त, और वो भी अच्छी हैं।
0: हाँ, अभी हम उनके बारे में जिक्र करने वाले थे लेकिन आपने हमसे पहले कर दिया।
1: जी मैम, वो रेडियो सुन रहे हैं। मैं बार बात कर रहा हूँ, दल्लानों कमरे में रेडियो सुन रहे हैं।
0: हाँ जी, फिर वो ना साउंड भी आती है रिपीटेड। आपने सही किया, थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया है।
1: जी मैम, इसी वजह से मैं बाहर आ गया थोड़ा।
0: जी बताएगा, आज आपकी शहर का मौसम कैसा है सर?
1: मैम रामपुर में थोड़ी बहुत वर्षा कल लगभग 3-4 बजे का टाइम पे हुई थी दोपहर में।
0: अच्छा, ओके।
1: और आज मौसम थोड़ा गर्म है, धूप है जी मैम।
0: अच्छा, आज धूप है वहाँ पर।
1: जी गर्मी हो रही काफी।
0: ओके, तो इस गर्मी में जो आपको राहत दे बताइए, कौन सा ऐसा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: तो मैम आज रेडियो मुरादाबाद में कॉल लगी है, तो एक फिल्म है
0: जी
1: जमाना दीवाना, उसी फिल्म में गीत है तुझसे पूछूं एक सवाल, मेरे सवाल का दे तू जवाब, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गीत है मैम।
0: ओके, तो ये गाना आपको सुनवाते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं आप सर?
1: हाँ तो मैम एक दो बातें हमारी वाइफ करना चाहती है आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो कर सकती है।
0: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बात करवा दीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम।
2: हेलो
0: हेलो, कैसी हैं नगमा जी आप? वालेकुम सलाम, बताइएगा कैसी हैं आप?
2: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए मैम।
0: जी हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, इस वक्त रेडियो सुन रही थी बैठकर आराम से।
2: जी मैम।
0: जी बताइए कैसा लग रहा है हमारा शो आपको?
2: बहुत मजा आ रहा है मैम, और आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम,
2: आपकी आवाज के तो फैन है हम।
0: अच्छा जी, तभी हम बोले कि इतनी गर्मी क्यों नहीं लग रही है हमें।
2: जी
0: और बताइए नगमा मैम, क्या हो रहा है?
2: बस आपका रेडियो सुन रहे थे।
0: ओके,
2: आप प्रोग्राम सुन रहे थे लेट
0: से। जी जी, आप तो हाउस वाइफ है ना, घर पर ही रहते हो या कुछ और भी वर्क करते हैं आप?
2: हाउस वाइफ है।
0: अच्छा ओके, तो ये गाना हम आपको सुनवाते हैं मैम, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: थैंक
0: यू, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, उसके बाद हम आपसे भी करेंगे बातचीत, और आप हो सकते हैं वो लकी कॉलर जो बहुत देर से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि ओहो मेरा भी कॉल लग जाए। तो लग जाएगा यार, ट्राई तो करो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसी बातचीत होगी हमारी और आपकी। हाँ फटाफट से कॉल लगाओ, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896, और ये गाना एंजॉय कीजिएगा। मैं अभी वापस आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई ZIG करो स्वच्छता की जिद करो

0: हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, वक्त हुआ है अभी 3:48 एंड हमारे लिसनर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे उनकी पसंद का गाना। अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपने फेवरेट या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास बहुत ही प्यारा है। एंड आप जल्दी से कॉल लगाइए मुझे और बताइए कि कौन सा वो गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे हैं, और आप बताइए आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मार्केट में हैं क्या?
1: नहीं तो रोड के बिल्कुल करीब में ही, जो ट्रैफिक चलता रहता है गाड़ी वगैरह उसकी अच्छा। आवाज़
0: आती है। ओके, ऑन रोड है ना आप, इसलिए साउंड आ रही है। कोई बात नहीं सर, बताइएगा अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ।
0: और बताइएगा सर, खैरियत से हैं आपके यहाँ पर सब लोग?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और बहुत ही हमेशा ही आप प्रोग्राम बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करती हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइएगा आप क्या कर रहे थे इस वक्त?
1: इस वक्त तो थोड़े आराम में है, रेस्ट में है, और बस आपका प्रोग्राम सुन रहे थे इस टाइम।
0: अच्छा, रेस्ट करने का वक्त होता है ना अभी लंच वगैरह करने के बाद। जी बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: एक सॉन्ग सुनना है, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, इस तरह से ये सॉन्ग है।
0: जी
1: में ये सुनवा दें आप।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं।
1: और मेरे साथ में सुनना चाहते हैं सैयद शारिक अली है, मेराज अंसारी है, बाबू अंसारी, ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, और बिलारी से शमशाद अंसारी है, जामवाली अगवान पर से मोहम्मद आरिफ खान, और आपके और सभी लिसनर के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है सर, आपके फ्रेंड्स के साथ और तमाम सुनने वाले श्रोताओं के साथ सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया आपने कॉल किया।
1: जी शुक्रिया मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना। हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके साथ ही रहने वाले हैं। आप मुझे कॉल करो फटाफट से, मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: क्या बात है दोस्तों, उदित नारायण जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी गदर से। और मैं तो देखो गड्डी लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे ड्राइविंग करनी आती नहीं है परफेक्ट, तो मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन स्कूटी चला लेती हूँ बट कार वगैरह अभी ठीक से ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। लेकिन जब परफेक्ट तरीके से सीख जाऊंगी तो फिर डर नहीं लगेगा। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, लेकिन जो गड्डी लेके जा रहे हैं ना, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आराम नाल गड्डी चलाओ तुसी, ठीक है जी। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम डिवीजन से रिजवान खान बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आज तो फ्राइडे है राइट?
1: हम तो फ्राइडे को कॉल करते हैं मैम।
0: हाँ जी
1: फ्राइडे को।
0: आपका फ्राइडे कैसा जा रहा है बताइए सर?
1: फ्राइडे तो आज अच्छा ही जा रहा है मैम, मौसम भी कुछ बेहतर है कल से।
0: हाँ गर्मी से थोड़ी सी राहत तो है राइट?
1: हाँ धूप कम है तो गर्मी कम है
0: जी। आप बताए?
1: हाँ
0: उमस तो है सर।
1: हाँ।
0: आप बताइएगा आज आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? ज्यादा काम तो नहीं है आपकी फैमिली में?
1: आज तो कुछ काम ज्यादा नहीं है, बाकी तो और आपसे बहुत ज्यादा काम होता है।
0: हाँ वही इसीलिए मैंने कंफर्म किया। तो बताइए सर आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: ये गोविंदा की मूवी है मैम, उसमें सॉन्ग है नाजुक नाजुक कल की।
0: मूवी का नाम है परदेसी बाबू।
1: जी
0: ओके सर, कुछ कहना चाहते हैं? और
1: बस सब लोगों के साथ में सुन रहे हैं, बेटी है हमारी फायजा नाज।
0: हाँ?
1: और मिसेस खान है नाजिया खान।
0: ओके तो आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना आपको। शुक्रिया आपने कॉल किया सर,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए उस्मान जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं गाना, उसके बाद लौट कर आएंगे। आप भी मुझे कॉल करो बिना किसी देरी के, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98 378 96 896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा है कि आज आपके पास ही प्यारा सा मौका है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपका कॉल नहीं लगा है मंडे टू थर्सडे, तो आज आप लगा सकते हैं। एंड बाकी तो दोस्तों देखिए, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कॉल करते रहते हैं कंटिन्यू, बट कुछ श्रोता ऐसे भी हैं अभी जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है ऐप के माध्यम से, हमें सुन रहे हैं, क्योंकि अब रेडियो जो है वो डिजिटल हो चुका है। एंड एप्लीकेशन के माध्यम से आप वर्ल्ड में कहीं भी सुन सकते हैं, हमें देश के किसी भी कोने में, और हमें फ़ोन भी लगा सकते हैं। नंबर हमारा है 9837896896। जल्दी से कॉल लगाइएगा और अभी सुनते हैं प्यारा सा गाना। अपने नेक्स्ट कॉलर की फरमाइश पर जानेंगे उनको क्या पसंद है आज। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइएगा कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम उमेश कुमार प्रजापति है, मैं लोधी से हूँ।
0: जी बताइए उमेश जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैम जी सुना दियो भोले भोले मेरे यार से मिला दे।
0: अच्छा, कौन है आपके दोस्त, आपसे नाराज हैं? अच्छा, तो ये जब गाना सुनेंगे ना तो वो मान जाएंगे, ठीक है? ठीक है उमेश जी, सुनवाते हैं गाना। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
1: ठीक है मैम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते आपको भी। तो चलिए उमेश जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना सुनते हैं एवरीवन। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ 98-378-96-96। ये गाना सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत पॉपुलर भी है।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और इतने प्यार से जब महादेव जी से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त, क्या पूरी दुनिया मान जाएगी यार। ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी याराना से, जो 1981 में आई थी। अमिताभ बच्चन साथ में नीतू सिंह जी इस ट्रैक में, उनके ऊपर फिल्माया गया था प्यारा सा गाना, और किशोर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक आपने सुना। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनसे भी उनकी पसंद का गाना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आप हमें जब सुन रहे हैं तो अपने साइड से ना रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर लें, ताकि आपके बैकग्राउंड में आवाज़ें रिपीटेड ना हो और आपकी आवाज़ हमें अच्छे से आ पाए। तो प्लीज़ रेडियो से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा सा दूरियाँ बना लीजिए। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम इकराम हुसैन है मैम।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: मैं से बात कर रहा हूँ, हर्बल पार्क से।
0: अच्छा ओके, बताइएगा सर क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं खराब मशीन का काम करता हूँ, पूजा के आइटम बनाता हूँ।
0: ओके बहुत अच्छी बात है सर।

0: तो
1: ये मंदिरों में चिराग जो चिराग चलते हैं बड़े बड़े,
0: हाँ जी बड़े बड़े दिए जो होते हैं
1: जी जी जी चिराग, हाँ ज्योति बनाता हूँ।
0: ओके
1: काम करता हूँ।
0: वेरी गुड। ये तो आप कब से कर रहे हैं सर, कितने इयर्स हो गए हैं आपको इस काम में? कितने साल हो गए हैं सर आपको ये काम करते करते?
1: मुझे मैम
0: लगता है सर अपनी आवाज भी सुनना चाह रहे हैं और हमसे बात भी करना चाह रहे हैं, पर ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। एंड मैंने पहले भी कहा था कि बैकग्राउंड से आपकी बहुत ज़्यादा साउंड ना आए ताकि आपकी आपको बात करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगा सर से बातचीत करके, और इतने टैलेंटेड भी हैं सर। यू नो उन्होंने बताया कि जैसे वो पीतल के दिए बनाते हैं और एक वो दिया होता है ना जो अखंड दिया होता है कंटिन्यू चलता है, वो बड़े बड़े दिए भी सब बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत मेहनत लगती है। सलाम करते हैं हम उन सभी जो इतने यू नो अच्छी स्किल्स हैं उनके अंदर, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी मेहनत लगती है, कोई भी काम होता है तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत बारीकी का काम भी होता है। तो सभी को हम बिग सिट आउट करते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं हमारी तमाम जो ये बनास नगरी को, बनास की नगरी को चमकाया हुआ है। एंड अपने देश में नहीं विदेशों में भी नाम है मुरादाबाद का। और ये गाना सुनवाते हैं अभी, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक दोस्तों आप ही मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896।

0: हे हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, मैं आपको समय बता देती हूँ, 4:24 हो चुके हैं, 4:24 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं राइट नाउ। आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए और अभी आपके पास समय है, जल्दी से मुझे कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर हमारा है 98-378-96-96। ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत सुनने के लिए मुझे कॉल लगाते रहिए। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर, कैसे हैं आप?
1: जी बहना जी, मैं तो बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ और बगीचे में बैठा हुआ रेडियो एफएम मुरादाबाद का भरपूर मजा ले रहा हूँ।
0: हाँ जी, अच्छी बात है, चिड़ियों की आवाज भी हमें आ रही है आपके बैकग्राउंड से। तो बताइए सर, आपके परिवार में सब ठीक है?
1: परिवार में मम्मी, पत्नी, बच्चे सब कुशल मंगलमय है बहन।
0: ओके, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दिल वाले मूवी का गीत सुना दीजिए बहन।
0: कौन सा गाना सुनोगे?
1: एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, कुछ लाइनें भी कहेंगे बहन।
0: जी जी बिल्कुल सुनाइए सर।
1: दिल लगाया, दिल लगी से, दिल लगी के घर गए, दिल लगी मुस्कुराकर बोली, एफएम मुरादाबाद के हम हो गए।
0: अरे वाह, क्या बात है। ये लाइनें पहले से तैयार करके रखी थी आपने या अभी अभी रैंडमली किया है?
1: पहले से तैयारी करके आते हैं।
0: अच्छा अच्छा, कि आज हम एफएम मुरादाबाद में कॉल लगाएंगे और ये लाइनें बोलेंगे, है ना?
1: जी
0: जी, शुक्रिया, थैंक यू, आपने कॉल किया सर, अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। आपको भी प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गाना, कुमार सानू साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। लौट कर आ रही हूँ मैं अभी इस प्यारे से गाने के उस पार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: दोस्तों अभी आपने एक खूबसूरत सा गाना सुना फ्रॉम द मूवी दिलवाले से एंड कुमार सानू और अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा गाना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, जय श्री राम।
0: आपको भी जय श्री राम। कैसी हैं आप मैम?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसे
0: घर पे सब कैसे? हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग। आप बताइएगा, आपकी फैमिली में सब ठीक है मैम?
1: जी, सब अच्छे हैं, बढ़िया है।
0: जी बताइएगा, मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो अभी सही नहीं हो रहा, खास अच्छा नहीं है, गर्मी है।
0: गर्मी है ना
1: जी।
0: बारिश के इंतजार में सभी हैं जी।
1: बारिश भी बहुत कम हो रही है।
0: हाँ, स्पेशली मुरादाबाद में ना बारिश। आप रिक्वेस्ट कीजिए ना प्रभु से, तभी तो बारिश होगी ना।
1: हाँ, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन
0: वो अभी कह रहे हैं कि इंतजार करो।
1: हाँ।
0: और बताइएगा आप नीतू जी, क्या सुनेंगे आज?
1: कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं कम।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: गाना सुनना है दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तो मेरे दिल का रास्ता बन गया मैं तेरे दीदी रानी।
0: ओके, अच्छा गाना है, बहुत प्यारा। क्या बात है, गाना बताते वक्त बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। बहुत पसंद है ये गाना आपको?
1: भाई खुशी जी से बात हो रही है मेरी, तो मुस्कुराना तो बनता है।
0: हाँ ये तो है, खुशी के साथ बात करके खुशी मिल जाती है ना।
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो मैम, ये प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं। थैंक यू, आपने कॉल किया।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम मैम। जय श्री राम। आप भी अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो चलिए विवन, सुनते हैं नीतू जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आएंगे। अभी आपसे भी बातचीत करनी बाकी है, तो जल्दी से कॉल लगाइएगा आप भी।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना। अब हमारी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं और आपस में बहनें मिलकर बातें भी कर रही हैं, बड़ा खुश भी हैं। तो जानते हैं उनकी खुशी का रीज़न क्या है, इतना खुश क्यों हैं आखिर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाय।
0: हाँ जी, हाय, हेलो, क्या नाम है आपका?
1: मैं राबिया बात कर रही हूँ।
0: राबिया, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: जी मैम, मैं गोदी से बात कर रही हूँ।
0: ओके, और आपस में अभी सब सिस्टर मिलकर क्या क्या गुनगुना रही थी, आप क्या बोल रहे थे सब साथ मिलकर?
1: जी मैम, सब बातें कर रहे थे हम लोग।
0: अच्छा, ओके, तो ये बताओ आप कितने सिस्टर हैं?
1: जी मैम, हम 6 सिस्टर हैं।
0: 6 सिस्टर हैं, ओके। तो कभी झगड़ा होता है आप में या फिर नहीं होता है?
1: जी मैम, होता है।
0: अच्छा, बहुत होता है या कम होता है?
1: नहीं मैम, कम होता है जरूर है।
0: अच्छा, किस चीज पर झगड़ा होता है आप लोगों का, काम को लेकर या फिर किस चीज को लेकर?
1: बताओ। कोई भी चीज होती है, खाने पीने की चीज, खाने के बाद हम लड़ाई करते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं मैम।
0: अच्छा भी है ना, सबको मिलकर रहना चाहिए। और जब फंक्शन में जाते हो तो सब एक दूसरे को तैयार करते हो?
1: जी, घर में सिस्टर लाइन लगा लेती है, यार आगे तुम ही तैयार करना हो।
0: अच्छा, आप कौन से नंबर पे हो, मतलब आप कितने से बड़े हो, कितने से छोटे हो?
1: मैं।
0: अच्छा, आप 3rd नंबर पे हो, है ना?
1: जी।
0: ओके, तो आपको भी जब फंक्शन में कहीं जाते हो तो आप भी छोटी बहन को सजाते हो, तैयार करते हो?
1: बड़ियों को भी, छोटियों को भी मैं ही तैयार करती हूँ।
0: ओए होए होए, क्या बात है। फिर तो सब आपके आगे पीछे घूमती होंगी, बाजी मुझे तैयार कर दो ना, बाजी मुझे तैयार कर दो,
1: मेरे बाल बनाओ पहले। हाँ, मेरा मेकअप लगाओ पहले।
0: हाँ, तो आप कैसे मैनेज करते हो उस वक्त?
1: जी मैम, सब में बाद में तैयार होती हूँ, पहले ही नहीं करते हूँ।
0: हाँ, कि चलो पहले मैं आपको फ्री कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना आराम से करूंगी मेकअप, है ना?
1: फिर मैं ऐसी रह जाती हूँ, सटकती वटकती, बस मुझे ऐसे जाना पड़ता है।
0: ओके, फिर क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो जाता है, मेकअप करने में भी समय लगता है।
1: चलो वही बहुत टाइम हो गया।
0: आपकी बारी में सब कहते होंगे, अरे दीदी कितना टाइम लगा रही हूँ, चलो ना जल्दी।
1: हाँ, यही होता है मेरे साथ।
0: तो आपकी बड़ी सिस्टर को बोला कीजिए कि बाजी आप मुझे तैयार कर दो, मैं सबको कर रही हूँ। और बताइएगा क्या कर रहे थे आप लोग?
1: जी मैम, इस टाइम टिक्कियाँ बना रही थी।
0: आलू की टिक्की?
1: जी मैम, सेमी कबाब बना रही थी इस टाइम।
0: ओके, यार वाह, आपको कुकिंग भी आता है, खाना बनाना भी आता है?
1: जी मैम।
0: ओके, और क्या क्या आता है आपको?
1: जी मैम, इस टाइम मैंने बाइट कोरमा बनाया है, और क्या नाम है, सेमी कबाब बनाए हैं और बिरयानी बनाई है।
0: अरे वाह, इतना सारा पकवान बनाया है आपने।
1: जी, आप पीने गर्मा गर्म रोटियां डाली है, आ जाओ जल्दी।
0: अरे अरे, बस मैं शो कंप्लीट करके आ जाती हूँ, ठीक है? थैंक यू।
1: आप देख रहे हैं मैम, जल्दी आ जाइए आप।
0: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी डियर, जरूर आएंगे कभी आपके घर भी, बताएगा। आज क्या सुनोगे आप?
1: आज फिर तुम पे प्यार आया है।
0: ओहो हो, सच्ची में?
1: जी मैम।
0: जी, शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा ऐसे ही सब मिलकर रहो और हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराती रहो।
1: जी,
0: और सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको।
1: मैं नाम लेना चाहूंगी।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बताइएगा।
1: यह लाइवा है, रुकैया फातिमा।
0: ओके, आपके पीछे से किसी ने बोला, अरे नाम तो ले लो।
1: आप ही बोल रही थी, दो ही नाम लेना।
0: हाँ हाँ, थैंक यू डियर, अपना ख्याल रखो अच्छे से। और सुनी गए प्यारा सा गाना, मैं अभी वापस आने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार, आप कहीं मजाइए दोस्तों।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो आपके लिए लेकर आता है सुबह से आपको एंटरटेन करता है एंड रात तक आपके लिए एंटरटेनमेंट का डोज आपको मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अपडेट भी, आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलती हैं एंड आपकी सेहत से रिलेटेड भी यहाँ पर शोज हम प्ले करते हैं, जो क्योंकि देखो दोस्तों, सेहत भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान फिट रहेगा तभी वो हर चीज़ का लुत्फ़ उठा पाएगा ना, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, वो सभी स्वस्थ रहें, फिट एंड फाइन रहें, हेल्दी रहें और हमेशा हैप्पी रहें। तो अभी बात करते हैं अपनी लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम परी है।
0: परी, आप कहाँ से बात कर रहे हो? बताइए परी, कैसे हैं आप?
1: ऐसे ही हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बताइए, आप स्कूल जा रहे हो अब?
1: हाँ।
0: जी बताओ परी, आप कौन सा गाना सुनोगे आज? ओके, चलो भी प्यारा से गाना आपको सुनवाते हैं। थैंक यू परी कॉल करने के लिए। तो चलिए परी की पसंद पर सुनते हैं धुरंधर मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक, तैनू शरारत सिखावा जद नैना लड़ावा। तो ये गाना सुनते हैं और इसी गाने के साथ अब लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको संडे को, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती ना की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फाइनली आज जरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट हैं, यानी कि ढेर सारी बातें करने वाले 2 घंटे। हां जी, कल का जो मैच था भैया, क्या ही धमाल मचाया। यानी कि 4 विकेट से हमारी इंडिया टीम रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं। यानी कि संडे को 19 तारीख को लास्ट यानी कि ODI मैच होने वाला है, और उस मैच में देखना है कि कौन सी टीम धमाल मचाने वाली है। देखिए अभी तो फिलहाल बराबरी चल रही है, एक मैच हमारी इंडिया टीम ने और एक

मैच इंग्लैंड वालों ने जीता है। फिलहाल 19 तारीख को देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और यहाँ पर देश दुनिया में क्या चल रहा है आज की तारीख यानी कि 17 जुलाई, और आज क्या स्पेशल डे मनाया जाता है, हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे पिटारे में है बहुत सारी बातें, बहुत सारा अपडेट जो आप सभी तक पहुंचाना है। होले होले जी, बस आपने कनेक्ट रहना है, रेडियो की सुई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करनी है जी, आरजोरीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद श्रोताओं।

गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में हैं आप और समय की बात करूं तो 5:27 हो चुके हैं श्रोताओं, और हमें इंतजार होता है ना कि कहीं लॉन्ग सफर पर चले घूमने के लिए, और ऊपर से हर किसी के मन में बस एक ही बात होती है गर्मी में कि भैया पहाड़ों में चलेंगे घूमने के लिए, और वहीं अगर बात आए वैष्णो देवी यानी कि कटरा की तो दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यार काफ़ी लॉन्ग सफ़र है और इसमें कैसा किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप सभी के लिए अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आप यानी कि दिल्ली से अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो 6 घंटे में आप पहुँच सकते हैं, वो कैसे देखिए उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा जी। म्यूजिकल ब्रेक अब बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ आप गाड़ी चला रहे हैं तो दाएं बाएं भी देखना जरूरी नहीं है श्रोताओं, आगे देखकर गाड़ी चलाइए और अपने घर आराम से पहुंचिए क्योंकि घर वाले इंतजार कर रहे हैं आपके, है ना। और आरजे रीना भी तो इंतजार करिए कि आप अच्छे से बस घर पहुंच जाइए, और घर पहुँच कर आराम से, बहुत से ऐसे होते कि ऑफिस से निकलने के बाद भैया सोचते कि यार चलो यार बस घर जाकर कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे या फिर जो भी उनका फेवरेट वाला काम होता है ना वो आराम से करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऑफिस की बातें ऑफिस तक, घर की बातें घर तक, यानी कि जो ऑफिस के टेंशन है ना बस ऑफिस से बाहर निकला वहीं गेट पर उसको छोड़ के आ जाओ, घर आ गए अपना दिमाग को रिफ्रेश करिए और इन्जॉय करिए इस इवनिंग को, और अपने फैमिली वालों के साथ यानी कि टाइम स्पेंड करना बिल्कुल ना भूले श्रोताओं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैष्णो देवी अगर 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं तो आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए ऑल यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिलहाल अगला गाना बहुत शानदार वाला है गाना, सो इस गाने को सुनते हैं और लौट कर आते श्रोताओं।

0: ਨਿਕਲੋ
1: ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਅੰਕਲ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, वेलकम बैक है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:37 हो चुके हैं और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि आज यानी कि वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। एक छोटी सी स्माइल, एक लाल दिल, हंसी के आंसू और प्यार भरी नजर, कभी कभी ये छोटी छोटी इमोजी भी हमें यानी कि हमारे दिल की बातें कह जाती है, जो कि लंबे लंबे मैसेज भी नहीं कह पाते हैं। ये हमारी भावनाओं को ना अच्छे से समझ लेते हैं। हम अक्सर मैसेज करते समय मैसेज कम लेकिन इमोजी वाले जो स्टिकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा भेजते हैं, और हम उस खुद इमोजी को देख देख कर स्माइल भी करते, अच्छा ये इस तरीके से सोच रहा होगा।

पक्का ये हंस रहा होगा, अच्छा ये गुस्सा कर रहा है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से हैं जो कि मेरे तरह हैं, मैं मतलब चैटिंग अगर मैं करूँ तो बहुत कम, इमोजी बहुत ज़्यादा भेजती हूँ मैं। तो आज है वर्ल्ड इमोजी डे। इमोजी सिर्फ मोबाइल की तस्वीर नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की एक नई भाषा बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, हर रिश्ते में सिर्फ भेजना ही काफ़ी नहीं, कभी कभी अपनी आवाज़ में कैसे हो पूछना भी ज़रूरी होता है। तो आज किसी अपने को सिर्फ एक इमोजी नहीं, थोड़ा सा वक्त भी दीजिए, क्योंकि असली खुशी स्क्रीन पर नहीं रिश्तों में बदलती है। क्योंकि हम अक्सर देखा जाए तो हर कोई आज के टाइम में बिजी रहता है, किसी के पास इतना समय, मतलब दूसरों के लिए सोचिए, खुद के लिए भी इंसान के पास समय नहीं है कि वो अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सके, कुछ सोच सके, बिल्कुल भी समय नहीं है आज की इस भागदौड़ की दुनिया में। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि पहले खुद को समय दीजिए, फिर दूसरा अपने रिश्तों को समय दीजिए। जितना आप अपने रिश्तों में समय देंगे उतना ही आपकी जो रिश्ता है वो आगे तक बना रहेगा और खुशियाँ ही बरकरार रहेगी। चलिए फिलहाल एक और गाने की तरफ बढ़ते श्रोताओं, उसके बाद कनेक्ट होती है।

फ्रेंड्स, ये शक्ति कुमार का पहला यूट्यूब वीडियो पेश है मेरा नया गाना।

0: सुपर है।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: हेलो, गुड वेल इवनिंग है जी। समय की बात करूं तो 5:47 हो चुके हैं। श्रोताओं, आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। हाँ जी, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो भी वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में एक ही ख्याल आता है कि यार सफ़र तो बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन श्रद्धा जो मन में होती है ना, वो चाहे सफ़र कितनी भी दूरियाँ क्यों ना हो, पहुँच ही जाते हैं। यानी कि पहले जब दिल्ली से वैष्णो देवी जाते थे तो 14 घंटे का समय लगता था, 14 घंटे यानी कि दिन और रात। इंसान थोड़ा बैठे बैठे भी परेशान हो जाता है ना ट्रेन में, लेकिन अब आपके लिए जो सफ़र है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा जी। बिल्कुल, जहाँ 24 घंटे लगते थे वहीं अब 6 घंटे लगने वाले हैं अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को पैकेज का, यानी कि 6 घंटे यानी कि जो आप जा सके उसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो यानी कि फ़ायदा किनको होने वाला है, देखिए फ़ायदा हर किसी को होगा क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो दिल्ली से ही हम अक्सर ट्रेन पकड़ के जाते हैं कटरा के लिए। यानी कि अगर दिल्ली से बात करूँ तो आपको प्रॉपर 6 घंटे लगने वाले हैं करीब। अगर वहीं दिल्ली से अमृतसर के, वहाँ से अमृतसर से लगेंगे 4 घंटे। तो देखिए पहले से जो टेक्नोलॉजी है वो तो बढ़ती जा रही है और आसान जो सफ़र है वो होता जा रहा है। वैष्णो देवी यात्रा होगी, इससे क्या फ़ायदा होगा? यानी कि जो वैष्णो देवी की यात्रा होगी आसान हो जाएगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा और भी बढ़ावा, और आसानी से आप वहां पर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें आपको यानी कि इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। श्रोताओं, एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई यानी कि करीब 670 किलोमीटर की होने वाली है जी। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आप यहाँ से आप जाना चाहते हैं तो आपकी जो सफ़र है वो स्मूथ होने वाली है। चलिए, फिलहाल हमारे पास ना कुछ मैसेज भी आ गए हैं, उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैसेज आता है हमारे पास, गुड इवनिंग रीना मैम, आपका शो सुन रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम बड़ा ही रोमांच पेश करती हो। अरे ओ बापरे, थैंक यू सो मच जी। और मैं आपका 5 बजे का इंतज़ार हम करते हैं, थैंक यू सो मच जी कि 5 बजे का इंतज़ार करते हैं। और कब आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी? सुन तो लिया आपने सर, 5 बजे हम आ ही जाते हैं आप सभी के बीच। रेडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच सर कि रेडियो से आप प्यार करते हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से कनेक्ट होते हैं और ये रेगुलर लिसनर है। भैया इनका डेली मैसेज आता है, थैंक यू सो मच सर इतना प्यार देने के लिए हमें, आपके प्यार की बदौलत है जो हम 5 बजे यहाँ खींचे चले आते हैं। देखिए बाहर भी होते तब भी बस दिमाग में यही रहता है यार चलो 5 बजने वाले अपने श्रोताओं से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं। चलिए इसी बात पर एक बहुत ही शानदार आपको हम गाना सुनवाते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। एक और मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज हमारे पास आता है, मीना जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाती है, वेरी गुड इवनिंग जी। और आकांक्षा जी का मैसेज आता है, इनका कहना है कि रीना मैम पहले आप ग्राउंड में सुबह सुबह घूमने आती थी लेकिन अब क्या बात है आप आ नहीं रही हो, मतलब मैं डेली आपको देखती थी लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं वॉक करते समय किसी को परेशान नहीं करना चाहिए लेकिन आपकी एक झलक दिख जाती थी जो कि अब नहीं दिख रही है। अरे अरे क्या बात है जी, बहुत जल्दी झलक दिखेगा, एक्चुअली सुबह सुबह आँख नहीं खुलती इंसान की। देखिए लेकिन सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, देखिए सुबह उठते तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, वहीं अगर आप डिले करते हैं लेट करते तो सर भारी भारी सा फील होता है और आलस आने लग जाता है, इसीलिए सुबह उठना बड़ा सुकून है सच में, वो सुकून मैं दोबारा लेकर आने वाली हूँ जी। चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं। भैया बहुत शानदार गाना है, बचना है हसीनों लो मैं आ गई, आ गया ना जी मैं आ गई हूँ।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: हमें सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
4: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
3: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गाँव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि देखिए गुनगुनाना बहुत जरूरी है मेरी जान, क्योंकि आप आज रीना के साथ कनेक्ट है, वो भी इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूं तो क्या भैया, यानी कि 6:08 हो चुके हैं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है जी। चलिए, आय हाय, बिल्कुल रेल चलाएंगे जी। सोचिए दोस्तों, अगर ट्रेन चले लेकिन धुआं ना हो, इंजन दौड़े लेकिन हवा दूषित ना हो, और सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे भविष्य जैसा लगता है, लेकिन अब ये भारत की हकीकत बन चुका है। भारत को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्लू का इस्तेमाल होगा। इसमें कार्बन प्रदूषण लगभग ना के बराबर होगा और बाहर निकलता है सिर्फ और सिर्फ पानी का भाप। इससे क्या फायदा होगा, है ना, दिमाग में पहले यही आता है कि आखिरकार हाइड्रोजन ट्रेन, इससे फायदा क्या होने वाला है। अरे बहुत फायदा है जी, यानी कि हवा होगी ज्यादा साफ, पर्यावरण को मिलेगा बड़ा राहत, डीजल पर निर्भर रहते थे वो कम हो जाएगा, और लंबे समय में यानी कि ईंधन की बचत और आधुनिक रेलवे व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जब एयर हमारा साफ होगा तो हम सांस भी अच्छे से ले पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि ग्रीन इंडियन और की बढ़ावा का एक नया कदम है, यानी कि बढ़ते हुए इंडिया की तरफ एक नई कदम है, एक नई पहचान है। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वंदे भारत स्लीपर को भी हरी झंडी दिखा दी भैया, जो कि वाराणसी से यानी कि कितने पटियाला तक चलने वाली थी जी। और वहीं बताओ, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये कहाँ से चलाई गई है, यानी कि इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन, याद रख लीजिए। आपको इन फ्यूचर जब आप एग्जाम कोई देने जाएंगे तो आपसे ये जरूर पूछ लिया जाएगा भैया कि इंडिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किस दिन चलाया गया था, सन कौन सा था। तो सन है 2026, तारीख है 17 जुलाई, ठीक है जी। यानी कि भारत की रेल यात्रा अब एक नई दौर में की ओर आगे बढ़ रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। करीब 89 किलोमीटर की इसकी सफर होगी और 14 स्टेशन से गुजरती हुई निकलेगी। और भैया, यानी कि जो दो दो घंटे में अपनी मंजिल तक आपको ये पहुंचाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, मेन जनरल नॉलेज क्वेश्चन। इन फ्यूचर देखिए, एग्जाम में जब भी कुछ शुरू होती है, शुरुआत होती है, तो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि भैया ये चीजें कहाँ से शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि इंडिया में यानी कि भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी, तो हरियाणा से जींद के बीच, ठीक है जी। और तारीख 17 जुलाई, सन यानी कि ईयर पूछा जाए तो 2026, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर याद होना चाहिए। चलिए, फिलहाल कोठे ऊपर कोठली, मैं उस पर रेल चला दूंगी, रेल चला के आते हैं, ठीक है जी। क्या

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: और एडमिशन कॉल 9639004077।

बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 6:21 हो चुके श्रोताओं इवनिंग मस्ती शो में। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अब ये बहुत ही ज़्यादा खास किस लिए है हम बताते हैं जी। मैं क्या ताऊ जी, रेडियो की सुई इधर उधर बिल्कुल नहीं करनी आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहने का, ठीक है जी। और मैं मैनू कहूँ जी, आमने सामने भी देख लेनी चाहिए, ठीक है जी। गड्डी आ रही है सामने से तो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल हम आप सभी के साथ यानी कि कनेक्ट हो गए हैं। और आज का स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि आज है बर्थडे जी भोजपुरी के एक्टर यानी कि रवि किशन, आज उनका बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे है। तो उनको हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे जी। मैं क्या देखिए जी, किसी का भी बर्थडे होया करे अपने विश कर देना चाहिए क्योंकि इंसान के चेहरे पर रौनक आ जावे, ठीक है जी। तो देखिए ये यानी कि इनका जन्म हुआ था 17 जुलाई 1959 में जी। और ये यानी कि इनका जन्म मुंबई में बॉम्बे में हुआ था। और साथ ही साथ ये यानी कि अभिनेता राजनेता गोरखपुर के लोक सांसद और फिल्म निर्माता है और भोजपुरी के सुपर डुपर एक्टर भी हैं। सो हमारे पास मैसेज भी आए, चलिए देखते हैं आखिरकार भैया किनका क्या मैसेज आया है। छोड़ के दुनिया सारी बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और भाभी लक्ष्मी कश्यप, ओके जी, हमारी तरफ से आपको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं आपका, आपको शुक्रवार शाम की राम राम जी। मैं कहा आपने भी राम राम जी, मैं कहा की हाल चाल है जी। जी बढ़िया ही होंगे, है ना, बढ़िया रहना चाहिए श्रोताओं। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास गाने प्ले कर रही हो। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, मैम चाय पी लीजिए, मौसम भी बहुत औसम हो रहा है। बिल्कुल अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, उमस के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। हाँ जी, थोड़ी सी राहत मिल जाए यही काफी हमारे लिए। हवाएं भी चल रही जी, बिल्कुल हवाएं चल रही हैं। और इनका कहना कि आज रवि किशन जी का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे जी, थैंक यू सो मच जी, मैंने उनकी तरफ से आपको बोल दिया। और आज जिनका जिनका भी बर्थडे है उनको भी हमारी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। बेबी राधिका जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि मैं भी आपके प्रोग्राम में शामिल हो गई हूँ, थैंक यू सो मच जी तहे दिल से कि आप भी प्रोग्राम में शामिल हो गई है, बस इतना ही प्यार चाहिए, शुक्रिया जी। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ये विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप बताइए कि आप कैसे हैं, गाने अच्छे बजा रही हो, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल एक कड़क सवाल मैं आप सभी के बीच लेकर आने वाली हूँ और कड़क सवाल ये है, देखिए अगर आपने मेरा 5 बजे से अगर आप शो सुन रहे हैं तो आप आंसर जरूर बता पाएंगे क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है और आज उसी का क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ क्योंकि इन फ्यूचर वो पूछा भी जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, आखिरकार मैंने आप सभी के बीच बताया भी है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, तेरे रंग तेरा रंग बल्ले बल्ले आए हाय बल्ले बल्ले, सुनते हैं जी। क्या बात है जी, एक और मैसेज की तरफ बढ़े तो एफएम मुरादाबाद परिवार को नमेंद्र गुर्जर जी की राम राम, राम राम जी, मैं कह आपको की हाल चाल जी, मैं कह सब बढ़िया, कुशल मंग रहना चाहिए जी। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 6:35 हो चुके हैं और इसी बीच आर्जुरीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क सवाल। अगर आपने सुना होगा शो तो आसानी से आप दे पाएंगे इसका आंसर बिना गूगल पर सर्च करे ही। देखिए, गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, तरोताज की बात है और तरोताज की क्वेश्चन करते हैं आज आप सभी से यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलाई गई है, आपने ये महसूस करके बताना है जी। नंबर है 9837896896, यानी कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है और उसका तारीख भी आपने डेट मेंशन करना है जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं जी। बहुत ही सिंपल आज तो हमने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है जी। मैंने इसलिए पूछा कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से एग्जाम्स में।
1: मुंडे कुड़ियों भंगड़ा पाउन तैयार।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है जी। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यहाँ पर 6:46 श्रोताओ। और कहते हैं ना, जिथे अपने खड़े हैं उत्थे कोई और नहीं करता, यानी कि जहां अपने खड़े होते हैं ना वहां कोई और नहीं आता। बस कहने के लिए हो जाते हैं कि चार लोग, रिश्तेदार, ये वो, हम अक्सर यही कहते रहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत, जो हम देखिए बहुत कहते हैं कि ये है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये जो हमारे साथ कहीं जाते रहते हैं ना वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। कभी आजमा के देख लीजिएगा, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई ये मेरे साथ ना पूरी ज़िंदगी खड़ा रहेगा, चाहे कुछ हो जाए ये मेरे साथ छोड़ने वाला ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मतलब के लिए खड़े रहते हैं। जब आपको जिस दिन मुसीबत आएगी ना, आप उनको अगर बोलेंगे तो वो, अगर आप फ़ोन भी करेंगे ना तो बहाने बना लेंगे, यार छड़ यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को घर वालों ने काम बता दी, ये वगैरह वगैरह, यानी कि रखते हैं अपनी बातें। और दूसरा, आप अपने घर वालों को, घर वालों के साथ चाहे कितने लड़ लो, कितने ही झगड़ लो, अगर आप उनको बोलते हो तो वो ये नहीं सोचेंगे कि तू अभी मेरे साथ, तूने अभी लड़ाई करी है, तूने ये शब्द बोले, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जिसके मतलब कोई और साथ होना हो, लेकिन अपने फैमिली ज़रूर साथ होते हैं। इसीलिए अपनों की कद्र करिए, क्योंकि दुनिया में हर रिश्ते मतलब के हो सकते हैं, लेकिन अपनों का जो साथ होता है वो कभी मतलब वाला नहीं होता है श्रोताओं। और आज मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी बहुत ही सिंपल वाला पूछा है, बहुत ही शानदार पूछा है, बहुत ही रिसेंट वाला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि भारत में यानी कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चली है, और साथ ही साथ आपने उसका डेट भी मेंशन करना है, कौन सी डेट को वो चलाई गई है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो आप सोचिए, कभी इन फ्यूचर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो ये जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप याद ज़रूर करेंगे, हाँ रीना बनम ने ये क्वेश्चन ज़रूर हमसे पूछा था। तो सोचिए और मैसेज करिए जी, नंबर है 9823789689 6, क्योंकि अगली बारी आपकी ही होने वाली है जी मैसेज की। चलिए एक बहुत ही प्यारा गाना सुनवाते हैं आपको।

हाय हाय, क्या बात है जी। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ, और आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आ गए भैया। तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार किनका हमारे पास शानदार वाला मैसेज आया है। सो आज का क्वेश्चन मैंने यही पूछा था आप सभी से कि पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलाई गई है और उसकी तारीख बतानी है आपने। तो हमारे पास मैसेज आता है ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। रईस दूल्हा अंसारी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए कैसे हैं। रीना मैम आपका शो सुन रहे हैं, गीत बहुत अच्छा सुनवा रही हो, इन बेस्टिंग शो चल रहा है। थैंक यू सो मच जी। ललिता जी का कहना है कि जिंद से जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलाई गई है। ओके जी। और ये विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी ट्रेन मुंबई से। ओके जी। ओके। बबली अंजान जी, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप और जींद हरियाणा से 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा दी गई है। क्या बात है जी। बेबी राधिका जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है 17 जुलाई को जींद हरियाणा से हम सब के यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। ओके। मुरादाबाद यूपी से कनेक्ट होते हैं रणवीर सिंह जेठालाल जी। सत्रह जुलाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली स्वदेशी यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच यानी कि 89 किलोमीटर की रूट पर चलेगी। ओके जी। चलिए जी, तो यानी कि आप सभी ने राइट आंसर दिया है, लेकिन विक्की सागर जी आप कहाँ रह गए जी? आज आपने शो लगते हैं कि पूरा नहीं सुना है आपने। सुनना चाहिए था जी पूरा, तभी आप राइट आंसर बता पाते। क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन है यानी कि इंडिया में पहली बार आज ही चलाई गई है, यानी कि जींद से सोनीपत तक की वो रवाना करेगी। और वो हाइड्रोजन ट्रेन जो कि पॉल्यूशन धुएं वाली नहीं होगी, सिर्फ पानी की भाप वाली ट्रेन है वो, और इसी पूरी रफ्तार के साथ यानी कि H2 हाइड्रोजन पावर आज ही चलाई गई है। और आज की तारीख आप नोट कर सकते हैं यानी कि 17 जुलाई 2026 जींद से हरियाणा यानी कि हरियाणा में चलाई गई है और आज ही हरी झंडी दी गई है। और आज ही यानी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यानी कि वाराणसी से अमृतसर के लिए भी आज ही हरी झंडी दी गई है। चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में, धमाल मचाएंगे जी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
5: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना रचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गला तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है, एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खान पान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है

0: आ रही है। यह कला आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
1: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
0: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
1: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
0: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
0: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
0: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
1: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
0: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
0: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
0: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
1: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
0: और सबसे जरूरी,
1: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
0: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
1: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
0: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
0: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही कहा।
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
1: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
0: उनकी सेवा करें,
1: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी हैं कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
0: अलग रहने की कोशिश करते हैं
1: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में वाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
0: बिल्कुल सर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
1: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप SDM कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, DM के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चे को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
0: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
1: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
0: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
1: बिल्कुल, जैसा आप बीज
0: वैसे ही फल मिलेगा,
1: फल मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
0: श्रोताओं आपको जो ये हमारी बात है, आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे, तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी

0: बात बताएं, रिटन में अगर कंप्लेन करने को आप पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
1: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
1: पहुंचाना जरूरी है
0: तुरंत।
1: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
0: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं, अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
1: बिल्कुल,
0: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
0: हाँ,
1: तभी
0: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
1: बिल्कुल,
0: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
1: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर।
0: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
1: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
0: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
1: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
0: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मान ढंग से कर सके।
1: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी
1: कम हो जाती है,
0: शरीर भी थोड़ा दुर्बल
1: हो जाता है, मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
0: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं, और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस आला अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
1: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
0: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
1: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, कुछ गलत
0: तो
1: बोल रहा है।
0: आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
1: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
0: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके FM मुरादाबाद 89.6 MHz के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और साथ ही सीनियर सिटीजन्स को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि उन इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है, वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, सोच भी उनकी थोड़ी सी, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत सी जानकारियां मिली कि बुजुर्गों के लिए भी कानून है, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब। तो थैंक यू सो मच सर, अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत लेती हूँ श्रोता। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है 9837896896।
2: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू और भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में सम्पन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय लगभग 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शकुरपुर से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र राजधानी के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान में दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर संचालित हैं, जो नागरिकों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण और सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों में नागरिकों को सामान्य ओपीडी, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जाँच, आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य परामर्श और लगभग 80 प्रकार की निःशुल्क जाँच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है।
4: आज ये इतनी बड़ी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपकी मेहनत की ही देन है, जो हाँ जिसका फायदा इस क्षेत्र की जनता उठाए। हर तरह के टेस्टिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है।
3: श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही 1,100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी। उन्होंने नागरिकों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित जीवन शैली अपनाने और योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नेताजी सुभाष प्लेस क्षेत्र में 5 सड़कों और एक नाले का पुनर्निर्माण शामिल है। 6,25,00,000 रुपए की लागत से विकसित 8 प्रमुख सड़कों लॉरेंस रोड, महर्षि परशुराम मार्ग, परवाना रोड, जी और एच शकुरपुर रोड, एकलव्य मार्ग, तिरुवल्लू वरमार्ग और वीर हेमू समेत अन्य मार्गों का भी लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिनगर विधानसभा वर्षों तक बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझती रही, लेकिन अब इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष तेज बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत प्रभावी किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न जिलों और उपखंडों में फैले लगभग 4,400 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित किसानों तक सीधे अनुग्रह राशि पहुंचेगी। यह राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा है योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो उस भूमि के पंजीकृत मालिक हैं और जिनकी फसल पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर की तेज बारिश और जलभराव के कारण खराब हुई थी। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज छतरपुर स्थित डेरा मंडी रोड का दौरा कर क्षेत्र में जलभराव, सीवर और सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद श्री सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग डेरा मंडी रोड से डेरा भाटी रोड होते हुए बांध रोड तक नया प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन बनाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था विकसित करना और भविष्य में जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि जखीरा में बन रहे प्रतिदिन 56 लाख लीटर जल क्षमता वाले भूमिगत जलाशय के निर्माण कार्य में तेजी से प्रगति हो रही है। जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सज्जन सिंह यादव ने आज निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। परियोजना के पूरा होने के बाद नेहरू नगर, आनंद पर्वत और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति में सुधार होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली रिज के पीबीजी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया। ये पौधारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित अभियान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित है। श्री सिरसा ने लोगों से पेड़ों को बचाने की अपील की।
5: आज दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़ी प्लांटेशन ड्राइव यहां पर चलाई गई। दिल्ली के हर कोने में पेड़ लगे, इसके लिए दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। देश के गृह मंत्री जी ने पहला पेड़ लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की और अब लाखों पेड़ दिल्ली के अंदर लगाए जा रहे हैं। सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिलकर, पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ हमारा टारगेट है। सभी डिपार्टमेंट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए सब लोग मिलकर इस काम मुहिम को कर रहे हैं।
0: न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन पे एक उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को नागरिकों के लिए परिचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने बताया कि इस चार्जिंग स्टेशन में 14 डीसी चार्जिंग पॉइंट प्रदान किए गए हैं। उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन का पता लगाने के साथ साथ चार्जिंग सुविधा का सुगम उपयोग कर सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। आदेश में दिल्ली के वर्तमान पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को अनुराग कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आगे की तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही के नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। दमन और राष्ट्रीय राजधानी के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भारत का प्रतिबिंब है, जहां देश के प्रत्येक राज्य के लोग निवास करते हैं। श्रीमती गुप्ता ने आज फेथ पर्यटन सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में केवल देश के विभिन्न राज्यों के लोग ही नहीं रहते, बल्कि उनकी परंपराएं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी जीवंत रूप से संरक्षित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को विश्व स्तरीय पर्यटन हब बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
4: दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन है। इस विचार पे भी बहुत काम करने की जरूरत थी, हमने इस पे काम करना शुरू। दिल्ली एक तरीके से मिनी इंडिया है, भारत का वो छोटा स्वरूप जहां हर राज्य के लोग रहते, और केवल राज्य के लोग नहीं रहते, उनसे जुड़ी हुई सारी परंपराएं, वो उनका बहुत ही सुंदर कल्चर यहाँ रहता है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु दिवस भारत की सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का उत्सव है। तमिलनाडु दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन।
6: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास में राज्य के योगदान की सराहना की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और तमिलनाडु के बीच आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में आयोजित होने वाले पोंगल, भरतनाट्यम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि तमिल उत्सवों, पर्वों और कर्नाटक संगीत जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से नई पीढ़ी गौरवशाली तमिल संस्कृति से जुड़ रही है। कार्यक्रम में कलाकारों ने भरतनाट्यम, कराकट्टम, कावड़ी अट्टम और कारगम लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया है। चार दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। भारत और विदेश से प्रदर्शकों, खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह भारत के वस्त्र क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इसमें 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों, 6000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों सहित 11000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी रही और आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों के लिए 33 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि को मंजूरी दी। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू और भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में सम्पन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही मीठे गीत से, जिसे हमने चुना है फिल्म

0: दुनिया।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: के नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
7: हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे RJ आनंद को, और आज का सेशन बहुत ही खास है, बिकॉज आज स्टूडियो में ना मैं अकेला नहीं हूँ। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग है ना वो बड़े हैपनिंग है, उन्होंने आते ही माहौल को जो है बड़ा कूल बना दिया। वेल, आज की बातों को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आज बड़े स्पेशल लोग, उनमें से एक ऐसा है जिसको ऑफकोर्स आपने बहुत बार सुना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने कभी सुना ही नहीं होगा मुरादाबाद में। आज पहली बार आप सुनोगे हमारे रेडियो के थ्रू। ऑफ कोर्स यार, क्योंकि जब नई नई चीजें रेडियो पे आती है तो बहुत मजा आता है, और आज इसमें सबसे बड़ा योगदान इन भाई साहब का है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन है ये, इनकी आवाज ऑफ कोर्स आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए ताली, और अपने लिए भी आप बजा लो ताली। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं सर आप? हाउ आर यू?
8: आरजे आनंद जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे।
7: मैं बहुत ही फैंटास्टिक हूँ, आई एम वेरी हैंडसम, नो डाउट, वो आपको देख के लग ही रहा होगा। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है मैं कितना हैंडसम हूँ, वो तो इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, भले आजकल फिल्टर लगा के बैठते हैं, नो डाउट। खैर एनीवे,
8: ठीक है, देखिए आपका तो वर्किंग शेड्यूल है उसके अलावा कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक्साइटेड थे।
7: 4 बार मैसेज भेजते हैं, 5वीं बार में ही आते हैं, कमाल की बात है। चलिए कोई नहीं, राघव जी थैंक यू सो मच, आप आए बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ में एक मैडम भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
6: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप कैसे हैं ये बताएं?
7: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी वेल, और इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। प्लीज क्रेडिट इनको दीजिए जो आपको यहाँ लेकर आए। सो पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपको FM मुरादाबाद के स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
6: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ही वेलकमिंग माहौल था, आप लोगों ने बिल्कुल आते ही मुझे बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल कर दिया कि माहौल अच्छा था,
7: चला देता हूँ माहौल और कंफर्टेबल वाला हो जाएगा।
6: बिल्कुल।
7: तो मैम आपने जो है भी थोड़ी देर पहले ऑफ ईयर मैम कह रही थी कि मेरा अंदाज थोड़ा शायराना वाला होता है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ उस स्टाइल में अपना इंट्रो आप दें।
6: जी जी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी।
7: डेफिनेटली।
6: कि नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
7: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, दिल से शायरी है, ये आपका इंस्टाग्राम प्रमोट करने का तरीका था ना?
6: अरे बिल्कुल, इसी से ही तो हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पहुँचे हैं।
7: वेरी नाइस, बट एब्सोल्युटली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है राघव जी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है आज। देख लीजिए आपके सामने चेयर पे बिल्कुल कट टू कट वाली बात होगी आज।
8: नहीं, हेल्थी कॉम्पिटिशन होता है तो हम भी ग्रो करेंगे ना।
7: क्या बात है, ऐसी सोच अगर हमारे यूथ की हो तो भैया मुझे लगता है फिर तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन क्या 100 मिलियन भी हो जाएंगे,
6: सब फॉलो करने लगेंगे।
7: एब्सोल्युटली, अच्छी बात है ना, रेडियो भी अच्छी लगती है, रियल लाइफ में फॉलो कोई करता नहीं है वैसे।
6: बिल्कुल बिल्कुल
7: सच बात है।
8: नहीं, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में फॉलो करता है, आरजे आनंद को कौन फॉलो नहीं करेगा।
7: अरे भैया हम भी राघव जी को फॉलो कर रहे हैं, आजकल फॉलोवर इतने बढ़िया तेजी से ग्रो कर रहे हैं आजकल,
6: हर वीडियो पे 1 मिलियन।
8: अरे नहीं, हर वीडियो पे नहीं, लेकिन दूसरी वीडियो 1.4 मिलियन
7: हो जाए, कुछ भी हो सकता
6: है।
7: एब्सोल्युटली, बिल्कुल डेफिनेटली। तो गाइस आप सुन रहे हैं ना माहौल कितना हैपनिंग वाला हो रहा है, तो आज का ये सेशन आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने देगा। वेल मैम, आपने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मैं राघव भाई से डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहूंगा। राघव भाई पहले तो ये बताओ, आप इतने दिन पहले कहाँ थे? जब मैं आपको बुला रहा था आप तब आए नहीं, अब अचानक से आपका जो है यहाँ पे आवागमन हो गया।
8: थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, और ऐसे नहीं है कि
7: हमारे लिसनर यार आपसे नाराज हो जाएंगे, आप ऐसे नाराज मत किया करो, अपनी प्यारी प्यारी आवाज।
8: मैं पंक्तियां लाया हूँ उनको मनाने के लिए,
7: जरा 2 पंक्तियां मैं चाहूंगा जरूर।
8: आपने कभी इंट्रोडक्शन की बात की तो उसमें मैं बस 2 लाइन है उसको
7: कहूंगा,
8: आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर, जितने मुझे सुन रहे हैं उनके लिए खास, आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है।
7: वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ मैम, आपके बारे में थोड़ा सा जानने चाहेंगे हमारे लिसनर्स भी और मैं भी जानना चाह रहा हूँ, आप क्या करती हैं अभी, प्रोफेशनली क्या चल रहा है, आप मुरादाबाद से हैं या कहीं और से बिलोंग करती हैं?
6: नहीं नहीं, मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और मैं फिलहाल मुरादाबाद में पढ़ाई के सिलसिले में आई हुई हूँ। फिलहाल मेरा थर्ड ईयर चल रहा है MBBS का, बट अगले महीने में फाइनल ईयर में होंगी MBBS के, क्योंकि फिलहाल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हाँ जी, मैं इसी चक्कर में मुरादाबाद में आई हुई हूँ।
7: अच्छा, मुरादाबाद आके कैसा लगा आपको?
6: यार शहर तो बढ़िया है आपका मुरादाबाद, रायपुर से तो हम क्या कहें, थोड़ा
8: मुरादाबादी दाल जलेबी खाई कि नहीं आपने?
6: खाई okay. अच्छी थी बाहर ही खाई क्योंकि मैं इसमें तो समझ नहीं आई थी okay. तो बाहर जरूर ट्राई की थी। नहीं बढ़िया है, हर संडे हम आते हैं बाहर,
8: मैस के तो दाल क्या वो तो खाना भी समझ नहीं आता।
6: मैस छोड़ ही देते ना, मैस की क्यों बात करनी है, बाहर इसलिए हर संडे आते हैं।
8: मैंने सुना है कि MBBS का मैस बाकी अदर कोर्सेज के मैस से थोड़ा बेस्ट होता है।
6: थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, थोड़ा पनीर वनीर ज्यादा मिलता है।
7: क्या बात है, तभी मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा हो जाता है।
8: नहीं, इनकी नोट की गड्डियां भी मोटी होती है।
7: मानना पड़ेगा भाई ये बात, मुझे लग रहा है कि राघव जी ना नोट की गड्डियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
6: उनका थोड़ा अलग तरह
7: है ना फोकस, थोड़ा मैं चाहूंगा फोकस अपना शेरो शायरी की तरफ रखे आज
8: सर,
7: तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं सिलसिला यहाँ पर शुरू करूंगा गाइज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस एंट्री करेंगे एंड फिर उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: चाहिए।
1: वेलकम बैक वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। सुन रहे हैं आप आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ऑफ कोर्स आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, मुझे भी लग रहा है यार, क्योंकि इतने प्यारे लोग स्टूडियो में बैठे हैं और आप उनको सुन रहे हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आपको भी, मुझे भी आ रहा है। स्पेशली मजा इसलिए डबल हो रहा है क्योंकि वो बैठे बैठे हंस भी रहे हैं और अपने दिल की बात कहने के लिए बेकरार भी हैं। तो बिना किसी देरी के माइक जो है उनकी तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे। तो माही जी, सबसे

0: ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी राघव जी,
1: मैं कर दूं आंखें बंद पीछे से
2: तो बिना सुने बिना देखे पहचान जाओगे।
0: क्या बात, ये मैम आप खुद ही लिखते हैं?
2: मोस्टली खुद ही लिखती हूँ, जो नहीं लिखी होती हूँ मैं बता देती हूँ कि मैंने।
0: ये है असली कंटेंट क्रिएटर जो डिजर्व करते हैं बिग शाउट आउट, बहुत ही बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आया आपको ये लिखने वाला थॉट और कब से आप कर रही हैं?
2: मैं लिख तो 7-8 साल से रही हूँ। पहले मैं सिर्फ देखा करती थी जो राइटर्स आते थे यूट्यूब में इंस्टाग्राम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना बढ़िया लिख रहे हैं मैं भी लिख सकती हूँ, तो मैंने बस उन्हें देखकर सोचा कि ट्राई करते हैं। फिर ट्राई करा, खुद ही सीखा, खुद ही थोड़ा गड़बड़ भी की बहुत सारी, बट फिर करते करते अब तो 7.5 साल हो चुके हैं लिखते हुए, तो हाँ जी, तो अब आ चुका है, एक लय बन चुकी है कि हाँ क्या करना है क्या लिखना
0: मतलब
2: है।
0: अब आंख मीच के भी लिख सकते हो
1: आंख मीच के सोच सकते हैं, लिखेंगे तो आगे।
2: चलो आप भी शब्द बोलने लगे, क्या बात है।
0: राघव जी ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो गाइस आप जो है इनसे अलर्ट रहिएगा, मुझे ज्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। वेल मैम डेफिनेटली आपके पास वापस कम बैक करेंगे। राघव भाई मैं चाहूंगा आप भी जो है इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें, आप भी वो एक चुटकी सिंदूर को सुना रहे थे मुझे, तो उसको आप ऑन ईयर सुना डालो
1: एक चुटकी सिंदूर। ओके, तो वैसे तो मैं हार्ट ब्रोकन पीस ही लिखता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ये कह लिए जीवन में एक मोड़ आया था, तो तब लिखा था कि कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना।
0: वाह,
1: कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना और बात को दिल से निकाल के जुबान पे रखना। कितना मुश्किल होता है खुद को बांध के रखना और बात को दिल से निकाल कर जुबान पे रखना। रिश्ता टूटने से बचाना है तो फिर दोस्त अपने गुस्से को ताक पे रखना। रिश्ता टूटने से बचाना है तो फिर दोस्त अपने गुस्से को ताक पे रखना। मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा देखियो, मैं तेरे सारे नखरे उठाऊंगा देखियो, बस तू मेरी शर्ट का बटन टाक के रखना।
0: वाह,
1: बस तू मेरी शर्ट का बटन टाक के रखना। ना मैं किसी के दिल में नहीं रहूंगा अब, ना मैं किसी के दिल में नहीं रहूंगा अब, तुम बस मेरे नाम का सिंदूर लगा के रखना।
2: क्या
1: तुम
2: क्या
1: बस मेरे नाम का सिंदूर लगा
0: के। अब ऐसा ना हो कि इस बार जो सुन रहे हैं वो सब सिंदूरी लगा के बैठ जाए, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
1: ये सबके लिए नहीं है, बस किसी के लिए।
0: मैजिकल लाइन है, बट बहुत ही बढ़िया आपने मजेदार सुना दिया। शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई है यार, मुझे लग रहा है कि सेशन भी कितना बढ़िया होगा ये। तो मैं चाहूंगा कि दो आमने सामने ऐसे धाकड़ लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब कुछ बातचीत भी होती रहनी चाहिए, ये शेरो शायरी का माहौल तो बना ही रहेगा। मैं आपसे पूछूंगा राघव जी, आप हर बार 2-3 बार यहाँ मेरे साथ तो 2-3 बार अकेले आए हो, आज मैम को कैसे बुलाए, कहाँ आपसे इनकी मुलाकात हुई?
1: नहीं एक्चुअली हम एक जगह परफॉर्म कर रहे थे, तो वहीं पर ही मैम से मिलना हुआ था, और जस्ट दिमाग में आया कि हम कोलैबोरेशन वीडियो बनाएंगे इंस्टा के लिए, और कुछ पोएट्री पीसेज ऐसे होते हैं ना कि जिनको सुनकर लगता है कि इस पोएट्री के साथ शायद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्यों ना पोएट्री के साथ साथ जो पोएट है उनके साथ भी कनेक्ट किया जाए, उनके साथ जुड़ा रहा जाए। और अब आप एक ही शहर में है तो चाहेंगे कि एक कम्युनिटी में है तो जुड़े रहें।
0: Absolutely.
1: तो बस इसी वजह से मैम से मिलना हुआ था और आज हम यहाँ पर हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना उसको आर्टिस्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज आपकी जब एक कम्युनिटी होगी, एक यूनिटी होगी, तो वो काम और भी बेहतर लेवल पे पहुंच पाएगा। तो गाइज अगर आप भी इनके ग्रुप में आना चाहते हैं तो कैसे आप पहुंच सकते हैं ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मैं इनके ग्रुप में नहीं हूं, बिकॉज मेरा इज ऑनर
2: इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा हम दोनों को, हम बता पाएंगे।
0: मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैम को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जल्दी से फॉलो कर लो उनको, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आज की डेट में, मुझे ऐसा लग रहा है आपका। आप इंस्टाग्राम बता डालो।
1: एक बात मैं और बता दूं, इंस्टाग्राम तो मैं ही बता देता हूँ, दिल से शायरी, ठीक है।
0: अरे वाह,
1: आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने लिसनर्स सुन रहे हैं, और सिर्फ जो आज माही जैन है सामने बैठी है, या हम जो बैठे हैं, हम ही इंस्टा पे एक्टिव नहीं है, इसके अलावा आरजे आनंद जी हैं, काफी इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं। दूसरा ये कि और कम्युनिटी के साथ भी जुड़कर काम करते हैं, तो वो मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आपने,
0: हाँ
1: बिल्कुल, आप किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हुए, आप चाहे वो सोशल हेल्प हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उनके साथ हो, आप पोएट्री से रिलेटेड प्रोग्राम हो, सिंगिंग से रिलेटेड प्रोग्राम हो, ठीक है, तो आप काफी एक्टिव रहते हैं मैंने देखा है, तो ये बहुत जरूरी है। आप अलग अलग लोगों के साथ, एक्चुअली आपकी फील्ड भी ऐसी है ना, तो वो आपको थोड़ा पुश भी करती है इस तरफ।
0: अब देखो राघव कुछ खाने पीने की चीज तो लेकर आता नहीं है, तो सोचा बातों से ही जो है थोड़ा सा कवर अप किया जाए आनंद के सेशन को, तो इन्होंने जो है वो बटरिंग कर दी है, वो मतलब जिसे कह सकते हैं कि 2-4 किलो खून बढ़ा दिया मेरा ये बोल के। सो वेल थैंक यू वेरी मच भाई कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे खुद को भी लगता है कि यू नो हम जैसे जो आज के यूथ है वो कुछ ना कुछ करते रहे यार, है ना। और मेरा मेन पर्पज ये होता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दिखावा नहीं है, वो इसलिए हम डालते हैं ताकि और भी लोग इंस्पायर हों, जो मेरे जैसे यंगस्टर हैं जो सिर्फ दिल तोड़ते हैं या सिम तोड़ते हैं वो ये ना करें, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, क्यों मैम,
2: है
0: ना। ये सब कुछ करते रहना चाहिए, और बाकी राघव जी से तो हम कुछ ना कुछ आज खा के रहेंगे, आप चिंता ना कीजिएगा। एंड अभी आगे बढ़ेंगे एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद वी कम बैक, आप कहीं मत जाना, सुनते रहिए आरजे आनंद को। ये जो माहौल है वो ऐसे ही बना रहेगा। अगर आप भी कुछ शेरो शायरी करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे डीएम करो फटाक से, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलता हूँ इंस्टाग्राम पे। डू फॉलो मी, फटाफट आओ, अपना टैलेंट मुझे मेंशन करो, मुझे डीएम करो, हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। फिलहाल एक अच्छा गाना, उसके बाद

0: Once again, welcome back. You are listening to FM Moradabad 89.6 FM. आनंद के साथ हैं आप, जहां पर माही जैन और राघव जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो माहौल को और भी ज्यादा अमेजिंग बना रहे हैं अपनी बातों से, अपनी शेरो शायरी से. और ये धाकड़ तो लिखती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ सुनाते भी बढ़िया और बोलते भी बढ़िया, और कभी कभी वक्त इनको मिलता है तो बटर पॉलिश भी बढ़िया कर देते हैं, नो डाउट. वेल, आगे बढ़ते हुए राघव जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा. आपने अभी वो सिंदूर वाला तो मेरे को सुना डाला. आप जब भी आते हैं अपनी डायरी लेकर आते हैं, बट आज आप डायरी नहीं लेकर आए. वाई
1: डायरी नहीं,
0: क्या कह रहे हो आप, सब कुछ फोन में है
1: अब? हाँ बिल्कुल, अब तो
0: डिजिटल इंडिया हो गया, मैंने भी एडवांस प्रिपरेशन करके रखी.
1: बिल्कुल बिल्कुल साहब, डायरी जो है वो अगर हम एक बैठक में बैठे तो ज्यादा अच्छा लगता है.
0: लेकिन तो ये बैठक से कम है क्या यार? स्टूडियो है, चेयर है, चार लोग हैं, पूरा सेटअप है, और क्या चाहिए आपको?
1: थोड़े से लोग और ज्यादा होते ना. अच्छा. जो पोएट्री भी करते हैं ना.
0: ऑलराइट,
1: अच्छा कनेक्ट होता है.
0: मुझे लगता है कि आज मुझे ऐसा ढूंढ के लाना पड़ेगा जो इनके माहौल को थोड़ा सा और स्पेशल बनाएंगे. मेरी जरूरत है नहीं, अब ऐसा लग रहा है.
1: नहीं आरजे आप तो बेस्ट है, लेकिन एक बेस्ट आदमी जो हमारे बीच है अभी तो नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा जो पोइट्री करी है एफएम में वो आरजे राज भाई के साथ.
0: क्या बात,
1: उनको तो हमेशा
0: राज तो राजी है, नो डाउट. यार हर इंसान का ना अपना एक कहते हैं ना, अपनी यूएसपी होती है हर एक इंसान के अंदर, है ना? तो वो हर कोई तो नहीं ले सकता यार, है ना? वे आगे बढ़ते हैं जी. माही जी, आप अपनी बातों को जरा सा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकर आइए. एंड आप कुछ चाय कॉफी के ऊपर बात कर रहे थे अभी ऑफ एयर, तो हम उसकी तरफ जो है रुख करेंगे. तो हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं आपकी मखमली आवाज में कुछ अच्छा सुनने का, सो प्लीज कुछ सुना दीजिए.
2: हाँ जी हाँ जी, तो अक्सर होता है ना कि लड़कियां कॉफी की शौकीन ज्यादा होती हैं और लड़के चाय के दीवाने ज्यादा होते हैं.
0: नो डाउट.
2: तो उसी पे दो लाइन लिखी थी कि चाय की दीवानी भी बन जाऊंगी,
0: वाह
2: तू पिलाने वाला तो बन.
0: क्या बात है
2: ना, कि चाय की दीवानी भी बन जाऊंगी तू पिलाने वाला तो बन. अरे मैं हर वो वादा मान जाऊंगी तू निभाने वाला तो बन.
0: क्या बात है यार, फैब्यूलस. ये मतलब दिल से निकली बात बोलती, मेरे को ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट वाली बात जो सीधा जाके टच करने वाली है अभी सारी लड़कियों को. मैडम एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए. ये आपने बोला लड़कियां अक्सर कॉफी की दीवानी होती है और लड़के चाय के, नो डाउट लड़के चाय के दीवाने होते हैं, लेकिन लड़कियां इतनी कॉफी की दीवानी क्यों होती है? क्योंकि चाय इतनी ज्यादा पसंद की जाती है हमारे भारत में, तो फिर चाय क्यों नहीं पसंद करती लड़कियां?
2: वो तो आपको उनसे
0: आप चाय पीती
2: है ना, चाय की दीवानी तो क्या
1: मेजोरिटी जो है वो गर्ल्स की वो कॉफी को पसंद करती है.
2: एस्थेटिक बोल लो, आई थिंक आधी लड़कियों को एस्थेटिक्स की वजह से भी वो कॉफी बहुत पसंद होता है, बाकी बारिश आने पे तो चाय, नो डाउट.
1: मैं भी अपनी वाली से पूछ के बताऊंगा.
0: भैया मुझे ये बेटर होगा कि मैं पक्का इस पे जो है और रिसर्च करूंगा.
2: कॉफी पे चर्चा एक बार करनी पड़ेगी
0: मुझे. चाय पे चर्चा बहुत सुना है,
2: बहुत हो गया, अब कॉफी पे चर्चा करनी.
1: लेकिन जो मैडम ने बात करी ना कॉफी वाली, उसके रिगार्डिंग भी मैंने लाइन लिखी थी. वो भी था कि
0: क्या बात, आज हमें कॉम्बिनेशन मिला के लाए लड़का.
1: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे
0: जी,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे.
0: वाह.
1: हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे. मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे. मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर मनाएंगे. और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले. मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले. तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे.
2: क्या बात,
1: तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे.
0: गजब, कमाल है. हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे जहां आरजे राघव को हम आरजे बनाएंगे. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इनकी आवाज फिर आपको और अच्छे से सुनवाएंगे. वेल चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत ही अच्छा बोला, क्या बात है, बहुत बढ़िया. जन्मदिन हालांकि इनका जा चुका है, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पा रहे माही जी.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो कुछ कहना
1: चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? एक मेरा थॉट था, वो ये था कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे. तो मैंने काफी लोगों को देखा है जिनको जन्मदिन पसंद नहीं आते अपने, मैं उनमें से एक हूँ, ठीक है. लेकिन जन्मदिन का असली मजा तभी है जब आपके जन्मदिन जब सामने वाला खुशी मनाए, तो वो एक स्पेशल होता है. तो वही मेरा एक थॉट था इसके पीछे.
0: आजकल तो लाइफस्टाइल इतना बिजी है, किसी को अपना बर्थडे याद होना हो दूसरे का तो जरूर रहता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मुझे ऐसा लगता है. मैम आप क्या निकाल रहे हैं, कुछ स्पेशल निकाल रहे हैं?
2: मैं वही देख रही थी कि कुछ मैं अगर बोल पाऊँ इस मोमेंट में तो.
0: ये तो एक बहुत अच्छी चीज है गाइस कि देखिए यहाँ पर जो है एकदम स्पेशल मोमेंट को और ज्यादा स्पेशल बनाया जा रहा है. सेम सेम चीजें जो है की जा रही है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा सुना है तो वो भी उसमें कुछ अच्छा सुना रहे हैं. एंड आई एम श्योर आपको भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा.
2: कंपटीशन जरूर है. अरे कलाकार लोग हैं ना हम, तो कलाकारों का यही होता है कि वो वही बात हो गई. कलाकारों पे मैं कहूंगी कि दुनिया के लिए मैं नाकारा बेकार हूँ, वजह ये है कि मैं कलाकार. हाँ सबको समझती हूँ, हाँ सबको समझती हूँ, शायद समझदार हूँ, वजह ये है मैं एक कलाकार हूँ.
1: बहुत बढ़िया.
2: और तुम्हारे गम और खुशी दोनों की जानकार हूँ.
0: वाह,
2: सबको जानते हैं हम. समझ आ जाता है ना शायरों को कि अरे अब क्या लिखना है, अब क्या बोलना है, कि तुम्हारे गम और खुशी दोनों के जानकार हूँ, वजह ये है कि हाँ मैं एक कलाकार हूँ.
0: क्या बात है. बहुत ही बढ़िया। मजा ये है कि मैं कलाकार हूँ और तभी आप यहाँ बैठी हूँ कि आप एक कलाकार हैं, नो डाउट। क्यों राघव,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया। तो गाइस ये जो सिलसिला है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बाकी अगर आप इन लोगों की शेरो शायरी को और इंजॉय करना चाहते हैं, इन लोगों के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ ये लोग एक्टिव हैं, तो वो तो मैं इनसे पूछ ही रहा हूँ। आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स प्लीज एक बार बताएं अगर कोई आपको फॉलो करना चाहे।
2: जी मेरा हर जगह अकाउंट एक ही है, @dilseshayari, dil_se_shayari, तो हर जगह यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट,
0: क्या जहां देखना चाहो गाइज हर जगह पे फॉलो कर लो। उन्होंने सब जगह की आईडी बता दी। बाकी राघव भी आप भी बता दो।
1: हमारा तो बहुत सिंपल है, आप अगर सर्च करते हैं इंस्टा पे @advocate_raghav_gupta, और अगर यूजर नेम की बात करें @advi.raghav_gupta।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
8: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
7: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
8: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
7: से संपर्क कीजिए।
8: नियम और शर्तें लागू।
2: के नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। नाम का मतलब प्यार और लड़की उससे भी ज्यादा प्यारी है। रियल में कहते माही और इंस्टा पे आईडी दिल से शायरी है।
0: राघव और माही मेरे साथ हैं। एक और बहुत प्यारी सी लड़की है, बट वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, अभी सिर्फ बोलने के लिए दो ही लोग यहाँ पर हैं। तो आप सभी का वंस अगेन वेलकम। के आई होप आप लोगों को एंजॉय लगा होगा। कैसा लगा, टेल अस, आप ये बताओ।
2: अरे बहुत मजा आ रहा है सर, पता भी नहीं चला कि आधे घंटे हो गए। जब आपने बताया आधे घंटे हो गए तब पता चला कि अरे इतना टाइम हो गया।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, वक्त का पता नहीं चलता।
0: मजा तब आता है ना जब जहाँ पे आप हो वहाँ पे माहौल किस तरह का है, वो बहुत मैटर करता है। राघव जी आप बताएं।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज ऑलवेज कि मैं तो काफी बार आ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार इस बार न्यू गेस्ट हैं तो उनके साथ भी काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा हम पहली बार मिल रहे हैं।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। आपकी वाइब भी तभी मैच होती है जब आपको ऐसा लगे कि यार हम कितने टाइम से जानते हैं एक दूसरे।
1: बिल्कुल,
0: वो चीज एक अलग ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सेशन जो है ऑलमोस्ट अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, जहाँ पर हम सभी को बाय करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ स्पेशल हम सुन के जाएंगे जो आप हमारे लिसनर्स को जाते जाते सुनाना चाहती हो, या राघव जी जो आप लास्ट में कुछ कहना चाहें स्पेशल। पहले आप ही से शुरू करेंगे मैम माही जी, मैं चाहूंगा आप कुछ स्पेशल सुनाए।
2: बहुत थी अभी प्यारी प्यारी बातें हो गई थी, तो अब मैं उस बात पे आऊंगी कि अब बात नहीं होती, क्योंकि हर किसी की किसी ना किसी से अब बात नहीं होती है, तो उस पे ही है। अब बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, कभी शाम याद आती है तो कभी यादों में मेरी रात नहीं होती। अब जिक्र भी तेरा खुद से मैं कम ही करती हूँ, अब जिक्र भी तेरा मैं खुद से कम ही करती हूँ। हर दर्द को लफ्जों की सौगात नहीं होती, जो टूट के बिखरे थे, जो टूट के बिखरे थे वो भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे खैरात नहीं होती। हम इश्क में हारे थे, हम इश्क में हारे थे ये मान लिया था हमने, हम इश्क में हारे थे ये मान लिया था हमने, मगर माही हर हार इतनी आसान नहीं होती। और कुछ इश्क अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं, कुछ इश्क अधूरे रहकर भी मुकम्मल लगते हैं, हर मोहब्बत की मंजिल आखिर मुलाकात
0: मुलाकात। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारी मुलाकात बैक टू बैक होती रहेगी। नोट बड़ी मैम, आप जब भी आपको लगे कि हमें कुछ स्पेशल सुनाना है और पूरी मुरादाबाद को सुनाना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल यहाँ पर पहुँच सकती हैं। स्टेशन आपको पता है, एड्रेस आपको बता ही दिया है राघव जी, तो अब तो आप डेफिनेटली पहुँच सकती हो। आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ही मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। राघव जी आप क्या सुनाना चाहेंगे?
1: एक पोइट्री पीस है, काफी टाइम मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कि अपने दिल को और नहीं दुखाएंगे, अपने दिल को हम और नहीं दुखाएंगे, हम अपनी आंखों को दरिया नहीं बनाएंगे।
0: क्या बात है?
1: रोज दिन गिन गिन कर काट देंगे, मगर तेरी तस्वीर को हाथ नहीं लगाएंगे।
0: क्या बात,
1: तेरी तस्वीर को हाथ नहीं लगाएंगे। शहर भर में तेरी जान पहचान हुई तो फिर किसी शख्स से ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, और दबी हुई बात में जुबान पर नहीं लाता, जा हम तेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे, जा हम तेरे शौहर को कुछ नहीं बताएंगे।
0: बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत यार।
2: पे एक लाइन में कहना चाहूंगा, किसी नए से मिलो तो मेरे बारे में तो बताओगे ना तुम। किसी नए से मिलो तो मेरे बारे में तो बताओगे ना तुम। अरे मुलाकात की बात छोड़ो, मेरे मैयत पे तो आओगे ना।
0: कमाल कर दिया भाई, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। क्या शेरो शायरी करी है इन लोगों ने, मतलब बहुत ही मजा आया। मैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सेशन किया। एंड गाइज, जाते जाते अगर कोई आपकी तरह ऐसे लिखना चाहता है जिसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ कहाँ से शुरुआत, आप उसको क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगे?
2: पहले तो मेरा टिप यही रहेगा कि आप जो भी फील कर रहे हो वो डायरी में लिखो। डज नॉट मैटर कि वो राइम कर रहा है या उसका मतलब किसी और को समझ आ रहा है कि नहीं, बस जो आपके दिल में आ रहा है वो आप पन्नों पे उतार दो। जरूरी नहीं है कि सही है कि नहीं है, और फिर जब आप उतार चुके हो तो उसे रीड करके एक बार समझो और उसे कोशिश करो कि आप फॉर्मेट में लाओ एक। तो आप जब पहले कुछ से शुरू करोगे ना तो उससे होते होते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो मेरा सजेशन इतना ही रहेगा कि लिखो जो आप फील कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, राइम अपने आप आ जाएगा वक्त के साथ।
0: क्या बात है, लिखने के साथ साथ बोलना भी मुझे लगता है जरूरी है।
2: बोलना का पहले हाँ कॉन्फिडेंस का वो बात आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस
0: कैमरे पे हर इंसान आने में थोड़ा डरता है, मतलब बहुत से लोग शाही होते नहीं आ पाते।
2: बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए भी मैं तो पहले यही करती थी मिरर पे प्रैक्टिस, जो हमेशा से हमारे बड़े कहते आ रहे हैं कि थोड़ा पहले मिरर पे देख कर बोलो, अकेले कमरे में बोलो, फिर किसी एक दोस्त को सुनाओ, फीडबैक लो, फिर ऑडियंस पे आओ। जरूरी नहीं, और हो सकता है ऑडियंस पे आके भी आप एक बार फंबल कर जाओ, लेकिन एक फंबल एंड ऑफ द डे नहीं है, आप करते रहो प्रैक्टिस और यू विल डू गुड।
0: वेरी नाइस।
1: लेकिन आर्टिस्ट की एक खूबी होती है ना, बहुत सपोर्टिव होते हैं।
0: क्या बात है?
1: अगर आप फंबल कर जाते हैं कहीं या आप फिर से अपने कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो आर्टिस्ट, मैंने देखा है कि सपोर्टिव आर्टिस्ट होते हैं, तो वो एक काफी अच्छी चीज है हमारी कम्युनिटी में, मैं ये मानता हूँ।
0: और अगर आपकी तरह कोई अपने अंदर एक चुटकी सिंदूर वाला थॉट छुपा के बैठा है बट वो बाहर नहीं ला पा रहे, तो आप उसे क्या कहना?
1: नहीं, अगर वो लेखक है और मतलब ये है कि ओपन तो होना ही पड़ेगा, आपको बोलना आना चाहिए चीजों, अपने मन में रख के कुछ, कोई किसी भी चीज का मतलब नहीं है। अभी मैडम जो बात कर रही थी उसमें एक बात ये भी है कि आप बहुत सी चीजें ना खुद के लिए लिखते हैं, लेकिन वो जो आप खुद के लिए लिखते हैं, लेकिन आप जब पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो हो सकता है दूसरे को मीनिंगलेस लगे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखना पड़ेगा जो दूसरे को कनेक्ट भी कर रहा
0: है। एब्सोल्युटली,
1: ठीक है। तो इसी थॉट के साथ आपको लिखना पड़ेगा, मतलब अगर आप ये समझिए कि मैं अगर 3 पोइट्री पीस लिख रहा हूँ तो उसमें से एक ही होगा, या हो सकता है वो एक का भी आधा ही पीस हो जो दूसरे को रिलेट कर रहा हो, बाकी वो सिर्फ आपके लिए है, आपके थॉट है वो, ठीक है। तो इस अगर आपको पब्लिक में स्पीक करना है, पब्लिक में बोलना है, ठीक है, तो वहां पर आपको उनके लिए जो वो चाहते हैं वो आपको डिलीवर करना होगा।
0: क्या बात है, ट्रू, 100% बिल्कुल सही बोला। और आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ओपन माइक्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इनफैक्ट अब तो सोशल मीडिया हमारा खुद का हमारे हाथ में है, आप जब चाहें जब शुरू कर सकते हैं। तो आजकल मुझे लगता है टैलेंट दिखाने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपके अंदर वो होना भी चाहिए, है ना? अगर आपके अंदर है तो आपके पास ऑप्शन है, बस आप अपना कैमरा खोलो, शुरू कर दो। जरूर थोड़ी किसी को पसंद आए, अपनी संतुष्टि के लिए तो कर ही सकते हैं राघव जी।
1: बिल्कुल,
0: क्यों?
1: बिल्कुल सर।
0: अब राघव जी भी यही करते थे, फिर उनके पास एक आइडिया आया, फिर उन्हें वो आइडिया ऐसी जगह ले गया कि अब उनके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, उनका काम भी बढ़ रहा है, और वो काम भी सही दिशा में कर रहे हैं।
1: कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग, बस आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाइज, आप लोग चलते चलते कुछ और कहना चाहते हो? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, कोई मैसेज और जो तुम्हें लगता है रेडियो के थ्रू जाना चाहिए, एक ऐसा मैसेज?
1: हाँ, मैं कह देता हूँ उसे कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो।
0: वाह,
1: उनके लिए है कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी तुम जिसके साथ में रहो। मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी तुम जिसके साथ में रहो। वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम फायदे में रहो। मैं तो यही चाहूंगा,
0: फायदा अच्छा खासा होना चाहिए राघव जी, है ना?
1: जी बिल्कुल। चलिए, एक मैसेज था मेरा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैसेज नहीं था, एक थॉट था जो जहां तक पहुंचना चाहिए शायद वहां तक पहुंच जाए, तो अच्छी बात है उड़ते उड़ते। एंड आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली फिर से आएंगे, हमें इंतजार रहेगा। और बाकी थैंक यू फॉर कमिंग गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के हुनर को ना बाहर निकालने का टाइम है, उसे अंदर मत रखो। अंदर रखो रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उसे बाहर निकालो। जैसे कि माही जी ने कहा, अगर आप कुछ महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो उसे पन्नों पे उतारना बहुत जरूरी है। पन्नों पे उतारो, फील करो, समझो, उसके बाद कैमरे पे धड़ल्ले से रिकॉर्ड कर दो। क्यों माही जी, है ना? बिंदास करो, आप किसी के लिए मत करो, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करो। ट्रू। बाकी थैंक यू फॉर कमिंग माही जी, थैंक यू राघव जी, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा ब्रो, एंड फिर से जल्दी मिलेंगे, फिर वेरी वेरी सून कुछ नया होगा और कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इस बार हम कॉफी पे चर्चा करते हैं, अच्छा टॉपिक है नो डाउट। चलिए जाते जाते लास्ट में कोई गाना जो आप अपनी अपनी पसंद का

0: अरे मुरादाबादी इसको डेडिकेट करना चाहते हो, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। देखते हैं लोग कितने फाउंटेन यूज हैं, कितनी जल्दी अच्छा गाना डिलीवर करेंगे। एक गाना राघव जी जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे चलाऊं।
1: एक गाना मुझे खत का जो सॉन्ग है वो
0: खत
2: मैं जस्ट खत बोलने वाली थी, इन्होंने बोल दिया, बट चलो दरखास्त।
0: क्या बात है, तुम लोगों की सिमिलैरिटी बड़ी मैच कर रही है। वाओ वेरी नाइस,
2: खत गाना बहुत प्यारा है।
0: मतलब खाली खत इसका नाम है?
2: हाँ जी
1: खत इसका नाम है,
0: पंजाबी सॉन्ग।
1: एक लाइन है, कागज के फूल में लाऊं तेरे लिए।
0: कौन सा सिंगर
1: ने गाया है? सिंगर का नाम तो नहीं पता है।
0: ओके खत न्यू ट्रैक है।
1: हाँ इट इज अ न्यू ट्रैक और काफी फेमस है।
0: अच्छा वायरल है। चलो गाइस ये गाना मैं भी सुनता हूँ।
2: हाँ जी बिल्कुल।
0: आपने सुना है गाना?
2: हाँ जी।
0: कौन सा सिंगर का है?
2: नवजोत नाम है शायद।
1: नवजोत सिंधु।
0: ऑल राइट, तब तो बढ़िया गाना होगा आई एम श्योर। चलिए गाइस इसी ट्रैक के साथ हम छोड़ के जा
1: नवजोत
0: भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है ये। एनीवेज अब जो भी
1: खत बाय नवजोत
2: आहूजा।
0: ऑल राइट चलो ठीक है, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। नो फिल्टर ये एकदम ओरिजिनल जाने वाला है, जो भी आप लोगों ने बोला है वो सब कुछ आप लाइव सुनेंगे। सो गाइस अभी के लिए हम लेते हैं यहाँ से।
1: फैन ऑफ आरजे आनंद
0: यार, आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं भी आप लोग बहुत बड़ा फैन हूँ। और अभी ये फैन फॉलोइंग जो है ऐसी चलती रहेगी गाइस, ये मजे ले रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, खिसकता हूँ, जल्दी मिलूंगा आपको इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कुछ अच्छे गाने और आएंगे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और हाँ अगर मुझे कुछ कहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम है रेडियो वाला आनंद के नाम से, प्लीज फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी अच्छी अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ऑफिशियल आईडी मिलेगी एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से, वो भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहता है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पे कुछ और नए अमेजिंग शोज के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग

0: रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

हाय गाइस, आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, उन्होंने ये गाना पहली

0: yarı.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संघ FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा भी गाना बज रहा था ना, चन्नावे घर आ जावे, ढोलावे घर आ जावे, तो आप लोग घर ही जा रहे होंगे पूरे दिन ढोल की तरह बजते बजते। चलो जी पहुँचो अब घर सस्ते सस्ते। तो क्या हुआ, कुछ खर्चा वर्चा हुआ नहीं हुआ? आज भी आम के पैकेट लेके जा रहे हैं या कोई फरमाइश बाहर से कि भाई साहब आज जरा हमारे लिए ये चाप पैक करा लाना या फिर ये कोई सब्जी पैक करा लाना? हो रहा होगा, धीरे धीरे हो रहा होगा। कुछ लोग जा रहे होंगे बर्गर किंग की तरफ, तो कुछ लोग जा रहे होंगे चटोरी गली की तरफ। तो पहुँचे पहुँचे और धीरे धीरे एंजॉय करें सारे गाने, अपना शहर और कहते हैं ना अपने लोग। तो मज़ा तो तभी आता है जब थोड़ी सी मस्ती चालू रहे। तो हम करेंगे बात 9837896896 पे कुछ आज मटर गस्ती वाली, कुछ ऐसे खर्चों वाली जो आपने करे भी होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो मैसेज करें और कॉल करें अपनी फरमाइश। अगर आज हो बर्थडे या हो एनिवर्सरी तो रिक्वेस्ट आ जाएगी साहब, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट है, मगर शर्त यह है एक शायरी सुनानी होगी बढ़िया सी। तो शायरी तैयार रखिए और हमें कॉल करिए 9837896896 पे। और इस गाने के बाद बताते हैं आपको कि हम क्या बात करने वाले हैं और किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए साहब, इस गाने के बाद मिलेंगे हम फिर से धमाल करते हुए।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहां हो रही है आपकी दिल से दिल तक बात, वो भी अखिल के साथ। तो कहते हैं ना, हर रोज जब हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या हम उस पैसे की सही कद्र करते हैं, हाँ या ना? या फिर कभी कभी छोटी छोटी खुशियों के नाम पर इतना खर्चा कर देते हैं कि महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है भाई। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो आज का जो हमारा विषय है ना, वो यही है, अपनी फिजूल खर्ची। तो कुछ फिजूल खर्ची तो हो जाती है जिस पे हंसी भी आती है, जो दिल से कहते हैं ना, जबरदस्ती कर भी जाती है। तो ज़रूर हमें बताएं मैसेज करके या कॉल करके कि ऐसी क्या फिजूल खर्ची है अखिल भाई जो हमने करी थी, बाद में हमें हंसना भी आता और ये मेरी फिजूल खर्ची अब मुझे करनी पड़ती है। कभी कभी मैं तो यही कहता हूँ कि छोटी बचत ना बड़े सपनों की बुनियाद बन सकती है। तो हो जाती है भाई साहब, एक शायरी है इसके ऊपर, पैसे को हवा समझकर उड़ाया ना कीजिए, पैसे को हवा समझकर उड़ाया ना कीजिए, कल की ज़रूरत को भुलाया ना कीजिए, छोटी सी बचत भी बड़ा सहारा बन जाती है, हर खुशी के लिए फिजूल खर्ची ज़रूरी नहीं कीजिए। तो अपने अपने लिसनर से पता करते हैं कि साहब क्या फिजूल खर्ची चल रही है उनके साथ। ज़रूरी नहीं है फिजूल खर्ची जो है सिर्फ खर्चे में हो, फिजूल खर्ची बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में भी होती है। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? अपना नाम बताइए सर।
1: पीतलनगरी रोड, देवापुर, दलसिंह।
0: क्या नाम है आपका?
1: दलजी सैनी।
0: दलजी सी सैनी
1: जी।
0: तो डिनर हो गया आपका
1: जी?
0: खाना हो गया सर आपका?
1: बहुत देर का।
0: तो सर मैं तभी कहूँ, आज एनर्जी हल्की सी जो है ना, मतलब खाना जल्दी डाइजेस्ट हो गया, आवाज कम निकल रही है। तो आज आपको जैसे पता चला है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात बताइए कि आप कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची कर देते हैं, चुपचाप कहीं खा जाते हैं फिजूल खर्ची करके आइसक्रीम, या कभी कभी अपने किसी दोस्त के लिए या अपने परिवार के लिए ले आते हैं कि अरे यार हो गया, आज फिजूल खर्चा हो गया, मगर हो गया।
1: नहीं,
0: दाल सिंह जी
1: जी,
0: हाँ हाँ, तो बताओ कोई तो एक इंसिडेंट बताओ कि कभी कभी लगता है कि साहब हमारा फिजूल खर्च इतना हो ही जाता है, कितना भी बचा लो पैसा मगर यहाँ पे हमारे फिजूल खर्ची हो जाती है।
1: हो जाता है महीने में एक दो बार।
0: हो जाती है महीने में एक दो बार।
1: हाँ।
0: तो सही है या अच्छी है होना या नहीं?
1: वैसे तो गलत है।
0: वैसे तो गलत है। तो अगर अगर ये गलत है तो वो खर्चे होने के बाद कुछ तो मजा आता ही होगा ना, किसी के चेहरे पे तो हंसी आ ही जाती होगी घर पे।
1: ये तो खैर ठीक है, मगर आता नहीं है। हम महीने में मुश्किल से तो एक दो बार वो होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, दिया।
0: तो वो तो साहब आपने अपने पे खर्चा कर दिया, इसे कहाँ फिजूल खर्ची बोलेंगे। तो कोई कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शायरी आपको याद आती है ऐसी फिजूल खर्ची करने के बाद? नहीं, ये बिल्कुल ही सिंपल रहते हैं। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो हमें दाल सिंह जी, आपने कम से कम कॉल करके हमें बताया तो कि हाँ हाँ कभी कभी हम कर देते हैं फिजूल खर्ची, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल हो जाएगा तो जैसी ही अक्टूबर में एक साल पूरा हो जाए तो आ जाइएगा साहब, मिलके करेंगे पार्टी, थोड़ी फिजूल खर्ची कर लेंगे सर उस समय जैसी मिलोगे आप।
1: तो हमने तो आपको ऑफिस देखा भी नहीं।
0: तो कोई बात नहीं सर, अक्टूबर आने दीजिए, हम ऑफिस का पता भी बता देंगे आपको।
1: ठीक है
0: सर। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे दाल सिंह जी, और कह रहे हैं कि मैंने

किसी महीने में एक आधा फिजूल खर्ची कर लेता हूँ, मगर ज़्यादा नहीं करता हूँ। फिजूल खर्ची करना ना अच्छी बात नहीं है। तो ये बात तो आपकी अपनी जगह सही है, मगर कुछ के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। चलिए बताइए हमें कॉल करके 9837896896 पे, या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आज किसी का बर्थडे है तो स्पेशल बता भी सकते हैं कि मेरे दोस्त का बर्थडे है या मेरे परिवार में किसी सदस्य का बर्थडे, हम हैं साहब यहाँ पे, विश कर देंगे आपकी तरफ से। तब तक के लिए गाना सुनते हैं और दोबारा आते हैं और एक नई फिजूल खर्ची वाले को ढूंढते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी हाँ, आपने सोचा कि कहाँ आज आपने कर दिए फिजूल खर्ची, या अभी अभी तो मैंने फिजूल खर्ची करी थी और अखिल भाई आपने पकड़ लिया। हो जाता है भाई, हो जाता है, कभी कभी वो खर्च करना भी ज़रूरी है, मगर बाद में अफसोस हो जाए तो वो भी ज़रूरी है। उसी को तो कहते हैं थोड़ा बहुत या फिजूल खर्च हो गया, भैया बचा लो मुझे, कहाँ से लाऊंगा पैसे, सैलरी आई थी सारी हो गई चटपट, भैया इस महीने नहीं करना है कोई और खर्च। हमारे पास एक लिसनर का मैसेज आया है, वो कहते हैं अखिल जी पहले मैं हर हफ्ते नए कपड़े खरीद लेता था, अब मैं बजट बनाना शुरू कर दिया है और हर महीने 2000 बचा लेता हूँ। क्या बात है रवि जी, यही तो असली जीत है। बचत छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो कहते हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा करके ही तो बड़ा जमाना है, और आजकल ऐसे ही है, खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा जो बचता है बस वही बाद में आगे काम आ जाता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो या बिना ज़रूरत बाहर के खाना, ऑफ़र देख के हम अक्सर वो भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। गए शॉप पे भाई साहब, 2+1 का ऑफ़र चल रहा था, एक के चक्कर में दो और ले लिए। और एक बात आपसे पूछूंगा, अगर आपको बिना सोचे समझे 100 रुपये खर्च करने के लिए दे दी जाए और दूसरी तरफ कहा जाए कि यही 100 रुपये आपको बचा के रखने हैं, तो इन दोनों चीज़ में से क्या चीज़ चुनेंगे? हमें मैसेज करें और बताएं 9837896896 पे, या तो बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे या कुछ चुपचाप उसे सेव कर लेंगे। तब तक हम बात करते हैं अपने एक नए लिसनर से और पता करते हैं जी वो क्या कर रहे हैं इस समय। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कौन बोल रहा है? हेलो, आपके पीछे जो एफएम बज रहा है उसकी आवाज कम करो, हो जाता है कभी कभी भूल जाते हैं और फिर अपने घर में गूंजते रहते हैं। आवाज आ रही है आपको क्लियर अब? अब मेरे को तो मेरी आवाज दो दो बार सुनाई दे रही है, मगर चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो सुन लेंगे। तो आज पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? बताओ क्या बात कर रहा था मैं आज, किस किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ? भूल गई? हेलो गुंजन, भूल गई आप किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं?
1: आज आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो? किसी भी चीज़ पे कोई गायब मान ले।
0: मतलब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आज आपकी जो फिजूल खर्ची हो जाती है ना, कभी कभी कहते हो कि भैया मुझे ये चाहिए, जिद कर लेती हो, और पापा कहते हैं भैया तुमने तो आज मेरा फिजूल खर्च करा के ही मानना है, मतलब फालतू का खर्च करवा रही हो, तो तुम करवाती रहती हो ऐसे पापा से मम्मी से फिजूल खर्ची।
1: Yes, yes, yes.
0: ये सही है भाई साहब। और कभी कभी कुछ सेविंग कर लेती हो फिर?
1: Yes. अभी मेरा बर्थडे निकला है 5 तारीख को।
0: 5 तारीख को क्या निकला है?
1: बर्थडे
0: निकला है 5 तारीख को।
1: Yes.
0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कितने साल की हो गई हैं आप?
1: मैं 12वीं में लग गई।
0: अब आप 12वीं में लग गई हो?
1: Yes.
0: तो सही है भाई साहब। फिर पार्टी में क्या क्या किया आपने?
1: पार्टी में केक काटा।
0: केक काटा
1: और कोल्ड ड्रिंक और समोसे।
0: चलिए बहुत बढ़िया, ये काम अच्छा किया, क्योंकि बर्थडे वाले दिन जो भी खर्चा होता है ना वो फिजूल खर्चों में नहीं आता, क्योंकि उस दिन तो पार्टी कर रहे हो, अपने ऊपर पार्टी कर रहे हो। क्या बात है, मम्मी ने तो भैया पार्टी कर ही दी आपकी। तो कौन सा गाना सुनना चाहोगी? बर्थडे पे गाना तो आज ही सुना देंगे हम आपको।
1: भैया मुझे शायरी भी सुनानी
0: है। अरे एक शायरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुनाओ सुनाओ।
1: बादल बादल बरसा पानी, नहाएंगे आज मलमाने।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसी शायरी तैयार करके रखा करो, और जब भी कॉल किया करो तो एक शायरी पहले ही सुना दिया करो।
1: ओके
0: ठीक है। गाना कौन सा सुनोगी? भाई अब तुम भी छोटी हो, ये वाला गाना तो नहीं चलेगा, दूसरा गाना बताओ। दिल पे चढ़ाई, दिल पे चढ़ाई छुरिया,
1: यही सुना दो फिर।
0: चलो ठीक है, तुम्हारे दिल पे चुराई छुरी सुना देते हैं। और सुनो, बर्थडे वाला डांस आज करके रिकॉर्ड करके भेज देना हमें, ठीक है? बाय बाय। पक्का पक्का। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ी थी छोटी सी बच्ची जिसका अभी अभी हुआ है बर्थडे 5 तारीख को, और अब वो 12वीं में लग गई है। कह रही मैं तो 12वीं में लग गई हूँ और मैंने अपनी बर्थडे वाली पार्टी खूब अच्छे से करी है, तो उसमें तो भैया कोई फिजूल खर्ची बनते नहीं। वैसे ही मम्मी पापा से फिजूल खर्ची करवाती रहती हैं। अब इनका पसंदीदा गाना चला देते हैं, इनका बर्थडे था। और हाँ, आपको भी ऐसी कोई खर्चा याद आ गया ना, फिजूल खर्चा, तो ज़रूर हमें फटाफट मैसेज करें या फिर कॉल ही कर लें जी, 9837896896। बहुत ही सिंपल नंबर है साहब, और जल्दी मिलते हैं छोटे से खर्चीले गाने के बाद।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे अखिल के साथ दिल से दिल तक अखिल सर। तो अभी आप जो गाना सुन रहे थे ब्रांड टू का, ये हम पे फरमाइश आई थी प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। इस बार इनके प्लीज जो है ना, हर बार 5 होते हैं, इस बार इनके 6 हो गए। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। नमन यादव, शंकर लाल यादव, अमित यादव, ऋतु यादव एंड निराशनी यादव जी। तो ये जो सब साहब, आप सभी की फरमाइश पे और ये गाना प्ले हो गया। तो होपफुली अब इतने सारे प्लीज जो है ना, वो कम हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम ना एक प्लीज और बढ़ा के भेजिएगा मेरे पास। ये 6 प्लीज थे, तो आपके पास 7 प्लीज आने चाहिए। तो अभी बात चल रही थी फिजूल खर्ची की, और कहते हैं ना एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। हर खर्चे से पहले बस एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है। एक शायरी आई है हमारे पास, आमिर साहब ने भेजी है शायरी। जो आज संभल गया कल मुस्कुराएगा, हर बचा हुआ रुपया काम जरूर आएगा। दौलत सिर्फ कमाने से नहीं बनती दोस्तों, उसे संभालने वाला ही असली अमीर कहलाएगा। क्या बात है आमिर साहब, आपने तो एकदम राइम कर दी ये शायरी, बहुत ही बढ़िया शायरी लिखी है और बिल्कुल सच कहा है कि बचा हुआ पैसा ही आपको एक दिन अमीर जरूर बनाएगा। तो चलिए जुड़ते हैं अपने नेक्स्ट लिसनर से, देखते हैं क्या कहते हैं फिजूल खर्ची के ऊपर वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं? मानसरोवर मुरादाबाद से। तो क्या करते हैं धैर्य, एक बार फिर से बता दीजिए आप।
1: मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ।
0: तो स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल सही हो रही है या ये फिजूल खर्ची हो रही है आजकल?
1: तो आज भी मैंने फिजूल खर्ची हो रही है, पर एक सरप्राइजिंगली मेरा आज ही टॉपिक आ गया।
0: क्या आ गया, वापस आ गया?
1: मतलब आज ही मैंने फिजूल खर्ची करी है और आज ही टॉपिक आ गया।
0: भाई साहब, आज हमने देख लिया, हमने भी सीसीटीवी जो है ना सब जगह लगा रखे हैं, इधर उधर जहाँ कोई फिजूल खर्ची करता है भाई साहब इधर से पकड़ ही लेते हैं कि हाँ भाई आज तुमने फिर फिजूल खर्ची कर दी है। अभी तो पैसे बचाना था मगर तुमने खर्चा कर ही दिया है। तो क्या फिजूल खर्ची करी बता दो आज, हम सभी श्रोताओं को बता दो, जितने भी आपके दोस्त है ना, जो स्कूल वाले दोस्त आपके अगर सुन रहे होंगे तो कल बता ही देंगे आपको कि भैया तुमने इतनी बड़ी फिजूल खर्ची करी है। क्या कहा आपने?
1: मेरे दोस्त ये सुनने वाले हैं नहीं।
0: अच्छा,
1: मुझे बहुत लग जाता है मोबाइल में और मेरा मन करता है कि मैं एफएम मुरादाबाद सुन करूं।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही यार, एफएम मोबाइल पे ना सबके इंस्टॉल करवा दो। अब कि अगर जरूरी नहीं है कि हम लोग उस समय गाड़ी में ही बैठे हों, अपने दोस्तों से कहो अगर कभी कभी अपने गाने मनपसंद के सुनने हो ना तो जरूर एफएम मुरादाबाद की ऐप डाउनलोड कर लो। बहुत ही सिंपल ऐप है ये, तो आपको ही पता है, प्ले स्टोर पे जाओगे और उस पर टाइप करोगे एफएम मुरादाबाद 89.6 और आपको सामने ही ऐप दिख जाएगी रेड कलर के आइकॉन में। हाँ, और उसे आराम से ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हो अगर गाड़ी में भी ट्रेवल कर रहे हो तो।
1: हाँ।
0: तो आप खर्चा बताओ, फिजूल खर्चा क्या किया था, उसके बाद हमें अपना गाना बताओ।
1: मैंने 10 रुपए वाली एक आइसक्रीम खाई थी।
0: 10 रुपए वाली आइसक्रीम खाई थी?
1: हाँ।
0: तो सही है भाई साहब। तो अब तुम आइसक्रीम जो है ठंडी थी या बिल्कुल ही एकदम पिघली हुई आइसक्रीम खा ली आज? अच्छा, और अच्छा एक बात और बताओ धैर्य, कभी कभी ऐसा होता है मम्मी पापा अगर कह देते हैं अरे यार तुमने फालतू में फिजूल खर्चा करवा दिया, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? कब कब हुआ है तुम्हारे पास ये बताओ, कभी कभी डांट पिटी है उस खर्चे के चक्कर में? नहीं,
1: मेरा वो तो मेरे को
0: ये सही कर रखा है तुमने। तो आज कौन सा गाना सुनोगे आज, कोई फिजूल खर्ची वाला गाना बता दो आज।
1: फिजूल खर्ची आइसक्रीम
0: चॉकलेट आइसक्रीम लाइम जूस वाला।
1: हाँ।
0: चलो जरूर जरूर ये सुनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा धैर्य हमसे जुड़े और आपने बताया कि आज आपने क्या फिजूल में खर्च कर दिया, मगर जो भी खर्च किया है ना वो पेट में ठंडक ही दे रहा होगा। और अगली बार ऐसा कुछ भी फिजूल खर्च करो ना तो मुझे याद कर लेना कि भैया आ जाओ मैं फिजूल खर्च करने वाला हूँ, हम दोनों ही मिलके कर लेंगे। ठीक है पक्का पक्का पक्का, हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो जरूर बुला लेंगे। चलो धन्यवाद धैर्य जुड़ने के लिए हमसे। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे धैर्य जो अभी पढ़ाई करते हैं और कहते हैं भैया आज मैं आपका शो सुन रहा था, आपने जैसी फिजूल खर्ची का नाम लिया तो मुझे याद आ गया आज ही तो मैंने फिजूल खर्ची करी है, आज ही 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली फिजूल फिजूल में। भाई साहब ऐसी फिजूल खर्ची तो हमसे भी करवाते हैं करो, हमें भी ऐसी फिजूल खर्ची बहुत पसंद है। अगर आपको भी ऐसी कोई फिजूल खर्ची पसंद है ना तो जरूर हमें कॉल करो फटाफट 9837896896 पे। तब तक एक बढ़िया सा गाना धैर्य की फरमाइश पे सुनते हैं और वापस आते हैं।

0: ரெடி அண்ணா யாரு?
1: एक बार फिर से स्वागत 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो हाँ, फिजूल खर्ची तो हो गया आज। फिजूल में मैंने भी आज इतना खर्च कर दिया है, इतना बोल दिया है कि सोच रहा हूँ यार आज तो सारा खर्चा याद दिला दिया। कोई तो कह रहा होगा भाई मैंने याद भी नहीं किया इतना खर्चा हो गया और आज आपने मुझे सारी बातें याद दिला दी। नेहा जी का मैसेज आता है हमारे पास MDA से, कह रही हैं मैं पहले रोज कॉफी बाहर पीती थी, अब घर से लेकर जाती हूँ और हर महीने एक छोटी सी अच्छी बचत कर लेती हूँ। तो नेहा जी बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये छोटी छोटी आदतें ना बड़ा बदलाव ले आती हैं। बिल्कुल सही काम किया आपने। याद रखिए दोस्तों, पैसा खर्च करना गलत नहीं है, एक बिना सोचे समझे खर्च करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। अपने सपनों के लिए बचत कीजिए, चाहे घर हो, पढ़ाई हो या फिर बिजनेस ही क्यों ना हो आपका। एक चैलेंज है, चलिए छोटा सा है मगर बहुत बढ़िया चैलेंज है और अगले 7 दिनों तक हमें करना है। पहला, इसमें बिना जरूरत के ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है, रोज के जो खर्चे हैं वो लिखने हैं और हर दिन 50 रुपये बचाने हैं। सिर्फ 7 दिन बाद देखिएगा कितना फर्क नजर आएगा आप लोगों को। अभी हम करते हैं अपने एक नए लिसनर से बात और पूछते हैं साहब उनका क्या चल रहा है हाल। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
2: सर मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए।
1: अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
2: जी सर, मैं बरेली से आशु बोल रहा हूँ।
1: तो आशु जी क्या काम करते हैं आप?
2: सर मैं ये स्टिचिंग का काम करता हूँ, ये लेडीज स्टिचिंग।
1: ओके ओके ओके जी। तो साहब आप जो ये काम करते हैं और जो लेडीज आती हैं तो कभी कभी आपको कहना नहीं पड़ता कि भैया ये सूट पे क्यों फिजूल खर्च कर रहे हो?
2: नहीं नहीं, ये वो मैं किसी और का तो जिम्मा नहीं ले सकता ना सर। मैं अगर किसी से कहूंगा तो इंसान मुझसे कहेगा क्यों, अपनी एडवाइस क्यों दे रहे हैं आप मुझे।
1: बिल्कुल सही बात है, ये बात ये तो नहीं कर पता चला स्टिचिंग खुद की हो गई।
2: जी और अगर हम किसी को ऐसी एडवाइस देंगे तो पता चला कल को वो हमारे पास आ भी नहीं रहे काम लेकर।
1: तो आप अगर फिजूल खर्ची नहीं करते हैं तो क्या काम करते हैं ऐसा उसकी जगह बताइए।
2: नहीं सर, मैं सबसे बेहतर ये समझता हूँ कि अगर मैं फिजूल खर्ची कहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर दूँ, और अगर कोई मुझे जरूरतमंद ना भी दिखे ना तो सर मैं किसी जानवर को, किसी भूखे जानवर को, उसको कुछ खिला दूँ,
1: उसे पानी पिला दूँ, मतलब हाँ कई कई तरीके हैं।
2: जी जी, उसको कुछ खिला दूँ, बिस्किट लेके खिला दूँ या कुछ भी, मतलब इस तरह से अगर किसी की मदद कर देता हूँ तो वो मेरी उससे 1000 गुना बेहतर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने और बहुत ही अच्छी बात करी फैजान साहब। हमारे पास मतलब एक अच्छा कहते हैं बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया आपने कि अगर ऐसे ही कुछ खर्च करना है तो क्यों ना किसी के काम आ जाए। तो धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और एक बढ़िया सा गाना हम आपके लिए आज डेडिकेट करेंगे कि अपने फैजान साहब के लिए।
2: ओके सर, थैंक यू
1: फैजान। तो श्रोताओ ये थे हमारे साथ बरेली से फैजान साहब, जो बहुत ही अच्छी बात बोल के गए कि अखिल जी अगर मुझे कुछ खर्च करना ही है और अगर फिजूल का खर्च करना है तो क्यों ना वो किसी के काम ही आ जाए, किसी ऐसे के काम आ जाए जिसको उसकी जरूरत हो। और हमारे पास उस्मान जी ने एक शायरी लिख के भेजी है, खुशियां महंगी चीजों में नहीं मिलती है, खुशियां महंगी चीजों में नहीं मैं ही मिलती हूँ जरूरी तो नहीं, खुशियां महंगी चीजों में ही मिलती हो जरूरी तो नहीं, मुस्कान हर दौलत से बड़ी होती है ये बात बुरी तो नहीं, जो कल के लिए आज कुछ संभाल कर रखता है वही जिंदगी का असली हिसाब समझता है। क्या बात कही उस्मान साहब आपने, बहुत ही बढ़िया शायरी लिख के दी है। दोस्तों याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना उससे भी बड़ी कला है। अगर आप भी अपनी कोई कहानी ऐसी कहते ना कि छोटी मोटी सी जो किसी को सीख दे जाए या कोई बात आपकी दिल की हो जाए तो जरूर हमें बताएं 9837896896 पे। तब तक के लिए फैजान साहब के लिए एक बढ़िया सा गाना और हाँ फटाफट कॉल करें क्योंकि ये होगी आपकी और इस शो की आखिरी कॉल, बढ़िया सी एक कहते ना कहानी सुनाइए और बात करिए अखिल से दिल तक की। चलिए तब तक फैजान साहब आपके लिए एक बहुत बढ़िया गाना जो कहते ना मेरे भी दिल के बहुत करीब है।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो पूरा का पूरा खर्चा हो गया है साहब, कोई कर रहा है पार्टी तो कोई कर रहा है इस समय आराम। छत पे भी हवा ली जा रही है क्योंकि धीरे धीरे हवा तो चली रही है। मौसम थोड़ा सा उमस वाला है, चिपचिपा वाला है, मगर क्या करे साहब, कहीं घूमने तो हमें जाना ही है ना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, मैं समझ गया साहब। अब ज्यादा नहीं घुमाना है, चुपचाप से सो जाना है क्योंकि कल सुबह फिर से उठ के स्कूल जाना है। तो अभी जाने से पहले हमारे जो लास्ट लकी कहते हैं ना कॉलर हैं, वो उनकी कॉल आ चुकी है और उनसे एक बार बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या फंसाना है उनके पास। कुछ ना कुछ तो उनकी पोटली में होगा। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं, जरूर बताएं हमें।
1: ये यहाँ मोहम्मद उस्मान और साकिब अल्लाह के जारत के पीछे से बड़ी मस्जिद के पास से बोल रहे हैं। साकिब मोहम्मद उस्मान क्या गुप्ता।
0: उस्मान साहब इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: आपका प्रोग्राम मैं बैठ के रोका नहीं गया, आपको फोन लगा दिया गया।
0: तो आज बता दो, आप सभी को बता दो, आप कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची करते रहते हो, कहाँ कहाँ घर से डांट लगती रहती है कि भाई साहब आज फिर फिजूल खर्चा करिया है।
1: फिजूल खर्चा नहीं, जिस दिन फिजूल खर्चे कर देते तो बहुत परेशानी तंगी आ जाती है, हमें बहुत सोच समझ के खर्चे करना पड़ता।
0: ये काम आपने बढ़िया करा, आपने ये बात बढ़िया भी बताई कि अब तो सोच समझे
1: पैसे उधार भी नहीं मिलते, घर की तरह घूमना पड़ता।
0: ये तो है। तो आज क्या, कौन सी शायरी सुना रहे हो आप, कौन सी?
1: जो शायरी सुनाऊंगा मैं आपको
0: नहीं, हमें तो एक पहले एक सुनाओ, उसके बाद हम कहेंगे कि आप दूसरी सुनाओ, पहले एक बताओ।
1: आप कागज पर नहीं लिखते हम राज मोहब्बत के,
0: क्या बात है,
1: पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के।
0: बहुत बढ़िया।
1: तुम्हें टूट कर तुझे टूट कर चाहे और उम्र भर चाहेंगे, ऐसे ही है सनम मेरे अंदाज मोहब्बत के।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है उस्मान साहब, बहुत ही बढ़िया आपने जो है लिखी है शायरी, लिखी किसके लिए आपने ये भी बता दो।
1: अब बस नाम हम समझ
0: जाएगा,
1: खुद ही सुना
0: होगा तो। नहीं, आज आप नाम ले ही दो, पता तो चल जाएगी कोई सोच रहा हो कि जी मेरे लिए सुनाइए और नाम आपने बोल दिया आज किसी और का, तो आप भी पता चला कहीं फिजूल में ना खर्च हो जाए, मगर नाम बता दो आज। हैं?
1: नहीं सर, हम बता देंगे आपको और आप मिठाई भी खिलवाएंगे और फिर दावत।
0: सही है सही है, मिठाई और दावत तो सही है, मगर नाम जरूर बताना मुझे आप।
1: नाम जरूर बता देंगे, मिलवा देंगे।
0: कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं आप?
1: ये छोमंतर पिक्चर का गाना सुनना है, तुम्हें दर्द दिया है तुम्हें दबा देना।
0: ये गाना सुन के कहीं आप छोमंतर मत हो जाना कहीं।
1: अरे आप तो होते हो कहीं गायब नहीं हो सकते, आप तो बुला लेंगे खुद ही, आपकी आवाज में इतनी मिठास है।
0: चलिए उस्मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे श्रोताएं हमारे साथ हैं तभी कहते हैं ना कि पूरी जान में जान है। बहुत ही बढ़िया, आपसे ही बात करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कहते हैं कि जब एक शायरी आपकी निकल के आ जाती है तो लगता है आज तो कुछ सुनी लिया हमने। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और ऐसे ही आप कॉल करते रहे और हमसे बातें करते रहे।
1: आप प्रोग्राम भी करते हैं
0: बड़े। धन्यवाद उस्मान जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हुए थे उस्मान जी, जिन्होंने इतनी धड़कती हुई शायरी सुनाई, मगर नाम नहीं बताया जी किसके लिए सुनाई है। तो अगर आप आस पास हो ना उनके तो चुपचाप खुद ही गैस कर लेना, हाँ जी मेरे लिए है, वरना कहीं बजारे आज बेचारे फिजूल खर्ची में खर्च हो जाए। बहुत ही बढ़िया गाना सुना। हमारे पास मैसेज आया हमारे जेठालाल जी का, कहते हैं मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी दी हुई हर एक निशानी, फिर चाहे वो दिल का दर्द हो या आग का पानी। क्या बात है जेठालाल जी, आपने तो एकदम कहते हैं दिल से ही निकाल दी आज दिल की बात, और बहुत ही बढ़िया शायरी कही आप। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, इस बार उन्होंने प्लीज सच में ज्यादा कर दिए, इतने सारे प्लीज कर दिए कि अगली बार इनका ये मैं प्लीज पूरा करूंगा। साक्षी यादव, नमन यादव, सिद्धि यादव, विनायक यादव, दक्ष यादव, अर्पिता यादव और मानसी यादव, आप इतने जितने आपके नाम है ना उतने ही आपने मेरे को प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज भेज दिए। और ये जो आपका सॉन्ग है ना रिक्वेस्ट, ये कल सबसे पहले यही प्ले होगा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज इतने बढ़िया टॉपिक पे बात करी, खुद खुल के कॉल करी और बताया कि हाँ जी फिजूल खर्ची वहीं अच्छी है जहाँ पे लगती हो। जबरदस्ती की फिजूल खर्ची और बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची वो नुकसान दे के ही जाती है। तो टेंशन ना लें, जो इस समय खर्च कर रहे हो ना आप तो खर्ची करो जी, अब तो जो निकल गया है ना जेब से वो सामने वाले के पास पहुंचने दो। तब तक एक गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, कल फिर दोबारा मिलते हैं, कल नहीं मिलते हैं मंडे को मिलेंगे ठीक 9 बजे आपके पास अखिल दिल से दिल तक अखिल संघ के साथ। चलिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय बाय बाय।

अपन तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए? तू जा, तू जा बस।

खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,